मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः की 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: में अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday during

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से

0: medal is India's best ever finish in the team event at the championship. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुने विपिन सचदेवा और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने चंद्रू आत्मा की आवाज में ये भक्ति रचना।

अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: योग निद्रा, ये योग निद्रा, इसका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको जानने से पहले हम निद्रा क्या होती है, यानी रात को हम सो जाते हैं तो होता क्या है। सो जाने का मतलब जाते कहाँ, हमारा जो कॉन्शस माइंड है और वो हमारा कंठ के पास में हिता नाम का एक नाड़ी होता है जो हमारा सब कॉन्शस माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम सो जाते हैं रात को। लगभग आम व्यक्ति के लिए 6 से लेकर 8 घंटे का नींद जरूरत पड़ता है। इन 6 से 8 घंटे में होता क्या है, हमारा कॉन्शस माइंड सब कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड में मिल जाता है, तब वो जो सब कॉन्शस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जब वो सब कॉन्शस माइंड एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपना जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देखा, सोचा और वो सभी बातें वो किया नहीं है, कर्म में नहीं लाया, और वो नींद में ड्रीम्स जो हमारे ख्वाबों के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस स्थिति के बाद में जब वो अनकॉन्शियस माइंड भी लेवल जाते हैं तो गहरा नींद में चले जाते हैं। अब योग निद्रा का मतलब है इस कॉन्शियस माइंड को जागते हुए कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में मिल जाना, मतलब हमारा सोच के अंदर में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार होता है, उस दीवार को तोड़ देने का नाम योग निद्रा है। मतलब हमारा कान सुनते रहेंगे और शरीर स्पर्श होते रहेगा लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करते किससे, जब हम कॉन्शियसनेस से पहचानते हैं तो अब कॉन्शियसनेस को हम काम देते हैं। तो इसमें 3 प्रक्रिया होता है। 1, हमारा कॉन्शियस माइंड को हम अपना अंगों में ले जाते हैं, लेट करके आंख बंद करके अपना पूरा मन को, चित्त को, जो सिर के सिरे पर जहाँ ब्रह्मरंध्र कहलाता है वहाँ पर केंद्रित करते हैं। वहाँ से केंद्रित करता हुआ उसको हम मेरुदंड के ऊपर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर रिंग के नीचे, रिंग बीच में जगह पर, इस तरह हमारा कॉन्शियस माइंड को चलाते रहते हैं। ऐसा पूरा मेरुदंड के ऊपर, रिंग के नीचे, रिंग बीच में जगह जहाँ पर मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, तो उसको देखता हुआ नीचे तक आते हैं। अब ऊपर से जो रंध्र निकला हुआ है वो मेरुदंड के आखिरी कोना पर वो जो रंध्र निकलता है, अब उसके अंदर में से हम छीनता हुआ, उसके अंदर में रोशनी देखता हुआ ऊपर को पहुंचेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरा सीधा हाथ सीधे तरफ, इसमें पूरा शरीर के अंदर में हर अंग प्रत्यंग में से पूरा हम अपना मन को गुजारेंगे। इससे क्या होगा, आज तक हम मन का बात सुनते आए हैं, अब हम क्या करेंगे, मन को काम दे रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे मन का काबू में से बाहर आ रहे हैं। इस तरह हम पूरा शरीर को करने के बाद दूसरा एक स्टेप होता है जिसमें हम मन को बिल्कुल काम नहीं देते हुए लेटे रहेंगे, जिसको असली योग निद्रा बोलते हैं। इस तरह हम 15-20 मिनट बिना किसी संपर्क का ऐसा लेटे रहेंगे। इस तरह 5 मिनट हड्डियों में और शरीर में देखना और 15-20 मिनट बिना संकल्प का रहना।

0: लगभग 35 मिनट का विधि है, जिससे हम 6-7 घंटा सोने से जो आराम मिलता है वो आराम 35 मिनट में मिल सकता है।
1: ये था आज का चिंतन, वाचक स्वर चैतन्य गुरु जी का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः 7:10 पर खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा, खेत की माटी पानी जांच करवाएं। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:50 पर। इसमें आज विषय रहेगा मटर की उन्नत किस्में व बुवाई। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा 7:00। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बरसात के मौसम में खान पान का ध्यान, खेत में काम करते समय जहरीले जीवों से बचाव, कृषि में ड्रोन का महत्व, इसके अलावा उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की भी जानकारी दी जाएगी। लोक संगीत के कार्यक्रम मरु मंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे टोनी भाट। मानसगण सुनेगा 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 331। 7:30 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें आज विषय रहेंगे हमारी एकता का सूत्र हिंदी भाषा, करुणा से शत्रु को परास्त करें और विवेकशील बने। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, दोपहर 2:30 और रात्रि 10:30 पर। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत हम आपको सुनवाएंगे 11:00। फौजी भाई अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुने दोपहर 12:05 पर। 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुने दिन में 1:05 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे महिलाएं और फिटनेस, पहेलियां कराती हैं दिमागी कसरत, मनोरंजन के बदलते स्वरूप, व्रत की फलाहार थाली। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा 5:00। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बदलता समय और नई चुनौतियां, डिजिटल युग एक नया अवसर, लोकल टू ग्लोबल, हाथों की कला को डिजिटल पंख देवे और आज का इतिहास। कार्यक्रम सहराय की आप सुना करते हैं 6:05 पर। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें सुनेंगे जानकारी और गीत। हमारे दिल्ली और जयपुर केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। समाचार तरंग 8:45 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम होंगे 2:00-3:00 से। जिले की चिट्ठी आप सुना करते हैं 6:40 पर। संसद समीक्षा रात्रि 8:00। स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:45 पर। पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर। और खेल जगत रात्रि 10:00 हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतिहार वास्ते। आज इसमें जानकारी का विषय है खेत की माटी पानी जांच।
1: किसान भाइयों राम राम। जिया कि आपा सगड़ा किसान भाई लोग जाना ही हाँ कि फसल गए बूंटांगी बदवार और ज्यादा उपज खातर खेत की चोखी मट्टी और पानी होना बहुत जरूरी है। और चोखी उपज खातर भूमि गए मा संतुलित उर्वरक को होना भी बहुत जरूरी है। और संतुलित उर्वरक के उपयोग खातर अपन माटी की जांच करानी जरूरी है, जक्के शू अपन पतो चाल जाए भी ई भूमि के अंदर किसे उर्वरक की आवश्यकता है और किसे की कोनी। क्योंकि कई बार के हुआ कि किसान भाई लोग भी उर्वरक की भी पोषकदारी उर्वरक को उपयोग करता रेवे है, जको

0: यही है। और बिंग सागे सागे भूमि की जकी उपज है, कृषि उपज है, बिंग ऊपर भी बुरो प्रभाव पड़े। एक खतर अपन माटी की जांच करा लेनी चाहिए, और माटी की जांच कराने खतर जो अपन नमूनो भेजनो है माटी को, बिंग के प्रक्रिया रेसी, बिंग अपन आज बात करा। तो माटी की जांच कराने खातर जो नमूनो लेनो है बी खातर, सबसे पहला जमीन की ऊपरी जकी सतह बी शू अपन घास फूस हटा देनो है और साफ कर देनी है जमीन ने। बींग बाद में एक खुरपी फावड़ो या कस्सी ले गए और लगभग 9 इंच या 23 सेंटीमीटर तई गहरो एक खड्डो खोद देनो है, जो कि लगभग वी के आकार में हुए, यानी अंग्रेजी का अक्षर वी के वर्ग हुए। और बी खड्डे ने खोद गए और बिंग अंदर एक पासे शू लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी एक एक समान ऊपर शू नीचे एक परत उतार गए और बिन्हें इकट्ठो कर गए और एक बर्तन के अंदर रख देना चाहिए। और इस प्रकार शू अपन ने ई पूरे खेत गए में 8 से 10 जिया यहाँ करनो है और नमूना ले गए और ई माटी ने इकट्ठी करके रख देनी है। बिंग बाद में किसान भाइयों जदा माटी सारी इकट्ठी हो जाए 8 से 10 जिज्ञासु जना अपन के करनो है कि भी माटी ने बेड़ी कर गए और बिंगा 4 टुकड़ा करना है। 4 टुकड़ा बराबर भाग में होना चाहिए, जके शू एक ऊपर शू नीचे तेंगी लीक खींच गए और एक आडी लीक खींच गए भी माटी का 4 टुकड़ा कर देना है। और बा टुकड़ा मा है कि आमने सामने का जका 2 टुकड़ा है बाने निकाल गए फेंक देना है। और आ प्रक्रिया जकी है अपन जतनी करनी है जतनी की भी माटी को वजन आधा किलो ना रह जावे किसान भाइयों। और इंग बाद में जको काम करने वालो है वो है कि भी माटी ने जब आधा किलो रह जावे तो एक साफ कपड़े के थैले के माँ घाल गए और बिंग अंदर एक पर्ची घालनी है। और भी पर्ची के ऊपर किसान भाई लोग आपको नाम लिखेगा और पतो लिखेगा और भूमि की स्थिति लिखेगा, मुरबा नंबर, खसरा नंबर, रकबा नंबर लिख देगा। और बिंग अलावा अपन है बिंग माँ आपको मोबाइल नंबर भी आप लिख सका और सागे सागे और भी अगर कोई अपने समस्या है तो बिंगो भी अपन निदान पाण खतर बा समस्या लिख सका। और आ पर्ची एक अंदर होनी चाहिए थैले गए और एक बाहर होनी चाहिए, जगह शू के वह कि कई बार ऊपरली पर्ची उतर जाए तो माली पर्ची तो रे वह। बिंग अलावा जबकि नमूनो लेन खातर अपन ध्यान देने वाली बात है, बात करा तो बा आ है किसान भाइयों कि सबसे पहली बात तो आ है माटी को जको नमूनो लियानी वो दरखत के कन्नों कून लेना। और जठे कोई खात को गड्ढो हुए, पुरानी मेड़ हुए, या जठे पानी जमा होने वाली कोई जिग्ञा हुए, बठे शू अपन नमूनो खून लेनो। बिंग अलावा जकी बात आ है कि जकी जिग्ञा शू अपन नमूनो लेवा बठे कोई ताजी खाद चूनो या कोई भूमि सुधारक रसायन तुरंत ही ना गेरेड़ हुए। बिंग अलावा जको मे जड़ को टेम हुए बिंग तुरंत बाद में अपन भी जमीन परूं नमूनो कौन लेनो, या जठे कोई रे खाद छिड़केड़ी हुए उर्वरक को छिड़काव करेड़ो हुए तो बठे शू अपन तुरंत बाद में बठूं नमूनो कौन ही लेनो। जट तक बात है आगे और करा बुआई की, तो बुआई जदा अपा करानी किसान भाइयों बी शू लगभग 1 महीनों पहला अपा माटी की जांच खातर नमूनो ले गए भेज देवा तो ठीक रहे, क्योंकि बीशू के वह कि अपन पतो चल जाए कि अपन बुआई के टाइम किसे उर्वरक गो किसे पोषक तत्व गो किए कि उपयोग भी भूमि में और करना चाहिए, जो कैसे अपनी फसल की उपज की है ज्यादा हुए। अगर आप बात करा खड़ी फसल की, तो खड़ी फसल के अंदर अगर अपन नमूनो लेनो है तो वो के नमूनो जो है कतार जकी वह नहीं फसल की पौधांगी बूंटांगी जकी कतार वह बिंग बीच शू अपन लेनो है। और बिंग अलावा जकी सारों मोटी एक ध्यान देने वाली बात है कि जकी भी कपड़े की या कोई और थैली के माँ आप नमूनो भेजा बा कोई खाद या रसायन या उर्वरक की ना हो, यानी भी मैं कोई उर्वरक या खाद को उपयोग करेड़ो ना हो भी इशू की है कि अपनी जांच जकी है बा प्रभावित हो सके। कार्यक्रम को टाइम होने ला रहे हो पूरो, राम राम सा।
1: खेत की माटी पानी जांच, अभी किसान भाई इस विषय पर खेतिहारा वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं भंवरलाल सोलंकी।

0: अभी आप लोक भजन सुन रहे थे, कलाकार थे भंवरलाल सोलंकी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 331। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर और हरिहरन का है।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

मानस गान की भाग संख्या 331 अभी आपने सुनी। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर और हरिहरन का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। देवेंद्र शर्मा की ओर से श्रोताओं, हिंदी हमारी एकता का सूत्र है। श्रोताओं, भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, जहां अनेक भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती है। इस विविधता के बीच एकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता का मजबूत सूत्र भी है।

श्रोताओं, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक और कई अन्य क्षेत्रों में भी लोग हिंदी को आसानी से समझ लेते हैं। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तो हिंदी एक सेतु का कार्य करती है। यह विभिन्न प्रदेशों के लोगों को आपस में जोड़ती है और उनके बीच संवाद का सरल बनाती है। हिंदी का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। आज कई देशों में हिंदी पढ़ाई और समझी जा रही है। भारतीय संस्कृति, साहित्य और फिल्मों के माध्यम से हिंदी ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इससे भारत की सांस्कृतिक एकता और भी सुदृढ़ होती है। श्रोतो, हिंदी भाषा हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग है। यह हमारे प्रशासन, शिक्षा, साहित्य और मीडिया में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। हिंदी में लिखे गए साहित्य जैसे कविताएं, कहानियां और उपन्यास हमारे समाज के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। महान साहित्यकारों ने हिंदी के माध्यम से समाज को नई दिशा दी है और लोगों को एकता का संदेश दिया है। श्रोताओं, हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जोड़ने का कार्य करती है। हमारे त्यौहार, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्य हिंदी के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यह भाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमारी पहचान को मजबूत बनाती है। श्रोतों, आज के आधुनिक युग में जब अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, तब भी हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ। हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को सम्मान देना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी वास्तव में हमारी एकता का सूत्र है। यह हमें जोड़ती है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है और हमारे देश को एक मजबूत पहचान देती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी भाषा है जो हमें एक साथ बांध कर रखती है। हिंदी का सम्मान करना और उसे आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है।

को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसके भीतर पनप रही घृणा और प्रतिशोध की भावना को नहीं। किसी शत्रु को वास्तविक और शाश्वत रूप से प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग करुणा यानी दया, सहानुभूति और प्रेम ही है। जब हम अस्त्र शस्त्र को कठोरता से किसी को हराते हैं तो वह केवल उसकी अस्थायी पराजय होती है, जिसमें प्रतिशोध की ज्वाला भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। लेकिन जब हम करुणा और प्रेम से किसी का हृदय जीतते हैं तो शत्रु का मूल ही नष्ट हो जाता है और एक शत्रु मित्र में परिवर्तित हो जाता है। श्रोताओ, शत्रुता का मूल और करुणा का वास्तविक अर्थ शत्रुता का जन्म अज्ञान, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा और अहंकार से होता है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है तो वह वास्तव में अपने ही भीतर के क्रोध और मानसिक अशांति से पीड़ित होता है। करुणा का अर्थ केवल किसी पर दया करना, स्वयं को लाचार बना देना नहीं है। करुणा का वास्तविक अर्थ है सामने वाले व्यक्ति की कमियां, उसकी अज्ञानता और उसके दुख को गहराई से समझना। जब आप किसी शत्रु के व्यवहार का उत्तर क्रोध के बजाय शांत करुणा से देते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा की उस श्रृंखला को तोड़ देते हैं जो शत्रुता को जीवित रखती है। श्रोताओ, करुणा का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है। यह अत्यंत साहस, धैर्य और दृढ़ आत्मबल की मांग करता है। किसी को मानना यह आघात पहुंचाना आसान है, लेकिन किसी के भीतर की घृणा को समाप्त करने, उसे एक बेहतर मनुष्य बनाना केवल करुणा से ही संभव है। जब हम प्रतिशोध के स्थान पर करुणा का चयन करते हैं तो हम न केवल अपने शत्रु को परास्त करते हैं बल्कि स्वयं को भी घृणा और तनाव के बोझ से मुक्त कर लेते हैं। करुणा ही वह अमर शस्त्र अस्त्र है जो दुनिया से शत्रुता मिटाकर स्थायी शांति और मानवता की स्थापना कर सकता है।

करुणा से शत्रु को परास्त करें। श्रोतो, मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंसा, युद्ध और प्रतिशोध के बल पर कभी भी शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सका। युद्ध केवल शत्रु के शरीर

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी।

श्रोताओं, मानव जीवन ईश्वर की सबसे सुंदर और अनुपम कृति है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। इसी क्षमता का नाम विवेक है। विवेकशील होने का अर्थ केवल शिक्षित होना नहीं है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही और गलत, सत्य और असत्य तथा स्थायी और क्षणिक के बीच अंतर करने की क्षमता रखना है। अज्ञानता और भावावेश में आकर लिए गए निर्णय अक्सर दुख और पश्चाताप का कारण बनते हैं, जबकि विवेक के आधार पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि विवेक ही मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक और मित्र है। श्रोता, विवेक का वास्तविक अर्थ और स्वरूप है सामान्य भाषा में ज्ञान, और विवेक को एक ही मान लिया जाता है, परंतु दोनों में सूक्ष्म अंतर है। ज्ञान जानकारी का संग्रह है, जबकि विवेक उस जानकारी का सही समय और सही परिस्थिति में सही उपयोग करने की कला है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार एक विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई का त्याग कर देता है। कठिन परिस्थितियों में क्रोध या भय के वशीभूत न होकर शांत मन से विचार करता है। अपने किसी भी कदम या शब्द के भविष्य में होने वाले परिणाम

काम को पहले से भांप लेना एक कला है। शो तो आज का आधुनिक युग तीव्र गति, प्रतिस्पर्धा और सूचनाओं के विस्फोट का युग है। ऐसे में व्यक्ति के सामने भटकाव के अनगिनत रास्ते हैं। अक्सर लोग गुस्से, अहंकार या अति उत्साह में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनके रिश्ते, करियर या जीवन भर की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। विवेक व्यक्ति को भावुकता में बहने से रोकता है। आज व्यावसायिक जीवन हो या व्यक्तिगत संबंध, हर जगह सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। श्रोतो, विवेक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो रातों रात प्राप्त हो जाए। यह निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और अनुभव से विकसित होता है। विवेकशील बनने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर अपने दिन भर के व्यवहार और निर्णय का विश्लेषण करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीख लें। महान विचारकों, संतों और महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ना तथा सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहना मन को परिपक्व बनाता है। श्रोतो, विवेकशील बनना जीवन को सही अर्थों में जीने की कला है। विवेक मनुष्य के भीतर वह रोशनी है जो अंधेरे से अंधेरे रास्ते पर भी सही दिशा दिखाती है। यह हमें न केवल एक सफल व्यक्ति बनाती है बल्कि समाज में एक जिम्मेदार, संवेदनशील और आदरणीय नागरिक भी बनाती है। इसलिए जीवन के प्रत्येक मोड़ पर जल्दबाजी, अति उत्साह और क्रोध को त्याग कर विवेकशीलता को अपनाएं। जब बुद्धि और मन पर विवेक का अंकुश होगा तभी जीवन में वास्तविक शांति, सफलता और आनंद की प्राप्ति होगी।

0: अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की

0: 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई

0: इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी

0: और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
1: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to join Har Ghar Tiranga movement and hoist the tricolour at homes. India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashvani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolor at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आब नाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समंदरी रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज़ रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज़ ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी।

0: कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिखाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और मासूम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेंगे। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्यपथ तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्कीर अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीड, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ ज़िलों में तिरंगा रैलियों का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज़ और सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनशियात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क़यादत करेंगे। पेश
4: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलम्बार से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सखाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ गर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तों पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वजरा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। यह प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इत्तेहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमूई सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की सलाहियत में भी

0: तेज रफ्तार तरक्की का पता चलता है। 2014-15 में यह सलाहियत 191 अरब यूनिट थी, जबकि 2025-26 में ये 477 अरब यूनिट से ज्यादा हो गई। न्यूज डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
1: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगी। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्फीये के निज़ाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025 के कानून और मालियात से मुतालिक 2026 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। इन दोनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। JPSC JSSC इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज़ को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बजिद हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात, इम्तहानात की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निज़ाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं JPSC प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है और तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। CID के ADG मनोज कौशिक ने इस सिलसिले में एक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी तादाद में इकट्ठा किए जा चुके हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: तलबा के जारी मुजाहरों के पेश नज़र झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 3 मुलाजमीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। JPSC के 3 मेंबरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। भारतीय बहरिया और अमेरिकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मशक EOD 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोज़ा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज दोपहर दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तशवीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 क्लीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसनील ने बताया कि तुर्कवानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता

0: लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज़ मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नज़र सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज़ के रास्ते जहाज़ों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहर हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को ज़िंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ़्ज़ाने सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वज़ारत ख़ारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांडियन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आज़ादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आज़ादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समंदरी रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज़ रखी है। और महाराजा उरुमुग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार तरंग।

0: नमस्कार,
1: मैं हूँ सलेहा और समाचार कक्ष से मेरे साथ हैं सुदर्शन नाहर। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जी हाँ, हमारी आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा, और तिरंगे में बना अशोक चक्र और उसके तीन रंग हर भारतीय का गर्व से सर ऊंचा कर देते हैं। इसके साथ ही हमें आत्मसम्मान इस तिरंगे को देखकर आता है। देश के नागरिकों के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ाने और उसे इतिहास से जोड़ने के लिए इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। घर घर

0: कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता हैं ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये अभियान क्या है और किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, कैसे वो जुड़ सकते हैं इससे।
1: तो शुरुआत तो होती है सबसे पहले झंडा क्या है
0: जी,
1: तिरंगा क्या है, ये कोई कपड़े का
0: एक टुकड़ा मात्र नहीं है,
1: तो नहीं है। कुछ है, वो क्या है। तो अगर ये चीज लोगों को समझ में आ जाए कि ये तिरंगा है क्या, झंडा क्या होता है
0: जी,
1: तो झंडा एक प्रतीक है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ
0: जी,
1: एक हम भारत बना, हम भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया और हम भारत के लोगों ने अपने ऊपर अपनी खुद मुख्तारी ली
0: जी,
1: तो हम एक हुए। तब एक होने का क्या प्रतीक करें हम, भारत कैसे दिखा हम, ठीक है हम मन से तो एक हैं और सांस्कृतिक रूप से हमेशा ही एक थे, लेकिन आप जानते हैं कि जब आजाद हुआ तो हम 500 और करीब 65
0: रियासतें थी,
1: हर एक अपना झंडा था, और जब लाइन खिंच गई तो 13 उधर चली गई बाकी इधर रह गई, तो झंडे सबके अलग थे, लेकिन फिर भी कुछ तो था हम में एक, जो हमें एक करता था, वो भले सांस्कृतिक चीज हो लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक झंडे के नीचे आ गए
0: जी।
1: तो ये जो एकता का एहसास है, ये झंडा हमें एकता का एहसास कराता है
0: जी,
1: और इसलिए भी कराता है कि हम भारत के लोग कैसे बताएं कि हम एक हैं, क्योंकि किसी जमाने में जब भले ही झंडे अलग अलग थे लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम एक थे सांस्कृतिक रूप से। कैसे एक थे, हमारी बोलियां भी अलग थी, कई लोगों के कपड़े पहन पहनावा अलग था, हमारा जगह अलग थी, खान पान अलग था, फिर भी एक थे। तो यही आज भी है, आज हिंदुस्तान राजस्थान के जैसलमेर से लगा कर उधर मणिपुर तक आगे चले जाएं, इधर साउथ में चले जाएं, ईस्ट में कश्मीर तक चले जाएं, हम अलग अलग लोग हैं, कोई अलग भाषा बोलता है, कुछ अलग से खाता है।
0: लगभग 3,000 किलोमीटर का ये जो हमारा विशाल भारत है वो पूरा एक ही तिरंगे झंडे के नीचे,
1: भिन्नता है
0: जी हाँ।
1: भिन्नता होने पर भी हम एक कैसे हैं, तो ये हमको एहसास दिलाता है
0: जी।
2: यानी कुल मिलाकर ये हमारी गौरव पताका है जो हम सबको जोड़ती है और इसके नीचे हम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सर, इस बार जो ये हर घर तिरंगा अभियान है ये 9 से 17 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, यानी इसकी विस्तारित अवधि है, तो आपको क्या लगता है कि आम नागरिक इसमें किस तरह भागीदारी निभा सकता है?
1: तो क्यों, देखिए आजाद हुए इतना समय हो गया, संविधान ने इस झंडे को अंगीकार किया, हमने 3 पट्टियां हैं जिसमें अशोक चक्र है, तो क्या हुआ उसके बाद 3री पीढ़ी आ गई
0: जी,
1: और ये मानव स्वभाव होता है कि उस जमाने में क्या हुआ हम भूल जाते हैं
0: जी,
1: क्योंकि अब आजादी की लड़ाई वाले लोग थे, आजादी को होते हुए देखा जिन्होंने और फिर अपने आप को महसूस किया आजाद, तो आज की बच्चे जो है वो तो
0: जी
1: वो तो आजादी पैदा हुए आज उस, तो उनको कैसे एहसास हो कि हम एक हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में एक होंगे, वो अपने परिवार में एक होंगे अपने, लेकिन फिर भी एक ये जो एहसास कराना कि इतना बड़ा भूभाग है हमारा
0: जी,
1: कम नहीं है ये, और हम इतने डिफरेंट लोग हैं, ये एक गुलदस्ता है, ये एक खूबसूरत ऐसी चीज है कि हमारे अंदर विभिन्नताएं होते हुए भी हम एक हैं, इसलिए आज ज्यादा जरूरत है कि उनको ये महसूस कराया जाए। ये झंडा जब ऊपर फहराता हुआ हम देखते हैं
0: जी,
1: तो किस बात का गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं। पहले गर्व होता था कि मैं मारवाड़ी हूँ, किसी को गर्व होता था मैं हाड़ौती हूँ, मिलते थे भाई कहाँ से कहाँ किस देश के हो, कि मैं मारवाड़ से आया हूँ, कोई कहता मैं हाड़ौती से आया हूँ, कोटा से आया हूँ, अब ये नहीं, अब मैं भारतीय हूँ, दुनिया में कहीं भी जाऊँगा तो मैं भारतीय के रूप में पहचान बनाऊंगा अपनी, और ये पहचान मुझे जैसा आपने कहा आन बान और शान
0: जी,
1: ये तीनों देती है मुझे, और ये तीनों मिलेगी कैसे मुझे, ये झंडा जब मैं देखता हूँ झंडे को फहराता हुआ
0: जी,
1: या फहराए हुए, तो ये फीलिंग हर एक को आती है, तो इस फीलिंग को कैसे लोगों तक पहुँचाएं, फिर नए बच्चों को, अब नए बच्चों को तो ऐसे ही पहुँचा सकते हैं जो नया मीडिया है,
0: बिल्कुल,
1: किसी जमाने में ये सारे मीडिया नहीं थे, तो नेताजी आते थे झंडा फहराते थे, हम बच्चे जाते थे तालियां बजाते थे लड्डू बांट देते थे कुछ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, पर एक चीज और थी उस जमाने में कि झंडे को एक ऐसा बनाया था कि वो आम आदमी से कुछ अलग है
0: जी,
1: ये अब पहली बार हुआ है कि अब आम आदमी से हम कह रहे हैं, अभी कोई नेता ही झंडा नहीं फहराएगा, आप भी फहरा सकते हैं अपने घर में झंडा फहरा, आप में जब आप अपने घर पर झंडा फहराएंगे तो आपको जो महसूस होगा, ये जो एहसास है
0: जी,
1: ये भारतीय होने का एहसास।
2: सर, एक और इसके

0: इस बारे में आज हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा जी। नमस्कार बोड़ा जी।
1: नमस्ते।
0: आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत जी। सुदर्शन जी,
2: बोड़ा साहब

0: साथ में अभियान चल रहा है तिरंगे के साथ सेल्फी, तो क्योंकि सोशल मीडिया युवा पीढ़ी के लिए एकदम पार्ट एंड पार्सल हो गया है लाइफ का, तो ऐसे में क्या डिजिटल भागीदारी भी राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ा सकती है?
1: ये तो उसी को आगे बढ़ाना है, जैसा मैंने कहा कि आपको कि जो तिरंगा है वो मुझको ये सेंस देता है कि हम एक हैं, हम भारत के लोग एक हैं। तिरंगा का मतलब हम एक हैं।
2: जी
1: तो ये जब सेल्फी लेता हूँ मैं अपनी,
2: जी
1: तो क्या महसूस करता हूँ? कुछ तो है ना उसमें, मैं उससे जुड़ाव महसूस करता हूँ। असली चीज़ है जुड़ाव होना।
2: जी
1: दो जने, मैं सेल्फी लूंगा अपने 20 जनों के बीच में जाएगा, 200 के बीच में जाएगा, वायरल होगा, तो एक जुड़ाव होगा। तो
2: जी
1: झंडा भी क्या करता है, जब हम झंडे किस 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जब फहराते हैं
2: जी
1: तो एक सबको जोड़ता है। हम डिफरेंट होते हुए भी जुड़े हुए हैं।
0: सर, लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हर घर तिरंगा अभियान का हमारे भारतीय जनमानस पर क्या असर अभी तक रहा है?
1: ये मैंने देखा पिछले, जब से ये अभियान चलना शुरू हुआ है तो लोगों में, नए बच्चों में, खासकर यूथ
2: जी
1: में, उनमें एक जागरूकता तो आई है, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आया है, अपने देश के साथ कैसे जुड़ना,
2: जी
1: ये तो आया है। तो इसको हम और कैसे बढ़ाएं? आज हम यही चाहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करें, आगे बढ़ें, लेकिन अपनी धरती को ना भूल जाएं, अपने
2: जी
1: देश को ना भूल जाएं, अपने राष्ट्र को ना भूल जाएं। क्योंकि मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा होऊंगा, पहले हम कहते हैं ना मेरा भारत महान,
0: जी
1: तो भारत महान है इसलिए मैं महान हूँ, तो फिर मैं महान। तो आज इसमें ये जुड़ाव होता है कि नो, मैं कितना ही बड़ा हो गया लेकिन देश मेरे से बड़ा है। ये जो
2: जी
1: सेंस है, ये जो फीलिंग है, ये आएगी तभी आप में, हम कह सकते हैं देशभक्ति जिसको कहते हैं, ये तभी आती है जब आपको ये लगे कि मैं बड़ा नहीं हूँ, देश
2: जी
1: बड़ा है।
2: तो हर वर्ष जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे हुए हैं, तो इन दोनों राष्ट्रीय प्रतीकों के बीच आप किस प्रकार का भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध देखते हैं?
1: ये संबंध तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ही दे दिया था, जिन्होंने
2: जी
1: जन गण मन और वंदे मातरम को समान दर्जा दिया था, ये
2: जी
1: हमारे संविधान में है, कोई छोटा बड़ा भी
2: जी
1: नहीं है। अब ये हुआ है कि क्योंकि जन गण मन हम हर जगह गाते थे, तो थोड़ा सा वो
2: वंदे
1: राष्ट्र की
2: मातरम
1: थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हो जाता था वो, क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत नुमा है, बंगला
2: जी
1: उसके भाषा का आता है, तो उस समय ये तय हुआ था कि भाई इसका पहले के दो स्टेंजा गा दिए जाएंगे।
2: जी
1: अभी हमने ये किया कि नहीं, इसको पूरा गाया
2: पूरा
1: जाना,
2: गाएंगे
1: और ये अच्छी बात है। जब पूरे गाने की बात आती है ना तो फिर मैं डूबूंगा उसमें।
2: जी
1: 4 लाइनें गा दी तो हो सकता है कि वो 4 लाइनें ठीक है मैंने रट ली और गा दी, लेकिन जब पूरा गाना गाने की बात आएगी तो शायद मैं दिल से जुड़ूंगा उससे
2: जी
1: और उसको समझूंगा कि वंदे मातरम का मतलब क्या है। मैं अपनी माँ को वंदे कर रहा हूँ,
2: जी
1: वंदना कर रहा हूँ, उसके
2: जी
1: आगे क्या है? तो पहली बार ये जो होगा ये तो अच्छा ही होगा और जरूरी भी है इस नई पीढ़ी के लिए।
0: सर, अगर हम इस अभियान की व्यापकता की बात करें और ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखें, तो आपकी दृष्टि में क्या गांवों में भी इसको लेकर बहुत उत्साह है या सहभागिता का आपको कोई अलग स्वरूप नजर आता है?
1: एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अब भारत में ग्रामीण और शहरी का भेद वैसा नहीं रहा जो आज से 50 साल पहले था, पर मुझे ये लगता है कि शहर से ज्यादा वो ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ इसलिए थोड़ा खोज करता रहता हूँ, जिज्ञासा
2: जी
1: रहती है
2: जी
1: किस पर क्या असर हुआ, इस पर क्या कसूर हुआ, मैंने पाया कि जो शहर के यूथ हैं उसकी बजाय जो गांव का यूथ है,
2: जी
1: गांव से क्या मतलब, अब जयपुर से बाहर चले जाइए, चाकसू आ गया, कानोता आ गया,
2: जी
1: तो वो कुछ ज़्यादा, इससे ज़्यादा कंसर्न से सोचता है, उसके सरोकार वो इस शहर के बच्चे से ज़्यादा है गांव के बच्चों के। तो इसलिए वो ये जो नया काम हो रहा है, ये जो सेल्फी वेल्फी, मेरे ख्याल है वहां से ज्यादा ये जनरेट होगी शहरों
0: और
1: से
0: सर,
1: भी।
0: राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो बात है वो गरिमा और सम्मान से जुड़ी हुई है, तो उसे बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसकी कुछ संहिता की बात करें या सम्मान या उचित उपयोग की बात करें, तो इस बारे में हमें किन-किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
1: ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो भी हम अपने घर पे झंडा फहराएं, तो झंडे के लिए सबसे पहली चीज है कि वो धरती पर नहीं पड़ना चाहिए, गिरना चाहिए, नंबर एक।
2: जी
1: उसका आन बान शान जो है ना, उसको हमें बनाए
2: बनाए
1: रखना।
2: रखनी है।
1: दूसरा,

0: उस पे तीन बैंड है
1: जी,
0: बीच में सफेद है, हरा है और केसरिया है, तो कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा ये हमें ज्ञात रहना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि हम स्मार्टफोन की जो जनरेशन है वो ये भूल जाती है, क्या फर्क पड़ता है कैसे लगा लो कैसे नहीं, झंडे को आप कैसे ही नहीं लगा सकते, ये जो एहसास भी हमें इसमें साथ में आना चाहिए। और अगर ये कंपेन में ये बात अगर हम ये कहें लोगों से कि झंडे को कैसे फहराया जाए, उसका सम्मान कैसे किया जाए, और फिर कैसे उतारा जाए, उतारने के बाद उसको कैसे रखा जाए समेट करके, इसका हर एक का एक अपना है। और ये भी शायद लोगों को नहीं मालूम है कि जो झंडा होता है वो सिर्फ खादी का बना होता है।
2: सर लेकिन आजकल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा इसका प्रतीक इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि लोग टैटू भी बनवाने लग गए, कई जगह जो गेट टुगेदर होते हैं उनके थीम भी तिरंगा दिए जाते हैं और कॉस्ट्यूम भी उस तरीके का होता है, तो आप इन सब चीज़ों से कहाँ तक सहमत हैं?
0: थोड़ा सा तो हमें लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने मान लीजिए कोई थैला बना लिया
1: जी
0: तो हम उतने पुराने तरीके से तो नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका का ध्वज है तो वहाँ के लोग तो पता नहीं
1: पहन लेते हैं
0: कपड़ा पहन लेते हैं बना लेते हैं, तो हम उस हद तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो छूट देनी पड़ेगी हमको कि ठीक है हम उसका इज्जत करते हैं सम्मान देते हैं और सम्मान ना हो उसका, लेकिन थोड़ा सा नए यूथ के हिसाब से मैं तो मान के चलता हूँ थोड़ा सा उनको छूट देनी पड़ेगी हमें।
2: और हर घर तिरंगा अभियान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और लोगों को जोड़ने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: मीडिया को तो कैंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी तो इस धरती का ही है, किनका लिए मीडिया, किसका है, माध्यम है वो, तो माध्यम में कौन बोलेगा, लोग ही बोलेंगे, लोग की बात करना ही मीडिया का काम है। अगर मीडिया नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और अगर नहीं करता है तो वो फिर अपना दायित्व तो नहीं निभाता है।

0: मोड़ा साहब आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बात कही, आपका बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब सुदर्शन नाहर और सलेहा गाजी को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग रहा डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी का, संपादन किया माधुरी वशिष्ठ ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।
1: नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और खान खनिज संशोधन विधेयक शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। राज्य में बारिश का दौर जारी, 3 दिनों तक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान। और श्रीगंगानगर के बसंत कुमार मेघवाल ने अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को विचार

0: विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकर बही से जुड़े साक्ष्य के लिए कानून बनाना और इसे मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप करना है। कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 भी सदन में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। उदयपुर में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये बैठक रखी। बैठक में सदस्य देशों के प्राधिकरणों के प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और तेजी से बदलते बाजारों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर ने डिजिटल बाजारों और उभरती तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों के बीच सदस्य देशों के निरंतर सहयोग और ज्ञान साझा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जा बाजार सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। कल बेंगलुरु में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निवेश, उद्योगों के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और कुशल मानव संसाधन से निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। बैठक में निवेशकों ने राजस्थान में नई विनिर्माण इकाइयां लगाने और मौजूदा उद्योगों के विस्तार में रुचि दिखाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में राजस्थान फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर्स के अध्यक्षों और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेश से जुड़े सभी मामलों में प्रवासियों को हर संभव सहयोग दे रही है।
1: हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 trillion तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ हमने कारोबारों को सुगम बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटा करके 30 दिन और बड़े उद्यमों के लिए 60 दिन कर दी है। अब प्रदूषणकारी वाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ा करके 877 कर दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राज्य निवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार कर इसे और मजबूत बनाया जा रहा है।
0: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज विभिन्न जिलों में तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियों के जरिए लोगों को घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बारा में जिला कलेक्टर कार्यालय से तिरंगा बाइक रैली निकलेगी। इसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होंगे। सवाईमाधोपुर में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं करौली में आज दोपहर में तिरंगा रैली प्रस्तावित है। इसमें विद्यार्थी और आमजन हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि आज से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 14 और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में जयपुर, नागौर, दौसा, बालोतरा, बाड़मेर और डूंगरपुर सहित कई स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश हुई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में आज

0: सावन माह के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश के संयोग से आज के दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर जारी है। इस अवसर पर प्रमुख शिवधामों में विशेष आयोजन दिन को और पावन बना रहे हैं। सवाईमाधोपुर में शिवाड़ के घुश्मेश्वर महादेव सहित प्राचीन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पाली में सोमनाथ मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। भरतपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा धाम में लोक देवता बाबा रामदेव के प्रसिद्ध वार्षिक भादवा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिमी राजस्थान के मिनी कुंभ कहे जाने वाले इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि मेला अवधि के दौरान पूरे मेला क्षेत्र के साथ संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी।
1: हर साल की तरह हम अपना जो जाता है, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है, ट्रैफिक सेफ्टी है, जो रात को पैदल यात्री आते हैं उन सबके लिए जाप्ता अपना जो है वो डिप्लॉय करेंगे। रात को जो यात्री जाते हैं उनके बैग्स पे रेडियम स्टिकर्स जो लगाने हैं वो हम लगाएंगे। हमारे सीसीटीवी जो वहाँ कैमराज हैं उनकी मदद से हम जो भीड़ भाड़ है उसको मॉनिटर करेंगे। सादे वस्त्रों में महिला पुलिस और जो पुलिस के अन्य जवान हैं उनको भी डिप्लॉय करेंगे। तो ऑल इन ऑल हमारा ये पूरी तैयारी रहेगी कि जो मेला है वो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षित रहे और उनके जो दर्शन हैं वो सुगम और यादगार।
0: अमेरिका के यूजीन शहर में खेली जा रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत को दूसरा पदक दिलाया। बसंत कुमार मेघवाल ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार कर रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वे विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत तक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी करते हुए 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की। वर्तमान में बसंत नौसेना में कार्यरत हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बसंत कुमार मेघवाल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस खेल प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और खान खनिज संशोधन विधेयक शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। राज्य में बारिश का दौर जारी। 3 दिनों तक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान। और श्रीगंगानगर के बसंत कुमार मेघवाल ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है मरु मंगल। कलाकार हैं बाबूलाल।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: मरुमंगल कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

अभी आप मरुमंगल कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे बाबूलाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं युगल गीत। कार्यक्रम का यह पहला नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुर की रचना, को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

आनंद बख्शी की रचना को सुनते हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

श्रोताओं, एक बार फिर से सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। गुलशन बावरा की रचना को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और फिल्म का नाम है हाथ की सफाई।

आया सावन झूमके। श्रोताओं, सुनता इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से स्वारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

युगल गीते से समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोतो, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म अनजाना से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अपना देश। श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप युगल गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोतो, आज के फनकार हैं गायक लता मंगेशकर। श्रोतो, कार्यक्रम का यह पहला नगमा फिल्म फकीरा से, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आज के फनकार कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज के फनकार हैं गायिका लता मंगेशकर। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म विदाई से, आनंद बख्शी की रचना।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म अनुराग से, गीत लिखा आनंद बख्शन और धुन एस डी बर्मन की।

आज के फनकार कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा, और ये कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म नूरी से।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म अर्पण में सुना। आनंद बख्शी की रचना, संगीत से स्वारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुने फिल्म पाकीजा का ये नगमा। गीत लिखा है कमाल अमरोहे ने और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

आज के फनकार कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म बेमिसाल से आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये नगमा, और इसी के साथ अपने साथी देवेंद्र शर्मा को दें आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आज आपने लता मंगेशकर के गाए खूबसूरत गाने सुने। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से दोस्तों, आपने हमें याद किया है अपने संदेशों के ज़रिए और हम हाजिर हैं आपके लिए सावन के

खूबसूरत मौसम में, प्यार की बरसात में भीगे हुए बहुत पुराने सदाबहार गाने लेकर। आपके संदेश और खत हम तक पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे गाने के साथ। मोम की गुड़िया फिल्म का गाना हम आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, यूं लगता है कि बादलों की छाँव में आप इंतज़ार कर रहे हैं खूबसूरत गानों का, तो इंतज़ार की घड़ियाँ बस अब यहीं तक। और पहला गाना आप सभी साथियों के लिए, आप हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर, टेगोर गार्डन नई दिल्ली से आप लिखते हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भक्त, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, आप हैं विद्यालय नगर एमपी से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना, मयंक गोहर, तन्वी गोहर और जयपाल यादव। और ये संदेश हमें मिला है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, आप हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामन किशोर, हिम्मत राव शुगारे, संजय कुमार गेडाम और दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, आप लिखते हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से, खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना और आप हैं कवाई बारा से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, हीरावाली फाजिलका से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनी राम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु और सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, न्योला रामपुरा से है सुरेंद्र डीडन, सकीला डीडन, संदीप अनवर और अक्कू बावरा, गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना और रचित खुराना, हनुमानगढ़ से हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान, आप हैं बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, आप हैं नाई वाला हनुमानगढ़ से वेद मिढ्ढा, अलका मिढ्ढा। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए आ रहा है आपके रेडियो तक।

गाने के साथ चंद अशआर है कि दिन गुजर गया एतबार में, दिन गुजर गया एतबार में, रात कट गई इंतज़ार में, अब तो आकर मिल जाओ मेरे महबूब इस मौसम बहार में।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मोम की गुड़िया फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, आनंद बख्शी और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अगला गाना हम सुनवाते हैं हमारे आप सभी साथियों के लिए। आप हैं पंजा नागपुर से प्रकाश रमभांडे, भारती जानवी, वैष्णवी हर्षल रमभांडे। ये संदेश हमें मिला है चकपंद्रह पीएस से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन, रोबिन सिंह जोशन। आप हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि।

नोखेलाल वर्मा, लोहगढ़ ठाकुर वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश, ऋषिता। और ये संदेश हमें मिला है खरगोन सनावद से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा की तरफ से, आप हैं हमारे श्रोता। कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया। श्रीगंगानगर से लिखते हैं नेकीराम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज और आपके बहुत से साथी, आप हैं। गोपी खीरिया दतिया एमपी से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और लक्ष्य। ये गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। और ये संदेश हमें मिला है उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल की तरफ से। अरायण से बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा मोक्स, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। और अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला, मोनू और राजेंद्र प्रजापति। 58 NP रायसिंह नगर से आप हमें संदेश भेजते हैं, हमारे साथी हैं आप सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरवंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी, मोनिका और गीतांजलि मलखट। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल।

नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी, मोनिका और गीतांजलि मलखट नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी बुर्ज हनुमानगढ़ से, फाजिलका से, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ आप लिखते हैं, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, लखवाली एड से मास्टर भंवर लाल, कृष्णा विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और आपके बहुत से साथी, अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल, मदन लाल, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, किन्नू और पंकज सारस्वत, आप हैं मजनू का टीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मनत मकड़, भरत मकड़, कमल साहनी, आप लिखते हैं पींगा वाला चौक गोराया से, दादरी गेट भिवानी सी है, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा, और ओसा जिला लातूर से हिप्परसोगा से लिखते हैं उस्मान शेख, फौजी, साहरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और कृष्णा शेख, ये संदेश हमें मिला है। गनगोला दातागंज बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, शाबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान की तरफ से, आप लिखते हैं बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और आपके बहुत से साथी, गांधीग्राम गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल और आपके परिवार के लोग, ये संदेश मिला है। कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन से प्रवीण शिरमाली, मीना शिरमाली और आपके बहुत से साथियों की तरफ से, रिंगनी से लिखते हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, परल और विमल डिकेस्ट्रो, आप लिखते हैं जनकपुरी सहारनपुर से, और दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से लिखते हैं मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत, और ये संदेश मिला है नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल और दुर्गेश्वर जायसवाल, तृप्ति जायसवाल की तरफ से, आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए आ रहा है आपके रेडियो तक, सुनिए।

दोस्तों, आपने गाना सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अदालत फ़िल्म से। और अगला गाना सुनवाते हैं हम आप सभी साथियों के लिए। हमें आपके ख़त भी मिले हैं, आपके ख़त शामिल करते हैं। मंडी गोलवाला से लिखते हैं ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान और आपके बहुत से साथी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से लिखते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र। मसीता डब वाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर, हनी लोट, सारिका और निहारिका। ये खत मिला है परमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की तरफ से। अलीकंडा वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। दौलतपुरा से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल। और डब वाली से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया का खत मिला है। आप हैं गिदड़बाहा पंजाब से खत लिखते हैं मंजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल और बेबी हिनासा। पदमपुर से लिखते हैं पवन तनेजा और योगेश तनेजा। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। और आप हैं श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा। ये खत मिला है बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की तरफ से। मलोट कैंप से आप लिखते हैं सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर, संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। अगले गाने के लिए अब आपके कुछ संदेश भी हमारे पास हैं। चांद बाजा फरीदकोट से अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, नवकीरत, गुरसीरत, गुरप्रताप और इनका पूरा परिवार। आप लिखते हैं मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और मायल परिवार। लिखते हैं बनवाला हनुमंता फाजिलका से बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की नारंग, तानिया नारंग और आपके बहुत से साथी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार। घमंडिया से लिखते हैं जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमना, साइना, विष्णु ढुकिया और बेबी इवा धारणिया। और ये संदेश हमें मिला है श्रीगंगानगर रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित गोस्वामी और खुशी गोस्वामी की तरफ से। सादेवाला सिरसा से लिखते हैं रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी। और आप हैं पंजोनिया से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और आपके बहुत से साथी। कस्बा बाराड़ा अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर।

0: प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल, और आप हैं हमारे साथी श्रीकरणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल, निपी साहनी, सुनीता साहनी और आपके बहुत से साथी, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, आप सभी साथियों के लिए आ रहा है ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, सुनिए।
1: छोड़ दो मुझे।
2: क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
1: नहीं करती।
2: क्यों नहीं करती?
1: कह दिया ना, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती।
2: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
1: नहीं आता।
2: नहीं?
1: हाँ हाँ नहीं।
2: मेरी कसम, प्यार सिखा दूं?
3: सिख ले।

दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना उपासना फिल्म से। अगले गाने के लिए हमारे पास खत हैं, हमारे साथी हैं आप लिखते हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और सुचा सिंह पाठक। ये खत मिला है मखू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज की तरफ से। फाजिलका रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मोला और जगतार जग्गा। श्रीगंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा और आपके बहुत से साथी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, मोहित, रोहित और आपके बहुत से साथी। ये खत मिला है राजपुरा पंचायत से हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह और धर्मवीर झोरड़ की तरफ से। और आप हैं गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतेक बिरक और मीका बिरक, मोहम्मदपुर सोतर, बुक फार्म रतिया से आप लिखते हैं जीवन सिंह बुक, शंटी बुक, सिमरन बुक, कौशल्या रानी, मनकीरत बुक, जशन बुक, भूषण खेड़ा, गुरछिंदर बुक और बुक परिवार। और आप हैं फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, युवराज भूविक और गगन अमरपुरी। आप सभी साथियों ने हमें खत लिखे और ये गाना हम संदेश भेजने वाले साथियों को भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं जिन साथियों के संदेश मिले हैं, दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। लाल खां ढाणी से जावेद खान जोया, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान। और मानसा पंजाब से लिखते हैं जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग और आपके बहुत से साथी। और आप हैं कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, सुनील मोहन, नरेंद्र सुथार, भजन लाल मेला, कैलाश सुथार और आपके बहुत से साथी। और आप हैं साबुना फाजिलका से करण कंबोज, चरण, रियांश कंबोज और परीश कंबोज, चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज सिंह और आपके बहुत से साथी। ये संदेश हमें मिला है कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की तरफ से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी। और आप लिखते हैं रानी बाजार बीकानेर से बिट्टू झांब और रानी झांब। ये संदेश मिला है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, संगीता, लिपि और दीपाली गोप की तरफ से। आपने लिखा है चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम झारखंड से। और ये संदेश हमें लिखते हैं हमारे साथी मोहम्मद अनवर अंसारी, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से आपके साथ हैं रवीना, आफिया, सना, समाहिना, शकीला, जस्मीन, सुल्ताना और आपके बहुत से साथी। और आप हैं अमरपुरा जालूखाट से हरिश्चंद्र पूनिया। ये संदेश मिला है निम्नाबाद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की तरफ से। यही गाना हम आपको भी सुनाना चाहते हैं स्वर्ण सिंह, आप लिखते हैं दोलेवाला मोगा पंजाब से। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। और कासगंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना।

0: और आलिया अंसारी और गंजी डुंडवारा से ही एक संदेश हमें और मिला है। आप हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजी शेख, दानिश अमन अफरीदी और राधा नामदेव, और आप हैं सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप सभी साथियों के लिए आ रहा है आपकी पसंद का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, सुनिए।
1: अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
2: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?
1: आएगा, आएगा।

से तेरी ही आवाज़ को। ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये गाना हमने लिया था ललकार फिल्म से।

अगला गाना हम सुनवाते हैं आप सभी साथियों को। हमारे पास खत हैं, खुशी राम रणवा, ब्रिजलाल, पालाराम पूनिया, मोहन महला, कानाराम, दिलीप नाथ, हर्षिता रणवा और आपके वो से साथी। कोटली कलां पंजाब से लिखते हैं, यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गुरजोत सिंह और आपके बहुत से साथी। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। अरायण से रणजीत राम सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णु देव, राजवीर, रमन राठौड़, जसु पंवार और जगवीर सोलंकी। और ये खत मिला है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंद्र, सिमरन एकन और दमन और अभिजोत। आप लिखते हैं करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा से। और यह खत मिला है गोविंदगढ़ माझीवाला करणपुर से, राजू टूटेजा, खुश दिल, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू जीनू, मन्नू, आदित्य भूमि, राखी, अमृत बड़वाल, शिव सेठी करणपुरी और इस्माइल टूटेजा की तरफ से। यह खत मिला है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से, विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालशा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शमीमपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, बी के पुरी, आर एस पुरी और बाकी परिवार के सारे पुरी। अब आपके संदेश हम कुछ शामिल करते हैं।

ये संदेश हमें मिला है खारिया ढाणी सिरसा से, सतवीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारणिया और आपके बहुत से साथियों की तरफ से। केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष और आपके साथ हैं विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति और आप हैं हमारे साथी। हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव, हिमानी जाखड़, गुरतेज ओलख लिखते हैं 19GD से। फरुखाबाद साहबगंज से लिखते हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, पूजा पिंकी, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया, पवन गोड़ और आप हैं योगेंद्र नायक। ये संदेश मिला है जाखोद राजस्थान से, शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और आपके बहुत से साथी। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई चांदीवाला आप हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और सायना शर्मा की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आयुषी, आरुषी, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल की तरफ से संदेश मिल चुका है। तंगोरी मोहाली से लिखते हैं गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर। कुछ संदेश और हैं आप सभी साथियों को भी हम अगला गाना सुनवाते हैं। एटा रोड गंज डुंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, शेख मोहम्मद कलीम, BH बच्चन और आप हमारे साथी हैं नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत लव खन्ना, कुश खन्ना और खन्ना परिवार। आपने लिखा है सफीदो सिटी हरियाणा से और ये संदेश है सेरडा भादरा से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा और लीलाधर शर्मा की तरफ से। सीतामऊ रोड नटाराम से आप लिखते हैं दशरथ सेन,

श्रद्धा, हिमांशी, गुरमीत सेन और सांची सेन की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया पीहू और दिया चौरसिया पोटिया कला दुर्ग से आप लिखते हैं। संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू की तरफ से ये संदेश हमें मिला है। और आप हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी। आप सभी साथियों को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

0: अनुरोध गीत आप आकाशवाणी सूरतगढ़ से सुन रहे हैं और इस गाने के साथ चंद अशार आपके लिए कि चाहत का ये सिलसिला जारी रहे, चाहत का ये सिलसिला जारी रहे, तेरी अदा मेरी वफा जारी रहे, मोहब्बत में जो कहोगे वही करेंगे, मेरे कातिल बस मेरी सजा जारी रहे।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये बहुत ही खूबसूरत गाना छोटी सी मुलाकात फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। और अब हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना। आप सुने ये गाना, इश्क पर जोर नहीं इस फिल्म से, और ये आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

इस गाने के लिए खत मिले हैं छबड़ा राजस्थान से आशिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और समीम बानो की तरफ से, बोर्डसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू, करणपुर से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति सेठी, शब्द वाणी और राजू टुटेजा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी की तरफ से ये खत मिला है।

कार्यक्रम का ये आखिरी गाना हम आप सभी साथियों को भी सुनवाना चाहते हैं, आपके संदेश मिले हैं। आप हैं हिंगड़ी आलोट से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ और आपके बहुत से साथी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। बठेना पाटन दुर्ग से लिखते हैं बलकरण वर्मा, ज्योति अंजनी, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा। और आप हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी, दिलीप कुमार चंद्रवंशी। आप लिखते हैं आखली दीवान से। और मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, मोहन करांगले, बसंत राव भोजले और पीएस नावकर। और आप हैं मुरादाबाद दूलापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इशरान और नरगिस खातून। रावर करनाल से ये संदेश मिला है ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और आपके साथियों की तरफ से। आप हैं गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, साइना साइन, फातिमा अदनान, फैज़ान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी और आपके बहुत से साथी। और ये संदेश हमें मिला है गंज डुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज़ कुरैशी और बेबी अरीबा

0: हबीबा की तरफ से, और सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्भी बेबी बाय हिमाक्ष, आपका संदेश भी मिल चुका है। यही गाना हम आप सभी साथियों को भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं बाबूराम जयपाल डांगरी फतेहगढ़ जैसलमेर से, और कुम्हार गली श्रीरामपुर से लिखते हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका और सानिका दले। आप हैं सोनू रविराज गुलशन विक्की जालंधर सिटी पंजाब से आप लिखते हैं। जोरावरपुरा से मांगी लाल, कविता रेनू और निशु की तरफ से संदेश मिल चुका है। भागसर सादुल शहर से हमारे साथी हैं मंगत राम ढींगड़ा, सुमन संजना, सचिन कुमार ढींगड़ा, और पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, आरजू जाजूरिया और आपके बहुत से साथी। फातिमा कॉलोनी रामपुर से आप लिखते हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप, आप लिखते हैं गांव 4M से, और ये संदेश हमें मिला है गांधीग्राम गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा की तरफ से, और आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविका ढींगरा, और आपके साथ हैं अतुल शर्मा। साबुवाना से करण कंबोज, चरण, रियांश कंबोज और परीश कंबोज, और ये संदेश हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की तरफ से, नलोई से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा, पलारी छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथी संदेश हमें भेजते हैं। आप हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, और आप हैं फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला चुरू से लिखते हैं संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल, कार्तिक सोनग्रा और आपका पूरा परिवार। आप सभी साथियों को सुनवाते हैं इश्क पर जोर नहीं इस फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।
1: मैं जाऊं?
2: अपने दिल से पूछो।
1: दिल

सावन के आते ही, बादल के छाते ही, फूलों के मौसम में चलते ही पुरवाई और मिलते ही तन्हाई। आप सुनते रहिए ये खूबसूरत गाना और नरेश वर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12 बज चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए, 12:30 पर सुगम संगीत में चंद गज़लें, 12:50 पर खेत खलिहान में जानकारी का विषय रहेगा मटर की उन्नत किस्मों और बुआई की जानकारी, 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से समाचार रिले किए जाएंगे।

1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। जानकारी के विषय रहेंगे महिलाएं और फिटनेस और मनोरंजन के बदलते स्वरूप, व्रत की फलाहार थाली और साथ में कुछ गाने। कार्यक्रम पेश करेंगी अलका वर्मा। 2:00 मिडडे न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से, और साथ ही 2:15 पर दोपहर समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और 3:00 आप सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। जानकारी के विषय रहेंगे बदलता समय और नई चुनौतियाँ, डिजिटल युग नया अवसर, और हाथों की कला को डिजिटल पंख कैसे देवें। और साथ में चंद गाने होंगे। कार्यक्रम में पेश करेंगी पूजा वर्मा। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, और 6:05 पर सराय की कार्यक्रम होगा। 6:30 पर हिंदी में समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, और

शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा चौपाल। चौपाल में जानकारी के विषय रहेंगे बरसात के मौसम में खान पान का ध्यान, खेत में काम करते समय जहरीले जीवों से कैसे बचें, और मौसम और बाजार भाव की जानकारी के साथ लोकगीत और लोक भजन। कार्यक्रम पेश करेंगे भारत भूषण शर्मा। 8 बजे संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 8:15 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ 8:09 भी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

9:15 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत और 9:30 पर पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। 10:00 जयपुर से खेल जगत और 10:30 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम के आगाज़ में आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना। आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था, और ये है अगली पेशकश। तेरी मेहरबानियां फिल्म का ये गाना सुनिए अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। SH बिहारी।

श्रोताओं, आपने गाना सुना तेरी मेहरबानियां फिल्म से, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। और ये है आपके लिए अगला दो गाना, बहुत ही प्यारा सा, सुने। ये फिल्म है आई मिलन की रात। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। समीर का गाना, संगीत आनंद मिलिंद का, सुनिए।

और अब कार्यक्रम के आखिर में शेरा शमशेरा फिल्म का ये गाना, चंद्राणी मुखर्जी और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में अनजान का गाना, बप्पी लहरी का संगीत, सुनिए एक झलक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हो चुके हैं। अब सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए चंदन दास की गाई ये पहली गजल।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं चंदनदास की गाई चंद बहुत ही खूबसूरत गजलें आपके लिए। यह है अगली पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के फनकार थे गायक चंदन दास। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:50 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेत खलिहान।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: खेत खलिहान में आज की जानकारी का विषय है मटर की उन्नत किस्में व बुआई। जानकारी दे रहे हैं भारत भूषण शर्मा। आइए सुनते हैं।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों अगर सर्दियाँ आने लग रही है और आप जाना ही हाँ कि जिका बाजारों के अंदर भी अपना श्रोता रहन लग रहा है, वह भी घर के अंदर या छत के ऊपर बागबानी करे और तरह तरह की जिकी सब्जियां हैं वह बीज है। बिंग अलावा अपना बहुत सा किसान है जिका व्यवसायिक खेती के अंतर्गत सब्जियां की फसल भी करे। रबी की फसल की आप बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण फसल है मटर, और मटर को प्रयोग आपा उठाया कि आपा ताजी सब्जी के हिसाब से भी करा और बिंग अलावा डिब्बा बंदी सूखी हरी मटर के रूप में भी इनको जी को प्रयोग है वो करो जावे। आसानी पचन वाली प्रोटीन वाली विटामिन वाली और अनेक तरीके का जिका खनिज लवण है बैंग में मिले तो बड़ी महत्वपूर्ण फसल है और बड़ी स्वादिष्ट और खाने के लायक फसल है। खेती की जे आप बात करें तो इनकी खेती वास्ते जलवायु जी की है बा आपने ठंडी चाहिए। ज़्यादा पाले के अंदर अपने देखो गए है कि फूल और फली जी की है बने नुकसान हुए। बीज की जी को बुआई को समय भूमि को जी को तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इंशु कम जे तापमान हुए तो अंकुरण जी को है वो बहुत ही धीरे हुए। ज़्यादा जे तापमान रहेगा तो बूंटो जी को है वो कमज़ोर हो जाएगो, बोनो वैगो यानी कि जिको कद है बिंगो वो छोटो रह जाए और इंशु के वह के उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो सही भूमि को तापमान जी को है बुआई के समय वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। भैया तो किसान भाइयों मटर की खेती जी की है वह हर तरीके की माटी के माँ आप कर सकें, लेकिन जे दोमट भूमि है तो बस सबसे उपयुक्त रहे। सबसे जी की कारगर भूमि है वह है दोमट माटी वाली। भारी माटी जटे पानी की निकास अच्छी ना हुए बटे इन फसल की पैदावार आप अच्छी ले कौन सका। इसी भूमि में सिंचाई के बाद में बुंटा जी का है वह

पीला पड़न लाग जाए, बाद में सूख जाए और जी के फसल बिजेड़ी है बिंग में पैदावार आपने मिले को नहीं, बुनटो ही खत्म हो जाए। बुआई वास्ते खेत ने चोखी तरिया आपने तैयार करना चाहिए। जे भूमि में पर्याप्त नमी न हुए तो पलेव करके आपने बुआई करनी चाहिए। पहला खेत की चोखी गहरी जुताई कर लिया, बाद में हेरो चला के खेत ने चोखी तरिया बुआई वास्ते तैयार कर सका और बुआई के अनुकूल बना सका। तो ये सारी क्रिया आपने करनी चाहिए जे आप मटर की खेती करनी है। बिंगे बाद में बात करें आप खाद उर्वरक की, तो खेत की तैयारी जब आप करता हुआ जदि आपने 200-250 क्विंटल जी गोबर की खाद है चोखी सड़ेड़ी गलेड़ी खाद हो प्रति हेक्टर की दर से खेत में मिला देनी चाहिए और फिर जुताई करनी चाहिए। अंतिम जब जुताई करा बी समय आपने 25 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास प्रति हेक्टर की दर से भूमि के अंदर चोखितरियाँ मिला देनी चाहिए। बिजाई आप क्यांगी भी करा, खेती आप क्यांगी भी करा, फसल आप कोई भी बीजा, सब शू जिको प्रभाव रवे भी फसल पर वो रवे किस्म को। और मटर की चोखी पैदावार लेने वास्ते आप उन्नत किस्म के बीज को प्रयोग करना चाहिए। अगेती फसल वास्ते आप अर्किल, हराबोना, ज्वार, मटर चार जकी ने जी सी 195 भी कहवा मटर अगेती छ आंगी जी की फलियां है वे 50-60 दिन में तैयार हो जाए। मुख्य जी की फसल लेनी हो बिंगमा बोनविला, ज्वार, मटर एक जिकी ने अपना जी सी 141 भी कहवा पंजाब 88, आज़ाद पी एक, आर पी तीन, जे पी 83 को प्रयोग कर सका। जे पी 83 जी की है बा छाछा रोग के प्रति रोधी किस्म है। इंगी फलियां 95-90 दिन के अंदर तैयार हो गए आपने फसल मिल जाए। किसान भाइयों दलहनी फसल है इंगे कारण इंगी जड़ांग जी की गंठ है बने विकसित करने वास्ते जरूरी है कि बीज ने आप राइजोबियम कल्चरों उपचारित कर लेवा। बीज को जी को उपचार है बी वास्ते आप 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल बना लेवा। इंगमा 3 पैकेट जी को राइजोबियम कल्चर है वो मिला देवा। वो राइजोबियम कल्चर जी को है वो आपने बाजार से मिल जाए और बीज ने इन घोल में चोखितरियाँ मिला देवा। उपचारित जी को बीज है बिना पहला छिया में सुखा लेवा चोखितरियाँ बिना तुरंत बाद में इन्हें बीज देवा। 1 हेक्टर बीज ने उपचारित करने वास्ते आपने 1.25 लीटर घोल पर्याप्त हो। प्रति हेक्टर 80-100 किलो बीज आपने बहुत होशियर बीज की बुआई वास्ते कतारों कतार की जी की दूरी है बापा 30 सेंटीमीटर रखा और बूंटे शू बूंटे की दूरी 8-10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई जी को है बा अक्टूबर के महीने में नवंबर के महीने में अपन करनी चाहिए। अक्टूबर शू पहला जे आप बुआई करा तो बा फसल जी की है बा बड़ी आपने मिलेगी को नहीं रबी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बूंटे की दूरी कतार की दूरी ए राखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बूंटे ने पूरा प्रकाश मिल बोक रहे, पूरी हवा मिल बोक रहे, खाद पानी सारी चीज़ आप दूरी जी की समुचित रखांगा। बिंग अंदर अगर खरपतवार होगी तो वह भी आप आसानी से निकाल सकांगा क्योंकि निराई गुड़ाई बहुत ही जरूरी है चाहे आप कोई भी फसल करा। खरपतवार बूंटे ने बढ़वार का नहीं रोके इन वास्ते जरूरी है कि निराई गुड़ाई भी आप समय पर करता रहा। बुआई के तुरंत बाद खास तौर पर जटे भारी भूमि हुआ बटे सिंचाई आप नहीं करनी चाहिए। सही नमी वास्ते आपने पलेव देने के बाद में ही बुआई करनी चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के 4-5 सप्ताह बाद में करा। हल्की जटे भूमि है बटे बुआई के बाद में हल्की सिंचाई करा। इनके बाद में 7-10 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से दूसरी सिंचाई करा। भारी माटी जटे है बटे आवश्यकता के अनुसार ही आपने सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के लगभग 1 महीने बाद में आपने निराई गुड़ाई की जरूरत पड़े वह आपने जरूर करनी चाहिए और जे जरूरत पड़े तो दूसरी भी निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। आ छोटी छोटी बातों को जो आप ध्यान रखांगा तो आप मटर की जी की फसल है वह बढ़िया ले सकांगा। अब हूँ चालू राम राम सा।

0: राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था मटर की उन्नत किस्में में बुआई। जानकारी दे रहे थे भारत भूषण शर्मा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है। अब जयपुर से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे को लेकर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक पेश किए गए। बाद में विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित पड़ी। राज्यसभा में भी नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी विजय भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत ने 23 जुलाई से इस महीने की 2 तारीख तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 4th स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते। आज विश्वभर में शेर दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्यजीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों, स्थानीय समुदायों और इस प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे लोगों के समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने सभी से प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराने का आग्रह किया कि एशियाई शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि शेर हमारी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और वन्यजीव विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भावी पीढ़ियों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। सीकर और झालावाड़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। नीमका थाना में 90 मिलीमीटर, मनोहर थाना में 80 और शाहबाद में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 10 और 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बारिश का दौर 13 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद 14 अगस्त से पश्चिमी और 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश में कमी आने की संभावना है। दूदू में आज RUIDP संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर पंचायत समिति सभागार में ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, अधिकारियों, प्रबुद्ध जन और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और फीडबैक लिए जाएंगे। दूदू शहर में करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से

0: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। पाली जिले की 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन मिला है। सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राजूला कला, लुणावा और भारुंदा के स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये प्रमाणन मिला है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम पेश कर रही हैं अलका वर्मा। आइए सुनते हैं।

चाय की प्याली हो या दोपहर की फुर्सत, घर का आंगन हो या काम की व्यस्तता, जहाँ भी हो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार सखियों, मैं हूँ आपकी सखी अलका वर्मा, लेकर आई हूँ कार्यक्रम महिला जगत, कुछ रोचक जानकारियाँ और कुछ प्यारे प्यारे गीतों के साथ। आज के कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे, आपकी पसंद के आपको कुछ गीत सुनवाएंगे, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

क्यों पहेली सुनते ही अक्सर जो है वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दादी नानी की चौपाल, परिवार के साथ बैठकर बुझाई जाने वाली पहेलियाँ और सही उत्तर मिलने पर चेहरे पर आने वाली खुशी, उसका तो क्या ही कहना। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि पहेलियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, ये जो हैं वो हमारे दिमाग की कसरत भी करती हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग को सक्रिय रखने के लिए सोच विचार और मानसिक गतिविधि भी ज़रूरी होती है। पहेलियाँ जो है वो हमें किसी भी सवाल के बारे में ध्यान से सोचने के लिए, अलग अलग संभावनाओं पर विचार करने की और सही उत्तर तक पहुँचने के लिए प्रेरित करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहेलियाँ क्यों हैं खास, तो पहेलियाँ हल करते समय हमारा जो दिमाग है वो याददाश्त, तर्क और कल्पना तीनों का इस्तेमाल जो है वो एक साथ ही करता है। किसी भी पहेली का उत्तर जो है वो तुरंत समझ में नहीं आता, तो हम उनमें जो संकेत मिलते हैं उनको जोड़ते हैं, पुराने अनुभवों को भी हम याद करते हैं और फिर जो है हम उसका समाधान खोजते हैं, और इससे जो है वो एकाग्रता और समस्या सुलझाने की क्षमता का अभ्यास जो है वो हमें मिलता है। बच्चों के लिए जो पहेलियां हैं वो विशेष रूप से उपयोगी हो सकती हैं, इससे उनमें सवाल पूछने, तर्क लगाने और नई चीज़ों को समझने की रुचि जो है वो बढ़ती है। वहीं जो बड़े और बुजुर्ग हैं वो पहेलियां, संख्या पहेलियां, सुडोकू और अन्य मानसिक खेलों के माध्यम से अपने समय को रोचक जो है वो बना सकते हैं। आजकल तो मोबाइल फोन और डिजिटल मनोरंजन के दौर में हमारा जो काफ़ी समय है वो स्क्रीन पर ही बीतता है, और ऐसे में कुछ समय निकाल कर पहेलियाँ हल करना एक अच्छा मानसिक अभ्यास जो है वो हो सकता है। परिवार में भी एक छोटा सा पहेली समय रखा जा सकता है कि खाने के बाद या शाम को चाय के समय जो है परिवार के सदस्य एक दूसरे से कभी कभी पहेलियाँ पूछे, इससे मनोरंजन तो होगा ही साथ ही बातचीत

भी होगी और पारिवारिक जुड़ाव भी जो है वो बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ घंटों पहेलियाँ हल करें, दिन में कुछ मिनट के लिए इसे हल कर सकते हैं। शब्द पहेली, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, याददाश्त के खेल या सामान्य ज्ञान के सवाल, ये सभी जो हैं वो दिमाग को सक्रिय रखने के मनोरंजन के तरीके जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पहेली हल करना किसी बीमारी का इलाज जो है वो नहीं है और ना ही अकेले मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त की गारंटी देता है। इसे बस मनोरंजन और मानसिक सक्रियता की एक अच्छी आदत के रूप में जो है वो हम लोग अपना सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचें कि इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा या हमें कोई बीमारी है उसका इलाज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। माता पिता बच्चों में उम्र के अनुसार पहेलियाँ पूछें, दादा दादी अपनी पुरानी लोक पहेलियाँ बच्चों को सिखाएं, उन्हें सुनाएं, और पति पत्नी, भाई बहन या मित्र आपस में पहेलियों की छोटी छोटी प्रतियोगिताएं रख सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आजकल किटी पार्टी या ऐसी चीज़ों में भाग लेती हैं, तो आप उन

ऐसा नहीं है। माता पिता बच्चों में उम्र के अनुसार पहेलियाँ पूछें, दादा दादी अपनी पुरानी लोक पहेलियाँ बच्चों को सिखाएं, उन्हें सुनाएं, और पति पत्नी, भाई बहन या मित्र आपस में पहेलियों की छोटी छोटी प्रतियोगिताएं रख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आजकल किटी पार्टी या ऐसी चीज़ों में भाग लेती हैं, तो आप उनमें भी ये चीज़ें रख सकते हैं, पहेलियां पूछ सकते हैं, उनका जवाब ढूंढ सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पहेली पूछे तो उसे केवल मनोरंजन समझ कर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उसे हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर पहेली के साथ आपका दिमाग कुछ पल के लिए ही सही सोचने, समझने और समाधान खोजने में व्यस्त हो जाता है। तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, गीत लिखा हसरत जयपुरी ने है और फिल्म का नाम है गीत।

तो क्यों एक समय था जब शाम होते ही परिवार के लोग जो हैं वो एक जगह बैठते थे, दादा दादी की कहानियाँ, लोकगीत, अंताक्षरी, ताश या दूसरे जो पारंपरिक खेल हैं और रेडियो के कार्यक्रम जो हैं वो घर के मनोरंजन का हिस्सा जो है वो हुआ करते थे। फिर आया सिनेमा का दौर, टेलीविज़न आया और मनोरंजन ने नया रूप ले लिया। और आज तो मोबाइल फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन में फिल्म, संगीत, समाचार, खेल, वेब सीरीज़, वीडियोस और सोशल मीडिया सब कुछ जो है वो उपलब्ध है। यानी कि मनोरंजन अब हमारे घर तक आने का जो है इंतज़ार नहीं करता, मनोरंजन हमारी जेब में ही चलता है। रेडियो सुनते हुए हम आवाज़ों से तस्वीर बनाते थे। उद्घोषक की आवाज़, गीतों की धुन और नाटक के संवाद जो हैं वो हमारी कल्पना को उड़ान देते थे। फिर टेलीविज़न आया, अब आवाज़ के साथ तस्वीर भी हमारे सामने थी। धारावाहिक, फिल्में, संगीत कार्यक्रम, खेल और समाचार, टीवी ने मनोरंजन की दुनिया को बदल दिया है। इसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट ने मनोरंजन को और भी तेज़ कर दिया है। और फिर आया स्मार्टफोन का दौर, और अब किसी कार्यक्रम के समय का इंतज़ार ज़रूरी नहीं है, जब मन किया जो मन किया देख लिया। आज मोबाइल मनोरंजन का सबसे आसान साधन बन चुका है। छोटे छोटे वीडियोस, ऑनलाइन फिल्में, संगीत, पॉडकास्ट, गेम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के मनोरंजन के तरीके जो हैं वो बदल रहे हैं। पहले हम मनोरंजन के लिए निर्धारित समय निकालते थे। कई बार मनोरंजन हमारे खाली समय को खुद ढूंढ लेता है। बस मोबाइल उठाइए, उंगली से स्क्रीन को ऊपर की ओर करते जाइए और एक के बाद एक जो वीडियो है वो आपके सामने आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मनोरंजन के इस बदलते रूप ने हमें अधिक खुश किया है, या हम मनोरंजन के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा ही स्क्रीन देख रहे हैं। पहले की बात करें तो पहले मनोरंजन अक्सर सामूहिक होता था। एक टीवी और पूरा परिवार, एक रेडियो और पूरा घर, एक कहानी और बहुत सारे श्रोता। लेकिन आज एक ही घर में अलग अलग लोग अपने अपने मोबाइल पर अलग अलग सामग्री देख रहे होते हैं। घर की बात क्या करूं, ये कहूं कि अगर एक जगह पर भी चार लोग बैठे हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। एक साथ एक मोबाइल में कोई नहीं देख रहा होता, एक दूसरे से कोई नहीं बात कर रहा होता। बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देख रहे होंगे, और पिता जो हैं बुज़ुर्ग हैं तो जाहिर सी बात है समाचार के शौकीन होंगे तो वो समाचार देख रहे होंगे, और दादा दादी जो हैं उनकी बात करें तो वो किसी भजन या पुराने गीतों का आनंद ले रहे होंगे। सुविधा बढ़ी है, विकल्प भी बढ़े हैं, लेकिन साथ बैठने का जो समय है ना सखियों, वो बहुत ही कम हो गया है। हमारे पारंपरिक मनोरंजन के साधनों की बात करें तो भारत में लोकगीत, लोक नृत्य, कठपुतली, नौटंकी, लोक नाटक, मेले, कहानी, किस्से और पारंपरिक खेलों की समृद्ध परंपरा रही है। त्योहारों और मेलों में पूरा परिवार जो है वो साथ जाता था, बच्चे खेलते थे, बड़े बातचीत करते थे और बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने अनुभव जो हैं वो सुनाते थे। और इन गतिविधियों में मनोरंजन के साथ साथ जो है ना लोक संस्कृति और पीढ़ियों के बीच के संवाद भी जुड़ा हुआ था।

आज आधुनिक मनोरंजन के साथ साथ इन परंपराओं को बजाय रखना भी हमारी जो है वो जिम्मेदारी बन गई है। सखियो, बातें आपके साथ इस विषय पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो वक्त हो चुका है कार्यक्रम का अगला गीत सुनने का। आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म चरस में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

सखियों, संगीत भी मनोरंजन के बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक समय जो है वो लोग रेडियो पर अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए कार्यक्रम का इंतज़ार करते थे। फिर कैसेट्स आए, सीडी आए, डीवीडी है, और आज संगीत की पूरी दुनिया जो है वो मोबाइल में उपलब्ध है। लेकिन पुराने गीतों को सुनने का आनंद जो है ना, वो आज भी अलग ही है, क्योंकि संगीत केवल कानों से नहीं, यादों से सुना जाता है। मनोरंजन के बदलते स्वरूप का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर दिखाई देता है। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, रस्सी कूदना, लुका छुपी जैसे खेलों में घंटों बिताते थे। आज मोबाइल गेम्स और ऑनलाइन वीडियो बच्चों के मनोरंजन का हिस्सा बन गए हैं। डिजिटल साधनों के अपने फायदे हैं, उनसे सीखना और रचनात्मकता के अवसर भी मिलते हैं, लेकिन ज़रूरत है संतुलन की। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम उम्र और ज़रूरत के अनुसार सीमित रखना, उन्हें खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय देना और माता पिता का उनके साथ समय बिताना। महिलाओं के मनोरंजन का स्वरूप भी जो है ना सखियों, वो काफ़ी बदल गया है। पहले मनोरंजन का बड़ा हिस्सा परिवार और सामाजिक मेल जोल से जुड़ा होता था। गीत संगीत, त्यौहार, मेहंदी लगाना, लोकगीत, सहेलियों से बातचीत और सामूहिक गतिविधियाँ, ये जो है पुराने ज़माने में हिस्सा होती थी। पहले के टाइम में हम सबने देखा होगा कि सबने अपना अपना काम किया और एक घर के बाहर सर्दियां हैं तो धूप में बैठ के, गर्मियां हैं तो किसी एक के घर पे बैठ के, शाम के टाइम में सब अपना अपना काम ले आते थे, सब गपशप भी करते थे और अपना अपना काम भी करते रहते थे। लेकिन आजकल जो है ये सब चीज़ें जो है वो लुप्त हो चुकी हैं। आज महिलाएं ऑनलाइन संगीत सुनती हैं, फिल्में देखने लगती हैं, वेब सीरीज़ हैं, डिजिटल पुस्तकें भी आ चुकी हैं, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनका मनोरंजन का साधन जो है वो बन गई हैं। ये जो बदलाव है महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार मनोरंजन चुनने की जो है वो स्वतंत्रता देता है। सखियो, मनोरंजन का उद्देश्य केवल समय बिताना नहीं है। अच्छा मनोरंजन हमें तनाव से कुछ देर के लिए दूर करता है, मन को प्रसन्न करता है। संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, बागवानी करना, परिवार के साथ बातचीत या हल्का फुल्का कार्यक्रम, हास्य कार्यक्रम जो है ये देखना, ये सभी व्यक्ति की पसंद के अनुसार मनोरंजन के अच्छे विकल्प जो हैं वो हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो है वो लगातार समय तक आप ना रहें, ये ज़रूरी है। भोजन करते समय मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें। परिवार के साथ कुछ समय बिना स्क्रीन के भी बिताएं। बच्चों को आउटडोर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। मनोरंजन के साथ साथ पढ़ना, संगीत, कला और रचनात्मक गतिविधियों को भी जगा दें। और आधुनिक मनोरंजन का आनंद ज़रूर लीजिए, लेकिन पुराने मनोरंजन की मिठास को कम ना कीजिए। और मनोरंजन की बात हो और गीत ना हो हमारे कार्यक्रम में, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगला गीत फिल्म मन की आंखों से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इसमें आवाज़ें दी हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

0: क्योंकि कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक वार्ता सुनवाने का। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक वार्ता, खेल में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार हैं लवली जोशी। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: आदरणीय श्रोतागण नमस्कार। कहा जाता है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मापदंड केवल उसकी आर्थिक शक्ति नहीं होती, बल्कि यह भी होता है कि उस राष्ट्र में महिलाओं को कितने अवसर, कितना सम्मान और कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। जब किसी देश की बेटियां मैदान में उतरती हैं, अपने सपनों के लिए संघर्ष करती हैं और विश्व मंच पर तिरंगा लहराती हैं, तब केवल एक खिलाड़ी नहीं जीतती, बल्कि पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होता है। आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां खेल का मैदान केवल पुरुषों की पहचान नहीं रह गया है। आज हमारी बेटियां भी दौड़ के मैदान में अपनी गति से इतिहास लिख रही हैं, रिंग में अपने साहस का परिचय दे रही हैं, हॉकी के मैदान में टीम भावना का प्रदर्शन कर रही है, बैडमिंटन कोर्ट पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और भारतोलन जैसे कठिन खेलों में अपनी शक्ति का परिचय दे रही हैं। एक समय था जब समाज में यह धारणा थी कि खेल केवल पुरुषों का क्षेत्र है, लड़कियों को घर की जिम्मेदारी तक सीमित समझा जाता था, उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के अवसर बहुत कम मिलते थे। लेकिन समय बदला, सोच बदली और महिलाओं ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। जहां अवसर मिलता है वहां बेटियां सफलता का नया इतिहास रच देती हैं। भारत की खेल यात्रा में अनेक ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने साहस, मेहनत और दृढ़ संकल्प से देश का नाम रोशन किया है। जब हम भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले

हमें उन संघर्षों को याद करना चाहिए जो उनकी सफलता के पीछे छिपे हैं। पदक जीतने के बाद पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करती है, लेकिन उस पद तक पहुंचने की यात्रा में वर्षों का अभ्यास, अनुशासन, असफलताओं से संघर्ष और अनेक त्याग शामिल होते हैं। जैसे कि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ओलंपिक में पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी। उनकी कहानी बताती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। मैरी कॉम ने सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद मुक्केबाजी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि मन में विश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। साक्षी मलिक ने कुश्ती जैसे कठिन खेल में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और देश की लाखों बेटियों को यह संदेश दिया कि वे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की उपलब्धि नहीं है बल्कि ये पूरे समाज में बदलाव का प्रतीक है। आज जब कोई छोटी बच्ची अपने हाथ में बैट पकड़ती है, दौड़ने के लिए मैदान में उतरती है या किसी खेल को अपना करियर बनाने का सपना देखती है तो उसके पीछे इन महान खिलाड़ियों की प्रेरणा होती है। खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, खेल व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष करने की शक्ति पैदा करता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए खेलों का महत्व और भी अधिक है। खेल उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। खेल के माध्यम से महिलाएं अपनी पहचान बनाती हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करती हैं। आज ग्रामीण भारत की बेटियां भी खेल के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। छोटे छोटे गाँव से निकलकर अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रही हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों में नहीं होती बल्कि वह गांवों की गलियों और खेतों के बीच भी जन्म लेती है। हमें यह समझना होगा कि जब हम एक बेटी को खेल का अवसर देते हैं तो हम केवल एक खिलाड़ी तैयार नहीं करते बल्कि एक आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व करने वाली महिला का निर्माण करते हैं। एक बेटी का मैदान में उतरना केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, यह समाज की सोच की जीत होती है। श्रोतागण, आज आवश्यकता है कि हम अपनी बेटियों को केवल सपने देखने की अनुमति ही ना दें, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन भी दे, क्योंकि जिस देश की बेटियां मैदान में मजबूती से खड़ी होती हैं, वह देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। आज खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी केवल एक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। जब एक लड़की खेल में आगे बढ़ती है तो वह अपने साथ अनेक लड़कियों के लिए रास्ते खुलती है। पहले कई परिवारों में यह सोच थी कि लड़कियों को खेलों में अधिक समय नहीं देना चाहिए, लेकिन अब माता पिता समझने लगे हैं कि खेल भी शिक्षा और करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों के माध्यम से बेटियां अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता सीखती हैं। मैदान केवल जीत और हार का स्थान नहीं होता बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण का विद्यालय होता है। महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने में सरकार, खेल संस्थानों और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न योजनाओं, परीक्षण सुविधाओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। गाँव और छोटे शहरों में प्रतिभाशाली लड़कियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल सामग्री और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना आवश्यक है। कई बार प्रतिभा मौजूद होती है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बेटी का सपना केवल इसीलिए अधूरा न रह जाए क्योंकि उसे अवसर नहीं मिला। प्रतिभा को पहचानना और उसे सही दिशा देना पूरे समाज

0: की जिम्मेदारी है। खेलों में महिलाओं की सफलता का एक बड़ा प्रभाव यह भी है कि इससे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा है। आज जब कोई महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो वह केवल अपना नाम नहीं बनाती बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की क्षमता को प्रदर्शित करती है। महिला खिलाड़ी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमें अपनी बेटियों से यह नहीं कहना चाहिए कि ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हमें कहना चाहिए आगे बढ़ो, प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। ओलंपिक देश को विश्व खेलों का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वह केवल एक प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता बल्कि पूरे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को अपने साथ लेकर चलता है। भारत की महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह सिद्ध किया है कि वे किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। कर्णा मलेश्वरी ने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारतोलन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वह ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी उपलब्धि ने भारत की अनेक बेटियों को खेलों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी सफलता ने भारत में बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाया, हजारों युवा खिलाड़ियों को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। लवलीना बोरगोहन ने मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतकर यह साबित किया कि भारतीय महिलाएं ताकत, साहस और आत्मविश्वास में किसी से कम नहीं है। इन सभी खिलाड़ियों की कहानियां हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। सफलता का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन दृढ़ निश्चय और मेहनत से मंजिल अवश्य प्राप्त की जा सकती है। यह बदलाव हमें याद दिलाता है कि जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है, और जब बेटियों को अवसर मिलता है तो इतिहास बनता है। आने वाला भारत वह भारत होगा जहाँ हर बेटी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जहाँ खेल का मैदान लड़के और लड़कियों के बीच अंतर नहीं करेगा बल्कि केवल मेहनत, प्रतिभा और समर्पण को पहचानेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, बेटियों को उड़ान दीजिए, वे आसमान छू लेंगी। उन्हें अवसर दीजिए, वे इतिहास लिख देंगी। उन्हें विश्वास दीजिए, वे भारत का गौरव बन जाएंगी।
1: तो क्यों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, खेल में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार थी लवली जोशी। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का अगला गीत सुनने का।

गीत लिया है फिल्म आ पाए बाहर आई से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत आनंद बख्शी का।

क्यों आप सबके स्नेह से ही हमारा ये जो कार्यक्रम है वो दिन प्रतिदिन इतनी उन्नति कर रहा है। संगीत का ये कारवा ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे, गीतों की महक यूं ही दिलों में बसाए रखिएगा, मुस्कुराहटों के दीप हर पल जलाए रखिएगा, फिर होगी मुलाकात नए गीतों और नई बातों के साथ। तब तक अपना प्यार और विश्वास जो है वो हम पर बनाए रखिएगा। और इसी शुभकामना के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति अभिलाषा फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

सके उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम पेश किया अलका वर्मा ने। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज़।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल

0: कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी

0: विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल x @AIR

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत। सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से पहला गाना सुनिए, ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, कार्यक्रम के आगाज़ में आप सुन रहे थे ताजमहल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

छलिया फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा दो गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, और ये है आपके लिए अगला खूबसूरत नगमा, सुनिए।

दोस्तों, पराया धन फिल्म का यह खूबसूरत दो गाना आपने सुना और यह है आपके लिए अगली पेशकश। आकाशवाणी सूरतगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत दो गाने। परदेसी फिल्म का यह नगमा सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, आपने परदेसी फिल्म का गाना सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और अब सुनिए इंतकाम फिल्म का ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफ़ी और लता की आवाज़ में।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म का ये गाना सुने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, सुनते हैं।

आपने नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे इस फिल्म का गाना सुना, और अब कार्यक्रम के आखिर में तीसरी आंख फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त 3 बज चुके हैं कुछ

आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 साल में बाबर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है और इनकी तादाद 891 हो गई है। अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का अहतमाम किया गया। इनमें बीड, थाने और बुल्ढाणा शामिल हैं। उधर मणिपुर में वजीर आला युमनाम खेमचंद ने अपनी रिहाइशगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी तसव्वुर करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में जोश और खरोश के साथ शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की समत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तमाही अजम की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त के जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। रूस ने बहरे हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसनोलिन ने बताया कि मुतबादल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए बोस्फोरस समेत दो कलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसनोलिन ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज़ मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नज़र सामने आई है जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाज़ों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं क्योंकि इससे वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी राबता फराहम हो सकता है। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजुर में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। खत्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1,000 परवाजें मनसूख की गई हैं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। ये तूफान जब जिंजियांग सूबे में युहान पहुंचा तो उस वक्त 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कर चल रहे थे। इधर चीन के मुख्तलिफ सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शंघाई में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हुकाम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बाबर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लायन के मस्कन और इसकी रेंज में वसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों की मजबूत शमूलियत के साथ बाबर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ्फुज़ करने की एक बाइसे तरगीब मिसाल है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बबर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरबा किलोमीटर तक फैल गया है। मजमून में इस बात का भी तذکرہ किया गया है कि भारत ने किस तरह बबर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है। साल 2015 में बबर शेरों की तादाद 523 थी जो 2025 में बढ़कर 891 तक पहुंच गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजुर्बात शेयर किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इफ्तिखार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता बल्कि एक नौजवान तालिबे इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के

0: जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनाकिद दौलत मुश्तरका खेलों में भारत तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में मजमूई तौर पर 39 तमगे जीते, जिनमें सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन की तारीफ की है, जिन्होंने 2026 दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत का मस्कशुदा नक्शा देखकर उस पर एतराज किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के दौरान उनके इस इकदाम को सराहा और कहा कि ये उस वक्त एक काबिल गौर और काबिल तारीफ कदम था जब वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए निकली थी। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि उनके इस इकदाम को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। गुज़श्ता दहाई के दौरान गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM पर मजमूई कारोबार 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनतों के महकमे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि खवातीन की क्यादत वाले 2 लाख से ज्यादा छोटे और बहुत छोटे कारोबारी इदारों समेत मजकूरा पोर्टल पर इस तरह के 12 लाख से ज्यादा कारोबारी इदारे नीज 42,000 से ज्यादा स्टार्टअप इदारे रजिस्टर्ड हैं। टेक्सटाइल्स महकमे की वजारत में सेक्रेटरी नीलम शामी राव ने कहा है कि भारतीय बुनकरों और डिजाइनर्स को अपनी आमदनी बढ़ाने की खातिर बदलते हुए मार्केट को बरूएकार लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में हैंडलूम डिजाइनर्स के कौमी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। मोहतरमा राव ने कहा कि हथकरघा शोबे में डिजाइन का अहम रोल होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंकरों अपने सामान के डिजाइन में बेहतरी लाकर अपनी अशिया और सामान की फरोख्त में इजाफा कर सकते हैं। इटली के शहर बोलोगना में कश्मीरी बरादरी के हजारों लोगों ने एहतजाजी मार्च निकाला और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों बेकसूर आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाए और सिविल सोसाइटी ग्रुप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ यकानगत का इजहार किया। मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले कश्मीरी बरादरी के लोगों की जानिब से मुजाहिरों में तेजी आने के तनाजुर में ये एहतजाज किया गया। इन मुजाहिरीन ने खित्ते में पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से वहशियाना कार्रवाई के मामले में बैनुल अक्वामी मुदाखलत का मुतालबा किया। इधर जम्मू कश्मीर के इंसानी हकूक के अलमबरदार इदारे के मुताबिक गुज़श्ता महीने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एहतजाज में तेजी आने के दौरान 93 आम शहरियों की मौत हुई। आज यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में रूस के निजेन काम्स में कम से कम 12 अफराद हलाक और 39 जख्मी हो गए। यह मॉस्को से 600 मील से ज्यादा दूर मशरक में वाकई है। ये शहर एक बड़ी और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ऑयल रिफाइनरी का मरकज है, जो इस हमले का मुमकिन हदफ है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे मुल्क में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है, हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। रूस ने अबनाई हुरमुज जैसी अहम आबी गुजरगाहों पर इन्हिसार कम करने की खातिर भारत के लिए एक रेल रूट की तजवीज रखी है। मशरकी चीन के कुछ हिस्सों में शदीद तूफान डॉल्फिन से काफी नुकसान हुआ है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। और आज बबर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 साल में बबर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है और इनकी तादाद 891 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे सामईन हमने लिए हैं वतन से मोहब्बत से भरे हुए। वतन की मोहब्बत से भरे हुए नगमे हर उम्र और हर फर्द के लिए दिलचस्पी और का बाइस हैं। हर एक शख्स का जज्बा होता है कि वो वतन से मोहब्बत करे और हिंदुस्तानी फिल्मों में इसकी अक्कासी हमें नुमाया तौर पर नज़र आती है।

देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक

वतन से मोहब्बत का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान में, ख्वाह अभी किसी भी उम्र का हो, ये पाया जाता है। और हर शख्स चाहता है कि ये अजीम मुल्क, जिसे दुनिया हिंदुस्तान के नाम से जानती है, हम इसकी खिदमत कर सकें, हम इसकी आज़ादी को कायम रख सकें। देश हमारे लिए हमारे ईमान की तरह अनमोल है।

0: जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है,
1: जहाँ हमारा

0: खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम कहकशां। कहकशां प्रोग्राम में आज सुनिए फिल्म अप्रैल फूल की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है जनाब मोहम्मद नफीस ने।
1: अशोक यानी अदाकार विश्वजीत एक बहुत बड़े खानदान का लड़का है। उसके वालिद का इंतकाल होने के बाद उसके चचा उसे सैलून में ले आए थे और वहीं उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। अशोक अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और रात घर पर देर से आता। उसके लिए हर दिन पहली अप्रैल होता और वो बाहर वालों के साथ साथ घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाता, जैसे कि लोग पहली अप्रैल को बेवकूफ़ बनाया करते हैं। चचा और अशोक का बड़ा भाई मेज पर नाश्ते के लिए बैठे और चचा अशोक के भाई को डांटते हैं क्योंकि उसने अशोक को सर पर चढ़ा रखा है। तभी चचा अपने कमरे में उठकर चले जाते हैं और उधर से अशोक घर में दाखिल होता है और अपने बड़े भाई से रुपए ऐंठता है अपने जन्मदिन का बहाना करके। चचा जी को जब इस बात का पता चलता है तो वो अशोक के भाई को डांटते हैं और कहते हैं कि आज भी उसने तुम्हें पागल बना दिया। तभी अशोक का फोन आता है और चचा फोन उठाते हैं। चचा अशोक से कहते हैं कि तूने अपने बड़े भाई को बेवकूफ़ बना दिया। तो अशोक उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज 1 अप्रैल है और मुझे आज सबको बेवकूफ़ बनाने का हक है। रात को अशोक घर पर आता है और चचा की तस्वीर के पास खड़ा होकर माफ़ी मांगता है। तभी चचा आते हैं और वो उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि तूने LLB किया है और अभी तक कोर्ट का मुंह भी नहीं देखा। तो अशोक जवाब देता है कि वहाँ झूठ बोलना पड़ता है। तो चचा गुस्से में कहते हैं कि तू कब तक अपने बाप की जायदाद के ऊपर टिकेगा, ये तेरे लिए खैरात है। अशोक को बर्दाश्त नहीं होता और वो चचा से वादा करता है कि वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा और घर छोड़कर चला जाता है। मिस्टर लाल यानी अदाकार जयंत एक खुफिया अफसर हैं जो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन जासूस मंटो यानी अदाकार सज्जन के कुछ आदमी उनके पीछे हैं। उनके बैग में कुछ ज़रूरी कागजात हैं। वो घबराहट में अशोक से टकराते हैं और अपना बैग अशोक के बैग से बदल देते हैं। बदमाश अशोक का बैग मिस्टर लाल का बैग समझ कर ले जाते हैं। मिस्टर लाल अशोक को बताते हैं कि ये मेरा बैग है और इसमें मुल्क की हिफाजत के कुछ ज़रूरी कागजात हैं। आज तुम ना मिलते तो ये कागजात दुश्मनों के हाथ लग जाते। मिस्टर लाल अशोक को अपना कार्ड देते हैं और मिलने को कहते हैं। मधु यानी अदाकारा सायरा बानो और तनु यानी अदाकारा नाजमा दोनों मिस्टर लाल की बेटियां हैं। तनु और मधु आदात में एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। तनु आजादाना ख्यालात की है जबकि मधु पुराने ख्यालात की है। मधु तनु को उसके नए नए फैशन पर डांटती रहती है मगर मधु उसे प्यार भी बहुत करती है। मधु और तनु अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो रही हैं। तभी मिस्टर लाल घर में दाखिल होते हैं। दोनों कहती हैं अगर हमारी माँ होती तो कितना ध्यान रखती। तभी मिस्टर लाल दोनों को ज़मीन दिखाते हैं और कहते हैं ये है तुम्हारी धरती माँ, इससे प्यार करो। मिस्टर लाल पूछते हैं कि क्या अशोक आया था। तभी तनु बोल पड़ती है कि वो जो दीदी को देखने आने वाले थे। डैडी जल्दी से दीदी की शादी करो और घर से भगाओ। तभी मिस्टर लाल हंसते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन अशोक मिस्टर लाल के दफ्तर आता है और मिस्टर लाल पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ अपने मुल्क में क्या चीज़ खींच लाई। तो अशोक जवाब देता है कि माँ बाप की मोहब्बत। मिस्टर लाल इस जवाब से खुश हो जाते हैं और गाड़ी की चाबी देकर कहते हैं कि मेरे बच्चों को पिकनिक पर ले जाओ। इधर तनु अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना चाहती है मगर मधु उसे इजाज़त नहीं दे रही है। इतने में अशोक घर आता है। तनु मधु से कहती है कि जीजा जी आए हैं। तनु दोनों को तारुफ कराती है। मधु और अशोक दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और तनु अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर निकल जाती है। पहली ही नज़र में मधु और अशोक दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। मधु नाचती गाती है।

अशोक मधु से होटल में कॉफी पीने को कहता है, मगर मधु उससे कहती है कि अब तो तुम्हारे बंगले पर आकर पीऊंगी, जहां हमारे डैडी ठहरे हैं। अब अशोक समझ जाता है कि मधु उसे गलती से अपना होने वाला शौहर समझ रही है। मधु ने जो बंगला बताया था, अशोक उस बंगले पर जाकर वहां की जानकारी लेता है और वहां रहने वाली मिसेस सिन्हा यानी अदाकारा चांद उस्मानी को अपने प्यार के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी मधु इतवार को चाय पीना आ रही है। मिसेस सिन्हा मान जाती है। अशोक के जाने के बाद मिस्टर सिन्हा यानी अदाकार IS जौहर अपने बंगले में दाखिल होते हैं और नौकरों पर गुस्सा करते हैं, मगर मिसेस सिन्हा प्यार से उनका गुस्सा दूर कर देती हैं। इतवार को मधु बंगले पर आती है, मगर तमाम नौकर छुट्टी पर होते हैं। मिस्टर और मिसेस सिन्हा नौकरों का काम अंजाम देते हैं। अशोक मधु पर रोक जमाने के लिए मिस्टर और मिसेस सिन्हा से नौकरों की तरह पेश आता है। मिस्टर और मिसेस सिन्हा भी खुश हैं। कॉफी पीने के बाद मधु और अशोक घूमने निकल जाते हैं और दोनों नाच गा रहे हैं।

मधु अशोक से कहती है कि मेरे डैडी बहुत जिद्दी हैं, वो तुमसे मेरी शादी नहीं करेंगे। मगर मधु अपने डैडी को मनाने का वादा करती है। मिस्टर लाल मान भी जाते हैं। मिस्टर लाल को खबर मिलती है कि बेला को जरूरी कागजात के साथ अगवा कर लिया गया है। मिस्टर लाल अपने आदमियों से कहते हैं कि हमारी ही आस्तीन में कुछ सांप पल रहा है, जब तक हम में यकजहती नहीं होगी तब तक हम कामयाब नहीं होंगे।

मिस्टर लाल अपने कमरे में एक किताब पढ़ते हैं कि एक लड़की ने अपने वालिद के कहने पर मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मिस्टर लाल भी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी लड़की मधु को चुनते हैं और मंटू का खात्मा करना चाहते हैं। वो मधु से कहते हैं कि तुम्हें प्यार मोहब्बत से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम मुल्क की हिफाजत करो। मधु अपने वालिद की तमाम बातों का इकरार कर लेती है और अशोक से फोन करके कहती है कि डैडी ने तुमसे शादी को मना कर दिया है और मैं अब अपने मुल्क के लिए लड़ूंगी, तुम मुझे भूल जाओ। मधु अब एंग्लो इंडियन लड़की के रूप में रीटा बनकर मंटू के अड्डे पर जाती है और मंटू से जान पहचान बढ़ाती है। मंटू उसके नकली रूप में आ जाता है, मगर मंटू की मुलाकात अभी तक मिस्टर लाल से नहीं हुई है। वो मिस्टर लाल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। मंटू का एक आदमी रसिक मिस्टर लाल की बेटी की सालगिरह का दावतनामा लाता है। मधु अशोक से फोन पर बात करती है कि तुम मेरी सालगिरह पर नहीं आओगे, और उसे वो गुजरे हुए दिनों की याद दिलाती है। मधु को पुराने लम्हात की याद आती है जो उसने अशोक के साथ गुजारे थे और अशोक उसके लिए गा रहा था।

सालगिरह की दावत में मंटू अपने साथी रसिक के साथ आता है और मधु को देखकर चौंक जाता है। वो अपने साथी रसिक से कहता है कि कहीं यही लड़की रीटा बनकर हमें धोखा तो नहीं दे रही है। मधु इन दोनों की बातें सुन लेती है और जल्दी से रीटा का रूप बदलकर अपने नकली घर में आ जाती है। रीटा को यहां देखकर मंटू मुतमइन हो जाता है। मंटू रीटा को चाहने लगा है। वो उसे एक होटल में लेकर जाता है मगर वहां अशोक भी होटल का बहरा बनकर पहुंच जाता है और जब भी मंटू रीटा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है अशोक बीच में आ जाता है। अशोक मंटू को यहां से भगाना चाहता है मगर मंटू अशोक की बातों में नहीं आता और वो रीटा को लेकर एक पुल पर चला जाता है। पानी में लड़कियों के तरह तरह के खेल होते हैं जिसमें मधु भी हिस्सा लेती है। यहां पर अशोक गाता है।

मंटू रीटा से, जिसे वो प्यार करता है, उससे पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है। मधु हाँ कर देती है। मंटू मधु से कहता है कि उसकी जान खतरे में है। वो उसे मिस्टर लाल का फोटो दिखाता है और कहता है कि मेरी जान को इस आदमी से खतरा है और मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूं। इस आदमी की एक बेटी है जिसका नाम मधु है, जिसकी शक्ल तुमसे हूबहू मिलती है। तुम उसकी बेटी मधु का कत्ल कर दो और तुम उसकी नकली बेटी मधु बनकर रहो और वहां से कागजात हासिल करो जिसमें मेरी जान है। मधु हां कर देती है। मंटू उसे बगैर आवाज वाली एक पिस्तौल देता है और काम को अंजाम देने को कहता है। मधु रीटा के रूप में एक क्लब में नाचती गाती है।

कि ये रीटा को मधु समझ रहा है और वो उसे खत्म कर देना चाहता है। वो अशोक को रीटा के जरिए बुलवाना चाहता है जो उसके सामने मधु बनकर जाए। मधु अशोक को भुला नहीं पा रही है और अपने डैडी को अशोक के बारे में बताती है। मिस्टर लाल उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, फिर अशोक से मिल लेना। मंटो रीटा को अशोक को लेने भेजता है। रीटा यानी मधु अपने आशिक अशोक से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि डैडी ने उसे क्या काम सौंपा है। अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अशोक को यह भी बताती है कि मंटो ने उसे बुलाया है। अशोक चलने को तैयार हो जाता है। अशोक और मधु प्यार की बातें कर रहे हैं। अशोक मधु से कहता है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तुमसे शादी कर ली। तो मधु कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों अभी हकीकत में शादी कर लेते हैं। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और गाते हैं।

अशोक को मंटू के पास लेकर आती है। मंटू बेआवाज वाली पिस्तौल से अशोक पर फायर करता है। अशोक मरने का झूठा नाटक करता है। इधर जब मधु अपने वालिद से मिलने बार बार जाती रहती है तो मंटू को शक हो जाता है कि रीटा ही मिस्टर लाल की बेटी मधु है। मिस्टर लाल और मधु दोनों घर में आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी मंटू और उसके साथी आ जाते हैं और मिस्टर लाल को कागजात के बदले रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, मगर मिस्टर लाल नहीं मानते। तभी यहां पर अशोक और उसके साथी आ जाते हैं और मंटू और उसके साथियों को बहुत मारते हैं। इधर मिस्टर लाल पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस वाले मंटू और उसके साथियों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह मिस्टर लाल और मधु अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और फिर से दो बिछड़े दिल यानी अशोक और मधु मिल जाते हैं।

सामने में आप सुन रहे थे कहकशा प्रोग्राम के तहत अप्रैल फूल फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था जनाब मोहम्मद नफीस ने, पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश रूप कुमार राठौड़, हरभजन और मोहम्मद सलामत की आवाज़ों में शहीद भगत सिंह फिल्म का नगमा, नगमा निगार नक्श लायलपुरी, मौसीकार जयदेव कुमार।

लीडर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में। बोल चकली बदायनी की थी, मौसीकार थी नौशाद। और सामिन अब सुनिए विनोद राठौड़, मोहम्मद सलामत और भूपिंदर सिंह की आवाज़ों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश मौसीकार हैं आनंद राज आनंद, फिल्म है शहीद, 23 मार्च 1931।

ಹಬ್ಬವನ್ನ

सरकारी इदारों में भी तिरंगे की धूम है। बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में गांधी मैदान के नजदीक ये मार्च शुरू हुआ और करगिल चौक के नजदीक जाकर खत्म हुआ। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया है। इनमें बीड, थाने और बुलधाना शामिल हैं। इटली के शहर बोलोगना में कश्मीरी बिरादरी के हजारों लोगों ने एहतजाजी मार्च निकाला। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों बेकसूर आम शहरों की हलाकतों की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी फोर्सेज के खिलाफ नारे लगाए और सिविल सोसाइटी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ यकानकद का इजहार किया। मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले कश्मीरी बिरादरी के लोगों की जानिब से मुजाहरों में तेजी आने के तनाजुर में ये एहतजाज किया गया। इन मुजाहरीन ने खत्ते में पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वहशियाना कार्रवाई के मामले में बैन अल-अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा किया। इधर जम्मू कश्मीर के इंसानी हकूक के अलमबरदार इदारे के मुताबिक गुज़श्ता महीने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एहतजाज में तेजी आने के दौरान 93 आम शहरियों की मौत हुई है। अमेरिका की मरकजी कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिका की बहरी अफवाज ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी नाफिज करने की कोशिशों के तहत 55 तजारती बहरी जहाजों का रुख तब्दील किया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि फौजी मशकों जिसमें नाकाबंदी का नफाज भी शामिल है की हिमायत के लिए मशरक वस्ता में 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज तैनात हैं। ये ताज़ा पेशरफ समुद्री कार्रवाई से मुतालिक पहले सामने आने वाली रिपोर्ट्स के बाद हुई है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई है। रूस ने बहरे हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इंसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारत कुसलिन ने बताया कि मुतबादल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए वशफोर समेत दो कलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे से बचने में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जनाब कुसलिन ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज़ मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नज़र सामने आई है जिसमें आब नए हुरमुस के रास्ते जहाज़ों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी गईं। मुजव्वजा रेलवे रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मजबूरियात पैदा हो सकते हैं क्योंकि इससे वस्ती जनूब एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रबता फराहम हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नजर की जा रही हैं। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजु में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। खित्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1,000 परवाजें मनसूख की गई हैं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था जो इस साल वहाँ आने वाला सबसे शदीद तूफान है। ये तूफान जब जियांग सूबे में युहान पहुंचा तो उस वक्त 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के तेज झक्कर चल रहे थे। इधर चीन के मुख्तलिफ सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शंघाई में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हुक्काम ने लोगों को जोर दिया कि गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। बब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एशियाटिक लाइन के मस्कन और इसकी रेंज में वसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का तहरीर करता मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों की मजबूत शमूलियत के साथ बब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार के पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बाइस तरकी मिसाल है। माहौलियात, जंगलात और आबहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने तहरीर करदा मजमून में कहा है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बब्बर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरबा किलोमीटर तक फैल गया है। मजमून में इस बात का भी तस्करा किया गया कि भारत ने किस तरह बब्बर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया। साल 2015 में बब्बर शेरों की तादाद 523 थी जो सन 2025 में बढ़कर 891 तक पहुंच गई। बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन मॉरिशस के 4 रोजा दौरे पर हैं। ये दौरा आज से शुरू हुआ है। वजारत दिफा ने कहा कि यह दौरा मॉरिशस के साथ दिफाई ताल्लुकात को वसी करने और बहरी सतह पर बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए भारत की लगातार कोशिशों का एक हिस्सा है।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का आज के इस युवाणी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप सुनेंगे अपना प्रिय कार्यक्रम युवाणी। आज के अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत और साथ ही दोस्तों हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात से। दोस्तों, मैं आपकी साथी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, बदलता समय और इस बदलते समय में नई चुनौतियाँ। साथियों, समय कभी नहीं रुकता, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। यह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो कल नया है, आज वह पुराना हो चुका है। जो आज नया है, वह कल इतिहास बन जाएगा, और यही समय की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, बदलते समय के साथ हमारे जीवन का तरीका, शिक्षा, रोजगार, समाज और सोच सब कुछ बदल रहा है। आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब किसी जानकारी को

प्राप्त करने में दिनों लग जाते थे, लेकिन आज कुछ ही सेकंड में दुनिया की जानकारी हमारी हथेली पर उपलब्ध है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ नया अवसर भी तो लेकर आता है और कुछ साथ में चुनौतियां भी। अवसर उन लोगों के लिए होते हैं जो सीखने और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। चुनौतियां कठिन बन जाती है जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती। युवाओं, आज का समय केवल डिग्री का नहीं बल्कि कौशल का समय है। केवल पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी, नई भाषाएं, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी उतने ही ज़रूरी है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता उसकी सफलता की संभावना कभी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, बदलते समय की बात करते हुए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर ज़मीन थी। एक किसान हमेशा पुरानी पत्तियों पर ही काम करता था, दूसरा किसान समय के साथ नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों को सीखता। कुछ टाइम बाद दोनों की स्थिति में बहुत अंतर आ गया। जिसने नई तकनीक अपनाई उसकी पैदावार बढ़ गई और उसकी आय भी बढ़ती गई, जबकि दूसरा किसान लगातार संघर्ष करता रहा। एक दिन उसने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? दूसरे किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने समय के साथ खुद को बदल लिया। लेकिन तुमने समय के साथ खुद को नहीं बदला और समय ने तुम्हें बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल खेती की नहीं बल्कि जीवन की भी कहानी है। यदि हम समय को बदलते समय के साथ अनुसार हम नहीं बदलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी यही तो चुनौती है, ध्यान भटकना। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया जहां ज्ञान का स्रोत है वहीं समय की बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं। कई विद्यार्थी पढ़ने बैठते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन उनका ध्यान भटका देते हैं। धीरे धीरे उनका समय मनोरंजन में बीत जाता है और लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। मोबाइल एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक भी है। दोस्तों, यदि आप मोबाइल का यूज़ सीखने के लिए करते हैं तो आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन यदि आपको अपने समय को नियंत्रित करने लगे मोबाइल तो यह आपकी प्रगति में बाधा भी बन सकता है। आज दुनिया तेज़ी से AI की ओर बढ़ रही है। मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। कुछ लोग डरते हैं कि AI नौकरियां छीन लेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नई टेक्नोलॉजी कुछ पुराने कार्यों को बदलती है, साथ में अपने नए अवसर भी पैदा करती है। यदि युवा नई तकनीकों को सीखेंगे तो भविष्य के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं मिलती, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। आज के समय में प्रतियोगिता बढ़ गई है लेकिन अवसर भी बढ़े हैं। पहले कुछ ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते थे, आज शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पर्यटन और अनेक क्षेत्रों में नई संभावनाएं बढ़ गई है। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ही शोर मचा दे। धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत ज़रूरी है। ज़िंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना है धैर्य रूपी कवर। दोस्तों, बदलते समय में केवल करियर बनाना ही पर्याप्त नहीं, अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्गों का अनुभव जो हमारे लिए खजाने से कम नहीं। आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हमें अपने बुज़ुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। जिस घरों में बुज़ुर्गों का सम्मान होता है वहाँ संस्कार, प्रेम और पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहती है। पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो आंधी भी उसे गिरा नहीं सकती। परिवार की जड़ें हमारे बुज़ुर्ग होते हैं। दोस्तों, बदलते समय में आगे बढ़ना ज़रूरी है लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और

रिश्तों को साथ लेकर आगे बढ़ना और भी जरूरी है। लीजिए दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे बदलता समय और नई चुनौतियाँ इस विषय पर। लीजिए अब कुछ नए और विषय की हम बात करेंगे। आज के डिजिटल युग की हम बात करेंगे। आज शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले शिक्षा का मतलब किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना, लेकिन आज शिक्षा का अर्थ है ज्ञान कौशल, व्यक्तित्व विकास और जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता। दोस्तों, आज का विद्यार्थी केवल कक्षा तक सीमित नहीं, इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे साधनों ने सीखने के लिए नए द्वार खोले हैं। लेकिन एक सवाल भी है दोस्तों, क्या हम इन संसाधनों का सही यूज़ कर रहे हैं? कई बार घंटों विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन पर रहते हैं लेकिन सीखने की बजाय अपना समय गंवा देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करें पर टाइम को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अधिक चर्चा हो रही है। यह तकनीक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और उद्योग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में तेजी से बदलाव ला रही है। कुछ युवाओं को लगता है कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेगी, लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह है कि मशीनें केवल उन्हीं लोगों की जगह लेगी जो सीखना बंद कर देंगे। यदि हम युवा नई टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उसे अपनाएंगे, अपने कौशल को विकसित करेंगे तो वे भविष्य के लिए हमारी नेतृत्वकर्ता भी बन सकते हैं। आज ज़रूरी है सीखने की, समझने की और लगातार स्वयं को बेहतर बनाने की। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। एक युवक था जो एक छोटे गांव में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। पढ़ाई के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लोग अक्सर कहते थे, तुम बड़े सपने मत देखो, लेकिन उसने एक बात तय कर दी थी कि परिस्थितियां उसकी पहचान नहीं बनेंगी। वह रोज़ सुबह बच्चा जल्दी उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता। एक दिन वह एक बड़ा अफसर बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां मनुष्य पर हावी नहीं हो सकती। सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प से मिलती है। दोस्तों, यदि हम कुछ ठान ले तो जीतना अवश्य हो जाता है। आज का युवा यदि ठान ले कि वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है तो क्यों ना अपने बहानों को दूर रखा जाए। बहाना कहता है समय नहीं है, मेहनत कहती है समय निकालो। बहाना कहता है संसाधन नहीं है, सफलता कहती है जो है उसी से शुरुआत करो ना। दोस्तों, आज एक और बड़ी चुनौती है मानसिक तनाव। प्रतियोगिता बढ़ रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही है और कई बार युवा स्वयं पर बहुत अधिक दबाव महसूस करते हैं। ऐसे समय में यह समझना ज़रूरी है कि जीवन केवल परीक्षा या नौकरी पाना नहीं है। जीवन एक यात्रा है दोस्तों। असफलता इस यात्रा का अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मजबूरी आएंगी, परिस्थितियां हमारे विपरीत होंगी, लेकिन जो अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकता है वह दुनिया के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

जब भी जीवन में कठिनाई आए तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इससे सीख सकता हूँ? यही सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। हारना बुरा नहीं दोस्तों, हार मान लेना बुरा होता है। मानसिक

हम सभी के माइंड में ये बात आती ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि वे समय की कीमत समझते हैं। समय वह संपत्ति है जो एक बार चला गया वापस नहीं आता। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक छात्र हमेशा कहता था उसके पास पढ़ाई का समय नहीं बचता। उसके शिक्षक ने उसे खाली डिब्बा दिया और उसमें बड़े पत्थर डाल दिए। फिर पूछा, क्या डिब्बा भर गया? छात्र बोला, हाँ टीचर जी, डिब्बा तो भर गया। शिक्षक ने उसमें छोटे कंकड़ और डाल दिए, वे पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गए। फिर शिक्षक ने रेत डाल दी, रेत भी खाली जगह में भर गई। शिक्षक ने कहा, यदि मैं पहले रेत भर देता तो पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। फिर उन्होंने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम अपना समय छोटी छोटी अनावश्यक चीज़ों से भर दोगे तो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं बचेगा। दोस्तों, जीवन के बड़े पत्थरों को पहचानिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, चरित्र और लक्ष्य, इन्हें प्राथमिकता दीजिए। आज का समय केवल नौकरी ढूंढने का नहीं बल्कि अवसर बनाने का भी है। कई आज युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कई युवा कृषि में नवाचार कर रहे हैं, कई युवा डिजिटल माध्यमों से रोजगार के नए रास्ते बना रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है दोस्तों, और यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि युवा जागरूक हो, शिक्षित हो, मेहनती हो, तो हमारा देश ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्र निर्माण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूकता के संदेश दीजिए। लीजिए, बातें तो यूं ही चलती रहेगी। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अब अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों, इस गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे डिजिटल युग एक नया अवसर इस विषय पर। लीजिए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में और कुछ अन्य जानकारी। दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया हमारी हथेली में समा गई है। एक छोटा सा मोबाइल फोन हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकता है। एक मोबाइल फोन में पूरी दुनिया हम देख सकते हैं अपने हाथों में रख के। दोस्तों, कुछ वर्षों पहले जिस जानकारी को प्राप्त करने में कई दिन लग जाते थे, आज कुछ ही मिनटों में वो उपलब्ध हो जाती है। लेकिन क्या हम इस अवसर का सही यूज़ कर रहे हैं? यह सवाल भी हम सभी के जहन में आता ही है। दोस्तों, डिजिटल युग केवल इंटरनेट और मोबाइल का नाम नहीं, यह सोच में बदलाव का नाम है। यह सीखने, आगे बढ़ने और दुनिया के साथ मिलकर चलने का अवसर है। आज गांव का विद्यार्थी भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, किसान मौसम की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकता है, व्यापारी ऑनलाइन व्यापार कर सकता है, एक रोगी घर बैठे डॉक्टर से सलाह कर सकता है, युवा दुनिया के किसी भी कोने से नई नई रोज चीजें सीख सकते हैं। दोस्तों, यही डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी ताकत है। एक विचार हमेशा याद रखिए, तकनीक उन लोगों के लिए अवसर बन जाती है जो सीखते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नया परिवर्तन आता है तो हम में से कई लोग हम डरते हैं। जब बिजली आई तब भी लोग डरते थे, जब कंप्यूटर आया तब भी लोगों ने कहा सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय ने साबित कर दिया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे समझना चाहिए। आज डिजिटल युग भी हमें यही संदेश देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। वह बड़े शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर

सकता था, उसके पास साधारण सा फोन था। उसने इंटरनेट पर मुफ्त ऑनलाइन क्लासें देखनी शुरू की, रोज थोड़ा थोड़ा सीखता गया, कभी अंग्रेजी सीखी कभी कंप्यूटर सीखा, और फिर उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी की, और कुछ टाइम बाद वह गवर्नमेंट जॉब लग गया। जब लोगों ने पूछा सफलता कैसे मिली, तब उसने कहा, मेरे पास साधन नहीं थे लेकिन मेरे पास दृढ़ निश्चय, सीखने की इच्छा थी। दोस्तों, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक मंजिल ही काफ़ी है सफलता तक जाने के लिए। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी खूबी है कि अवसर अमीर और गरीब में भेद नहीं करता, जो सीखना चाहता है उसके लिए रास्ते खुद खोल देता है। आज लाखों युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं, डिजिटल कौशल विकसित कर रहे हैं और अपने समय को, सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। आज कई ऐसे अवसर हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, जिनका आज काफ़ी प्रचलन है और जिससे नई नई टेक्नोलॉजियाँ भी बन रही हैं। दोस्तों, सीखते रहना भी ज़रूरी है। डिजिटल युग ने पढ़ाई का तरीका भी बदल दिया है। पहले छात्र पुस्तकालयों में जाकर घंटों बैठकर जानकारियाँ खोजते थे, आज ऑनलाइन लाइब्रेरियाँ भी उपलब्ध है, और पहले किसी विशेषज्ञ तक पहुँचना कठिन था, आज दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान मोबाइल पर ही हम देख सकते हैं। दोस्तों, पहले सीमाएं थी, आज संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है, तकनीक का सही यूज़ करना। यह निर्णय हमें करना है कि एक विद्यार्थी रोज 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है, दूसरा विद्यार्थी उसी समय में पढ़ाई करता है और नई चीज़ें सीखता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की दिशा अलग हो जाती है, क्योंकि समय का उपयोग अलग अलग था। समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन समय को हम पकड़ नहीं सकते, हम समय को मुट्ठी में अपनी बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, अपनी पहचान, लाइक और फॉलोअर से मत डरिए, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके पीछे भागी। दोस्तों, दुनिया आपको स्क्रीन पर देखती है, लेकिन आपकी असली दुनिया आपके कर्मों से बनती है। आज के युवाओं के सामने एक समय और धैर्य की कमी, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम में से हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमारी मेहनत भी ऐसे ही होती है, परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन हर प्रयास भविष्य की नींव तैयार करता है। इसीलिए अपनी मेहनत निरंतर जारी रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।

दोस्तों, कभी एक समय था जब किसी गांव में बनने वाली वस्तुएं केवल उस गांव तक सीमित रह नहीं जाती थी। किसी छोटे शहर का कलाकार अपने शहर से बाहर पहचान नहीं बना पाता था। किसी किसान की बेहतरीन उपज भी सीमित बाजार तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज

वही समय है और वही समय बदल चुका है। आज इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। अब गांव का उत्पाद दुनिया के किसी भी देश तक पहुंच सकता है। एक छोटा सा स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन सकता है। एक साधारण युवा अपने हुनर से पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है और यही है दोस्तों लोकल टू ग्लोबल की ताकत। श्रोताओं, जब हम लोकल टू ग्लोबल की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल विदेशों में सामान बेचने से नहीं, इट मीन्स अपनी पहचान बनाना, अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना, अपने हुनर को वैश्विक मंच देना और अपने सपनों को सीमाओं से मुक्त करना। आज हमारा भारत वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसी सोच लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। हमारे देश में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो विश्व स्तर पर पहचान बना सकती हैं, जिनमें हमारे हस्तशिल्प, हमारी कला, संस्कृति, किसान, योग, संगीत और हमारी पारंपरिक वस्तुएं। दोस्तों, ये सब भारत की ताकत है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से कस्बे में परिवार पीढ़ियों से हस्तशिल्प का काम करता था। उनकी कला बहुत सुंदर थी, लेकिन ग्राहक सीमित थे, आय भी सीमित थी। एक दिन परिवार के एक युवा सदस्य ने उनके उत्पादों की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली। धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और देश के विभिन्न राज्यों से ऑर्डर आने लगे। दोस्तों, कुछ टाइम बाद विदेशों में भी मांग बढ़ने लगी। जो कला कभी एक छोटे से बाजार तक सीमित थी, वह दुनिया तक पहुंच गई। देखिए, यह चमत्कार नहीं था, यह डिजिटल युग और सही सोच का परिणाम था। दोस्तों, यह छोटी सी प्रेरक कहानी बताती है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी तो केवल सही मंच और सही दिशा की होती है। आज का युवा यदि अपने हुनर को डिजिटल दुनिया से जोड़ दे तो उसके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं लोकल टू ग्लोबल की यात्रा आत्मविश्वास से ही तो शुरू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं छोटे से गांव से हूँ, मेरे पास तो संसाधनों की कमी है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक सफल लोग साधारण परिस्थितियों से ही निकले हैं। सफलता का संबंध आपके जन्म या स्थान से नहीं होता, बल्कि आपकी सोच से होता है। सफलता को नहीं पता कि आपका परिवार कैसा है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ना ही सफलता को ये पता होता कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपका धर्म कौन सा, आपकी जाति कौन सी है। सफलता तो बस मेहनत मांगती है। दोस्तों, एक विद्यार्थी गांव में रहकर भी वैश्विक स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक कलाकार छोटे शहर से दुनिया तक पहुंच सकता है। एक किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकता है। आज दुनिया प्रतिभा को पहचानती है। दोस्तों, यदि आपके पास कौशल है, मेहनत है और सीखने की इच्छा है तो दुनिया आपके लिए खुली है। आप कहाँ से आए हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हैं यह जरूरी है। यह अवसरों का मंच है। सोशल मीडिया का उपयोग करने का, सही ढंग से अपने लक्ष्यों की ओर प्राप्त करने का मंच है। कई युवा अपने हुनर को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई संगीत साझा कर रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, कोई कला प्रस्तुत कर रहा है, कोई कृषि नवाचार बता रहा है और लाखों लोग उनसे सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। सोशल मीडिया को यूज़ पहचान बनाने के लिए कीजिए, केवल समय बिताने के लिए नहीं। अपनी प्रतिभा को दिखाइए, ज्ञान को साझा कीजिए, कुछ नया सीखिए और दूसरों को प्रेरित कीजिए।
लोकल टू ग्लोबल की यात्रा

में शिक्षा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। डिग्रियों के साथ साथ कौशल, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल, समस्या समाधान करने की क्षमता और लीडरशिप जैसे गुण भी प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाते हैं। दोस्तों सीखना कभी मत छोड़िए। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, रोजगार के स्वरूप बदल रही है और जो सीखता चला जाता है वह आगे बढ़ता रहता है। लीजिए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये फिल्मी गीत।

दोस्तों, हमारा देश प्रतिभाओं का देश है। यहाँ हर गांव, कस्बे और शहर में कोई ना कोई विशेष कला छिपी है। कहीं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, कहीं बुनाई की कला, कहीं लकड़ी पर नक्काशी की कला, कहीं कढ़ाई और सिलाई का अद्भुत हुनर, तो कहीं लोक संगीत और लोक चित्रकला की अनमोल विरासत। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके हाथों में जादू है, अपनी मेहनत कला से चीजें बनाते हैं। आज का समय बदल रहा है, लेकिन आज डिजिटल तकनीक ने कला को नए पंख दिए हैं। आज गांव की कला दुनिया तक पहुंच सकती है। छोटे कारीगर भी ऑनलाइन उत्पाद बेच सकते हैं और एक कलाकार अपनी घर बैठे लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हुनर कभी छोटा नहीं होता, केवल उसे दिखाने का मंच छोटा हो सकता है, लेकिन हुनर एक बहुत बड़ी चीज होती है। हर कोई कला, हर कोई हुनर हर किसी के पास नहीं होता। अपने हुनर को पहचानिए और डिजिटल पंख दें अपने हाथों की कलाओं को।

0: लीजिए दोस्तों, अब चलते हैं आज की ऐतिहासिक घटनाओं की ओर। आज यानी 10 अगस्त के दिन कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, लीजिए जानेंगे। आज ही के दिन 1675 में इंग्लैंड के ग्रिनविच में प्रसिद्ध रॉयल ऑब्जर्वेटरी की आधारशिला रखी गई। 1990 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान मैगेलेन शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। 1860 में आज ही के दिन महान संगीत शास्त्री पंडित विष्णु नारायण जी भारत खंडी का जन्म हुआ था। और इन्हीं के साथ है 1938 में आज के दिन प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ फतेह सिंह राठौड़ का जन्म हुआ, जिन्होंने रणथंभौर में बाघ संरक्षण के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान कार्य किए। दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। इतिहास हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। आइए कार्यक्रम के आखिरी में युवाणी कार्यक्रम का एक आज का आखिरी गीत सुन लेते हैं।
1: Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna.

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युपाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

पहले सुनिए आज के दिन के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी बरसात के मौसम में खान पान का ध्यान रखें, खेत में काम करते समय जहरीले जीवों से बचाव, कृषि में ड्रोन का महत्व, उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की जानकारी, गीत और भजन रोजाना की तरह। रात्रि 8:15 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:15 सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आपके लिए नश की जाएगी। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से खेल जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा। कुछ फिल्मी गाने आपके लिए रात 10:30 पर होंगे और समाचार रात्रि 8:45 पर, तत्पश्चात 9:00 और रात 11:00 और 11:05 पर।

आप सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। सवेरे 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में, 6:10 पर भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा वंदना, जो प्रतिदिन आप हमारे केंद्र से इस वक्त सुनते हैं। वंदना के तुरंत बाद 6:45 पर आप चिंतन सुनते हैं। खेती ना वास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए 7:10 पर जानकारी का विषय रहेगा, कृषि के साथ पशुपालन की उपयोगिता। रामचरितमानस का सेश्वर पाठ 7:20 पर। कल आप सुनेंगे भाग संख्या 332 का पाठ।

सुप्रभात। ये कार्यक्रम होता है सुबह 7:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी देश हित में बातें, मौन की शक्ति और अहंकार त्यागें। इन्हीं भावों को लेकर कुछ फिल्मी गाने आपको सुनवाए जाएंगे। मरुमंगल कार्यक्रम में भारती सोनी हमारी कलाकार रहेंगी 9:10 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा 10:00। श्रोताओं के पसंद पर अनुरोध गीत कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से दिन में 11 से 12 तक सुनते हैं। कल ये कार्यक्रम फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का रहेगा। 12 कार्यक्रम विवरण होगा। एक ही शीर्षक से कार्यक्रम आप दिन में 12:05 पर सुनेंगे। और खेत खलिहान कार्यक्रम 12:50 पर होगा। इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी लवणीय व क्षारीय जल का कृषि में महत्व। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन होगा दिन में 1:05 पर, जिसमें चर्चा की जाएगी बारिश के पानी की बचत, अपने छोटे से आशियाने को कैसे सजाएं, मच्छरों से रखे घर को सुरक्षित और ज्वार के व्यंजन। इसके अलावा राजस्थानी लोकगीत लोक भजन आप सुनेंगे। युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे 5:00। चौपाल कार्यक्रम 7:30 पर होगा। 7:00 आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे। राजस्थानी लोकगीतों लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे 9:15 पर। और फरमाइशी फिल्मी नगमात का कार्यक्रम गीत गंगा आपके लिए कल 10:00 प्रसारित किया जाएगा।

अभी आपने हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर बोल रहे हैं। सराय की भाषा का कार्यक्रम सुनिए झोंक माहिती।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:30 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के जयपुर अस्मी केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई, कहा सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बरकरार, हालांकि 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। श्री बिरला ने आज संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा होना आवश्यक है, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। आज संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सदन में इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। श्री रिजिजू ने विपक्ष से इस दौरान किसी तरह का शोर शराबा नहीं करने की अपील की।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने बताया कि इस बारे में भविष्य में कोई भी निर्णय वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। 16वीं विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले 6ठे सत्र के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने सत्र संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आज बैठक की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में विधानसभा

0: परिसर में आगंतुकों के प्रवेश, सुरक्षा जांच तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा है कि एक राज्य एक चुनाव से आर्थिक बचत और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता तथा चुनाव के दौरान पारदर्शिता रखने में सहायता मिलेगी। श्री सिंह ने प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव कराने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि 39 जिलों में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में तथा फलौदी और सलुम्बर में एक चरण में करवाए जाएंगे। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में चार चरणों, चार जिलों में दो चरणों और जैसलमेर जिले में एक चरण में होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकाय सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान होगा, वहीं पंच और सरपंच का चुनाव मत पत्रों से होगा। विभिन्न देशों के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दल इन दिनों उदयपुर में है। इस दल के सदस्य 16 अगस्त तक राजस्थान के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर यहां की सांस्कृतिक विरासत को सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के तहत 18 देशों के 32 क्रिएटर्स कल राजस्थान पहुंचे। सबसे पहले ये झीलों की नगरी उदयपुर के विभिन्न स्थलों पर रील्स, ब्लॉग्स और वीडियो बना रहे हैं। ये पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को करीब से जानेंगे, साथ ही स्थानीय कारीगरों से भी बातचीत करेंगे। इनका चित्तौड़गढ़ और गुलाबी नगर जयपुर भ्रमण का भी कार्यक्रम है। ये दल जयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा। इस प्रयास से राजस्थान की संस्कृति को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 97% है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में एग्री स्टेक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एग्रीस्टेक संबंधी काम पूरे करने पर राजस्थान को अब तक 737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टेक का उद्देश्य डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। इससे किसानों को उनकी जमीन, फसल और कृषि सेवाओं की जानकारी एकीकृत और आसान तरीके से मिल सकेगी। बैठक में कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि राजसमंद और सिरोही में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू किया जा चुका है। उर्वरक खरीद में सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि राजकीय विभागों की खरीद प्रक्रिया में राजीविका उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केट रिसर्च, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया है। आज सचिवालय में एक बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को रोजाना काम में ली जाने वाली वस्तुओं, थैले, स्टेशनरी, उपहार सामग्री और खाद्य उत्पादों की खरीद में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजीविका उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। और अब मौसम। राज्य के अधिकतर स्थानों पर मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने कल बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ सहित 12 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू और जोधपुर सहित 27 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आज कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच आज सलुम्बर जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हुई। बारा में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला बना रहा। दोपहर बाद करीब 1.25 घंटे जोरदार बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक प्रदेश में हुई बारिश सामान्य से लगभग 10 से 12% कम है। 8 जिलों में अत्यधिक, 14 में सामान्य और 19 जिलों

0: ने सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 454 बांध आंशिक रूप से भरे हैं, 223 खाली हैं और सिर्फ 16 बांध ही लबालब हैं। झालावाड़ में काली सिंध नदी उफान पर है, इससे नौनेरा बांध में तेजी से पानी की आवक बढ़ रही है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आमजन से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सावन के पवित्र महीने का आज दूसरा सोमवार है। महादेव की आराधना के लिए शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। साथ ही जल दूध बिल्व पत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज है। पाली के सोजत में महिलाओं ने आज कांवड़ यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक आयोजित किया गया, साथ ही भजन संध्या भी रखी गई है। घुश्मेश्वर महादेव, अर्णेश्वर, अम्बरेश्वर और सोलेश्वर सहित छोटे बड़े शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर भक्ति और आध्यात्मिक चेतना तथा संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन का केंद्र बनकर उभरेगा। आज विश्व शेर दिवस है। शेरों की घटती आबादी और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शेर संरक्षण की दिशा में मिली सफलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश में साल 2015 में शेरों की संख्या 523 थी, जो बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। इस मौके पर उन्होंने वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा का सरकार का संकल्प दोहराया। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया। श्री मोदी ने शेरों के प्राकृतिक आवास को बचाने और शिकार तथा इंसानी दखल से उनकी रक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाई है।
1: लायन है, हम हैं, हम हैं तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते, हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए।
0: हर घर तिरंगा अभियान से समूचे प्रदेश में देशभक्ति के रंग नजर आ रहे हैं। देशभक्ति के नारों और लहलहाते तिरंगों से वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर है। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर लोग हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रहे हैं। 12 में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने उत्साह के साथ तिरंगा रैली में भाग लिया। उधर चित्तौड़गढ़ में निकाली गई तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासी शामिल हुए। सलूम्बर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, पाली, करौली, बांसवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर प्रभात फेरी और तिरंगा वाहन रैली का आयोजन रखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध पर चिंता जताई, कहा सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश में अब तक 87 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसून की सक्रियता बरकरार, हालांकि 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जितेंद्र शर्मा। श्रीगंगानगर जिले में स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, स्वच्छता और महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के काम जारी है। पदमपुर में आयुष चिकित्सालय का पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय से पदमपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आयुष चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। जिला चिकित्सालय में कैथ लैब को

0: मिल गई है। इसके शुरू होने से हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी और दूसरे शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों का समय और अतिरिक्त खर्च बचेगा। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 66,46,00,000 रुपए की लागत से 102 सड़कें बनाई जाएंगी। इनकी कुल लंबाई 211 किलोमीटर से अधिक है। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर और सूरतगढ़ क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों में मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कें शामिल है। इनके बनने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होने के साथ ही कृषि और व्यापार गतिविधियां भी आसान हो जाएंगी। श्रीगंगानगर शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के पांचवें चरण में करीब 40 करोड़ 20 लाख रुपए के काम प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि इनमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी, विरासत संरक्षण और पर्यटन तथा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े काम शामिल है। अधिकारियों को शहर की जरूरतों के अनुसार कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में जनसंवाद और जागरूकता रैली हुई। महिलाओं और बालिकाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप, इसके SOS फीचर और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा संकल्प पोस्टर का विमोचन और पौधरोपण भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए श्रीगंगानगर जिले को स्वच्छ भारत मिशन समग्र प्रगति पुरस्कार 2025-2026 मिला है। जयपुर में हुए राज्यस्तरीय समारोह में ये सम्मान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरधर बेनीवाल ने ग्रहण किया। जिले को कचरा संग्रहण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और व्यक्तिगत शौचालयों से जुड़े उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये उपलब्धि मिली है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने पिछले दिनों नई धान मंडी में किसानों के साथ संवाद किया। किसानों ने सिंचाई जल, फसल बीमा, डिग्गी, तारबंदी, उर्वरक और कृषि ऋण से जुड़े मुद्दे रखे। गंग नहर में सिंचाई पानी बढ़ाने और डिग्गी तथा फार्म पॉन्ड के अनुदान में वृद्धि की मांग भी रखी गई। श्री चौधरी ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। सप्त शक्ति कमांड की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने श्रीगंगानगर, लालगढ़ जाटान और सूरतगढ़ सैन्य स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने नग्गी वॉर मेमोरियल पर 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान सैन्य तैयारियों और प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। जिले की गंग नहर की प्रमुख नहरों के आधुनिकीकरण और इनकी मजबूती पर 137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 154 किलोमीटर लंबी नहरों की रीलाइनिंग की जाएगी। इससे पानी की बर्बादी कम करने और नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में मदद मिलने की संभावना है। करणीजी नहर की रीलाइनिंग के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं। और अब बात जिले की खेल उपलब्धि की। अनूपगढ़ के गांव 12 AB के बसंत कुमार मेघवाल ने अमेरिका के ओरेगॉन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की। वे इस प्रतियोगिता की हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा कामकाज माय अड़चन माथा चिंता जताई, कहो सदन माय जनता रा मुद्दा माथा चर्चा जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो सरकार रो पेट्रोल माय इथेनॉल री मात्रा 20% बत्ती बधावन रो कोई विचार नहीं है। प्रदेश माय हालताए 87,00,000 बत्ता किसाना री फार्मर आईडी बनाई ची। और राज्य रा घनखर हल्का माय चौमासा री बिरखा, हालांकि 19 जिला माय हालताए सामान्य कम पानी बरसियो। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सगली सियासी पार्टियां रा नेताओं सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माय मदद करण री अरज कीनी है। श्री बिरला सदन माय विपक्ष कानून करया जा रहा हंगामा माथे आज संसद भवन माय भी कार्य मंत्रणा समिति री मीटिंग माय

0: चिंता जताई। वह कहो कि जनताओं जुड़िया मुद्दा माथा चर्चा जरूरी है, इन सारू सगला री मदद री जरूरत है। दूजी कानी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार विद्यार्थियों रा विरोध प्रदर्शन और इनू जुड़िया मुद्दा रा बारा माए संसद माए विगतवार चर्चा सारू तैयार है। वह गृह मंत्री अमित शाह कानियों हर मुद्दा रो जवाब देवन रो भरोसो दिरायो। रिजिजू कहो कि जनता ने तथ्यों री जानकारी रो हक है। वह विपक्ष हूँ सदन माए अनुशासन बनायो राखण सागे सदन री कार्रवाई माए अड़चन पैदा नहीं करण री अरज कीनी। कार्य सलाहकार समिति री मीटिंग पाछे संसद भवन परिसर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू विपक्ष हूँ सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चालती रहवण माए मदद करण री अरज कीनी, ताकि गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों कानियों का रिचिया विरोध प्रदर्शन रे बारा माए बयान दे सके।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इनु पहले राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विद्यार्थियों के खिलाफ लाड़ला दिना करीजी कार्रवाई माथे संसद में गृह मंत्री रा बयान री मांग कीनी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो है कि सरकार पेट्रोल माए इथेनॉल री तादाद 20% उम्बत्ती करण रो कोई फैसलो नहीं लिनो है। राज्यसभा माए एक सवाल रा लिखित जवाब माए श्री गोपी बतायो के इंबारा माए आवता भगत माए कोई फैसलो वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन पाछे और मोटर गाड़ियां बनावन वाला और तेल बेचण वाली कंपनियां सागे बातचीत पाछे ही करो जावेला। राज्य री 16वीं विधानसभा रा 20 अगस्त शुरू होवण वाला छठा सत्र री तैयारियां रो जायजो लेवण सारू विधानसभा रा प्रमुख सचिव आज अहलकारां सागे मीटिंग कीनी। इस दौरान विधानसभा भवन परिसर में आवण वाला रे दाखिल वेवण री व्यवस्था हिफाजती जांच और गाड़ियां उबी करण री ठौड़ समेत न्यारी न्यारी व्यवस्थावां रे बारा माय चर्चा करी ची। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि एक राज्य एक चुनाव री सोचूं माली बचत सागे साधना ने बेहतर तरीका काम लिया जा सकेला। वह प्रदेश में आवता दिना फेवन वाला नगर निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू अहलकारां सागे राखी जी मीटिंग में बोल रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि टेम सर चुनाव करावन सारू सगली जरूरी तैयारियां करी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव राजेश वर्मा बतायो कि 39 जिला माए नगर निकाय चुनाव 2 दौर माए जबकि फलौदी और सलूम्बर माए 1 दौर माए कराया जावेला। वे बतायो कि पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव 36 जिला माए 4 दौर माए 4 जिला माए 2 दौर माए और जैसलमेर जिला माए 1 दिन माए कराया जावेला। राज्य निर्वाचन आयोग रा सचिव बतायो कि पंचायत समिति जिला परिषद और नगर निकाय रा सदस्यों रो चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रे जरिए जबकि पंच और सरपंच रो चुनाव कागज माथा छप्योड़ा मतपत्रा रे जरिए करायो जावेला। न्यारा न्यारा देशां रा डिजिटल कंटेंट बनावन वाला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल उदयपुर में है। 16 अगस्त ताई प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोड़ा रो दौरो कर और वठेरी सांस्कृतिक विरासत ने सोशल मीडिया रे जरिए बतावेला। पेश है एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय रा खास कार्यक्रम रा तहत 18 देशा रा 32 क्रिएटर काल राजस्थान पधारिया। सबू पहली आ झीला री नगरी उदयपुर री न्यारी न्यारी ठोड़ा रीला ब्लॉग और वीडियो बना रहा है। ई पारंपरिक कला और हाथरी कारीगरी ने करीबू समझेला। इस आगे ही वे वठेरा कारीगरा सागे ही बातचीत करेला। वारो चित्तौड़गढ़ और गुलाबी शहर जयपुर माए सैर सपाटा रोई कार्यक्रम है। ओदल जयपुर माए वेवण वाला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम माए भी शिरकत करेला। ई कोशिशों राजस्थान री संस्कृति

0: ए न्यारा न्यारा प्लेटफॉर्म रे जरिए आखी दुनिया माए नुवी ओलखाण मिलेला। समाचार कक्षु सलेहा गाजी।
1: ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में हाल ताएं 87 लाख बत्ता काश्तकारा रा किसान पहचान पत्र फार्मर आईडी बना दिया गया है। आ तादाद तय करीजी तादाद रो करीब 97% है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए राखी जी एग्री स्टेक स्टीयरिंग कमेटी री मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो के एग्री स्टेक उन जुड़िया काम पूरा करण पना राज्य ने हाल ताई 737 करोड़ रुपये री प्रोत्साहन राशि मंजूर करी जी है। मीटिंग माए कृषि विभाग री प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल बतायो के राजसमंद अर सिरोही जिला माए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू करियो जा चुको है। वे बतायो कि खाद री खरीदी माए आसानी और साफ कोई बधावन सारू इन्हें बेगोई आखा राज्य माए लागू करियो जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि सरकारी महकमा री खरीदी रा काम माए राजीविकारी सदस्या का नियम बनाई जिया सामान ने बधावो दियो जावनो चाहिए। वे आ सामान री बिक्री बधावन सारू मार्केट रिसर्च गुणवत्ता लॉजिस्टिक्स और तकनीकी मदद माथे जोर दीनो। आज जयपुर माए राखी जी एक मीटिंग माए मुख्य सचिव न्यारा न्यारा महकमा माए थैला स्टेशनरी उपहार सामग्री और खान पीन री चीजा सरीखा रोजिना काम आवन वाला सामान स्वयं सहायता समूह कान्यू लेवन माथे जोर दीनो। अरब मौसम प्रदेश माए घनखर ठोणा चौमासारी बिरखा वह रही है। मौसम विभाग काल बांसवाड़ा बारा भीलवाड़ा बूंदी और चित्तौड़गढ़ समेत 12 जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट बतायो है। अजमेर अलवर जयपुर झुंझुनू और जोधपुर समेत 27 जिला सारू येलो अलर्ट जारी करी चियो है। आवता 2-3 दिन मझलाऊ तेज दर्जारी बिरखा रा आसार है। आज कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग माए कटे कटे भारी घनी भारी बारिश री संभावना है। ये बीचे आज सलूम्बर जिला रा कई हलका माए रुक रुक कर बरसात रो सिलसिलो चालियो। 12 माए सवारे हल्की बारिश शुरू हुई। दोपहर पाछे करीब 1.25 घंटा ताई झमाझम में बरसियो। झालावाड़ माए काली सिंध नदी उफन रही है जिणु नौनेरा बंधा माए तेज यूं पानी आ रियो है। प्रशासन एहतियात राखता थका जनताओं सुरक्षित छोड़ा जावन री अपील कीनी है। ये बीचे जल संसाधन महकमा रे मुजब 1 जून नु हाल ताई राज्य माए हुई बिरखा सामान्य करीब 10-12% कम है। 8 जिला माए घनी जोरदार 14 माए सामान्य और 19 जिला माए सामान्य कम बिरखा हुई। राज्य रा छोटा मोटा 693 बंधा माए 454 थोड़ा घना भर गया है। 223 रीता है जबकि केवल 16 बंधा पूरा भरिया है। सावन रो आज दूजो सोमवार है। ये मौके महादेव री भक्ति सारू शिव मिंद्रा माए संवार वहीं मोटी तादाद माए जात रूप उगण लग गया। मिंद्रा माए जल दूध और बील रा पत्ताऊ भोलेनाथ रो अभिषेक करियो चार्यो है। पाली जिला रा सोजत माए आज महिलावां कावड़ यात्रा निकाली। सवाई माधोपुर जिला रा शिवाड़ माए सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक रा कार्यक्रम राखी जिया और भजन संध्या राखी जा रही है। घुष्मेश्वर महादेव अरणेश्वर अमरेश्वर और सोलेश्वर समेत न्यारा न्यारा मिंद्रा माए जात्रुआ रो तांतो लागियोड़ो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा जगतपुरा माए गुप्त वृंदावन धाम माए पूजन कीनो। ई मौके वे कहो के ओ मिंदर भक्ति आध्यात्मिक चेतना और संस्कृति ने बचावन और बधावो देवन रो केंद्र बनेला। आज विश्व शेर दिवस है। शेरानी घटती आबादी ने ध्यान रखता थका वन बचावन सारू जाग जगावन बाबत ओ दिन मनायो जावे है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव देश माए शेरा ने बचावन रा काम माए मिली कामयाबी री सराहना कीनी है। वे कहो कि देश माए साल 2015 माए शेरा री तादाद 523 ही जो 2025 माए 891 वेगी। श्री यादव सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वीडियो साझा कीनो जिन माए श्री मोदी शेरा रा कुदरती रहवास ने बचावन और शिकार और इंसानी दखल वारी हिफाजत रो संकल्प रो दर्शाव कीनो।

0: हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते, हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए।
1: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद रा कामकाज में अड़चन माथा चिंता जताई, कहो सदन में जनता रा मुद्दा माथा चर्चा जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कहो सरकार रो पेट्रोल में इथेनॉल री मात्रा 20% उम्बत्ती बधावन रो कोई विचार नहीं है। प्रदेश में हालताएं 87 लाख उम्बत्ता किसान री फार्मर आई डी बनाई जी। और राज्य रा घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा, हालांकि 19 जिला माए हाल ताई सामान्य कम पानी बरसियो। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण परिवारों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुननीय सगळे परिवाराने भुरूबाई गी घणी घणी राम राम मोकळी मोकळी राम राम सगळे लाज तो रताज वे जी अरे
1: बिल्कुल मारो जी कर गयो बुरजी के कई ताल के हथा ही करा चौपाल में
0: बढ़िया करियो हाँ। चौपाल तो आपने है ही हथा ही गो
1: बिल्कुल
0: और आज आपने किसान भाइयों सा हथा ही कर छा पर बियात हथा ही तो सदाई करा बा कार्यक्रम की शुरुआत जी की है बापा भजन करनी है
1: बिल्कुल साहब फूटरो सो भजन सुना

0: वाह सबूर जी, देखो
1: भजन
0: आपा
1: सुनाए इन भजन भाई
0: बिल्कुल
1: जी
0: सा।
1: है भाई जी। एक बात बताओ थे, आयुर्वेद कवैर अब गर्गा जी का बुढ़ा बुजुर्ग है वह भी है बात कह के कम खाऊ और भूख लागे बोली इबिर खाक मौसम में सुखी हुए कभी कम खानो है के सावण को महीनो है इस समय कम खानो चाहिए।
0: देखो बात खाली सावण गए एक महीना की कोनी, बात आ के है को पूरो जी को अपनो चौमासा को टेम है नी, ये जगह चार महीना है जे मान लियो मोटा मोटी थे मान लियो सावण बादू आ सोजर काती
1: ठीक है।
0: अंग माँ के है के आदमी की जी की पाचन की ताकत हुए नी, बात ताकत के है कि कमजोर की मानती पड़ जाए।
1: अच्छा।
0: समझा के थे तो इम हाँ अब बिरखा को जी को टेम है नी, भूख तो देखो शरीर के मां लाग सी
1: बिल्कुल बोली लगे
0: हाँ लगे, पण की है कि खानो इसो ही चाहिए जिको पचन में किए का आसान हुए, पचनो दूर हो जाए इन टाइम
1: पाचन क्रिया कमजोर
0: हाँ
1: हो जाए।
0: बा कमजोर हो जाए। अपनो आयुर्वेद आई बात कहे है कि जिको मान लियो पहलो महीनो है जो मान लियो सावण को महीनो है तो इन माँ क्या है कि हरी पत्तेदार जी की सब्जियां है नी वे भी पचन में दिक्कत करे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अंग माँ संक्रमण को डर हुआ है कि क्यों बिरखा ओढ़ी हुआ है और संक्रमण हो जाए ना पत्ती अंग माँ तो आ चीज भी के अपन वर्जित है बहुत ही दोरी हुए बापोन पचे नहीं अपने ए खातर तलेड़ी चीजा ने तो एक खानी मतलब यहाँ टाली दियो इतना टाइम गए
1: माँ
0: चौमासे चौमासे में जी करे समोसा समोसा गो बन कही तो क्या है मान लियो थारे बरगा तो थे जुआन आदमी हो कि बे के पचा लिए बन के है कि थोड़ी एक अवस्था के बाद में है नी ये जी की चीजें हैं आंगो यूं भी परहेज रखना चाहिए और आ चार महीना का मां तो खास तौर से जी का बरसात रो टेम है जी को चौमासा रो टेम है ये मैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: तो आजकल का जी टाबर है फास्ट फूड खावे
0: तो गलत है
1: लग रही है बाजार
0: ये तो बिल्कुल यूं ये तो के है कि 12 महीना ही
1: बीमारी कोई
0: करे ठीक है कई बार स्वादिया लेने टाबरिया ले लिया है बा कई बात कहानी
1: बा तो टाबरा ने भी खराब करे
0: हाँ बा लंबे टेम ले और थे लगोतार ले इन तरह की चीजें मैदा की बनेड़ी चीजें अरे एक अद काची मतलब काट लिया बिंग माऊ ये तो टेम थोड़ी है माने बहन सीजावे पूरी तरिया पकावे माने यूं काट अरे गंदा मसाला बिंग माऊ है गंदी चीजें बिंग माऊ है ये सेंस वाली जिकेन बोला नहीं आपा अरे तेज मसालो है तो बापड़ो पेट जिको है ना वो राम राम करे फिर आ चीजें

0: देखते हैं। और जीप के आनंदी है ना, जीप की गुलाम, हाँ जीप की गुलामी करते हैं खतरे
1: पानी वाली चीज।
0: हाँ बस पानी को तो ध्यान रखो साहब, पानी फुल पियो, घनो ठंडो पानी तो पीनो ही नहीं चाहिए, माटकी रो पानी पियो। अरे यूं उबाल गैर थे जे मान लियो है ना, क्योंकि पानी हर ठोड़ी के है कि थोड़ थोड़ो थोड़ो खराब ही चाले आज को भगत इन तरह है, तो इन्हें उबाल गैर आप जे फिटकड़ी लगा गैर पछे इन मटकी में गाला और वो पानी पिया, तो यूं समझ लियो कि आप आधे रोगों पर तो जीत ज्ञापे लें।
1: अच्छा
0: हाँ रोग अपने को नहीं, क्योंकि
1: अच्छा,
0: रोग
1: खाने में भी ले तो सलाद ले लिया थोड़ा।
0: हाँ बिल्कुल सलाद ले लियो कोई, मान लियो शाम के टाइम तो गणेश जी तो कह है कि यहाँ जे थे नहीं खाओ नहीं, अर थारी पार पड़े तो अच्छी बात है, नहीं तो कह तो कोई दलियो है पतलो कोई खिचड़ी है रे, तो इतनी यंग चीजें लिया नहीं तो
1: सुपच है।
0: हाँ बिल्कुल ए पचता के है आने जोर को नहीं आवे बेगी पच जे, रोटी खाया बाद में थोड़ो घणो आदमी ने फिरनो चाहिए है ना, रोटी खाते ही आदमी मूंग की दाल जी की है ना आ बहुत बढ़िया चीज हुए आ लियो थे अहीं टाइम कोई दिक्कत को नहीं हुआ थारे
1: वो तो दिन छिपे में पहला खा लियो,
0: हाँ तो
1: खा
0: मतलब
1: के फिर घुमाई कर
0: हाँ
1: लो, जे
0: तार
1: तो सोन
0: बिल्कुल
1: पहला 2-3 घंटा जिका है बे
0: बिल्कुल
1: निकल जे तो आदमी के स्वस्थ रहे वो।
0: हाँ स्वस्थ रहे। आपने तो कहे जी का मान लियो ग्रंथ है तो आ ग्रंथांग में यहाँ बात लिखेड़ी है जी का जैन धर्म जी को आपनो है बिंग अंदर तारा भोजन को जी को एक नियम है, तारा भोजन मतलब तारा उगण शो पहला भोजन कर ले, तो वो भोजन जी को है ना वो सारा बढ़िया इन टाइम तो यहाँ भी जरूरी है क्योंकि माखी अरे मच्छर अरे फिड़कला है रात ने आज है ना लाइटा चश्या बाद में, तो बीस पहला पहला अपनो भोजन वालों काम आप सलटा लिया नहीं तो अपन कोई दिक्कत
1: जल्दी देखा कि छोटा हमता कोई इन बिने जामता काम तो करता जन आपको दिन से पहला पहला सारा भोजन कर लिया करता।
0: हाँ
1: वो
0: बिल्कुल
1: तो अब जिया जिया वो हाई टेक्नोलॉजी को टाइम आने लग गयो है,
0: हाँ
1: बिया बिया के रात की 10 बजे रोटी खाऊता है बाजारा में, तो
0: बिल्कुल
1: भाई स्वाभाविक बात है कि भाई कोई दुकानदारी कर गया हुआ कोई और
0: हाँ
1: आवे तो बिया 9-10 बजे तो बिना भाई अब इन चीजों तो कौन समझो तो उसके,
0: हाँ
1: लेकिन फिर भी जिको भोजन करे रात ना आगे वो हल्को करना चाहिए
0: हड़को करना चाहिए और एक
1: ताकि स्वस्थ रहे
0: हाँ
1: इसका।
0: बिल्कुल ऐसा के कई बार आपने अभी भ्रांति हुआ है कि भाई दही अच्छा है बा ले लियो आपने, तो इन टाइम के है कि दही छा जी की नहीं
1: एसिड बनावे
0: हाँ बा भी खराबी करे,
1: निषेध है।
0: हाँ बिल्कुल दही छा भी आपन नहीं लेनी चाहिए। हाँ रोटी के सागे है नहीं सलाह या मतलब माड़ो मोटो जो दही थे मतलब ले लियो चिया तो बात तो कोई बात नहीं दिख सके आपने,
1: वही
0: लेकिन
1: खाटो ना हो,
0: हाँ खाटो ना हो है
1: खाटो ना
0: क्यों,
1: हो यार भगत तू ले लियो।
0: हाँ भगत तू ले लियो शामपुर को तो खैर कदी नहीं लेना चाहिए। अरे दिन में भी क्या है कि रोटी के सागे जहाँ साग है थर साग है तो मैं सब्जी में चपो गए थे जो दही खाओ तो कोई बात का नहीं, लेकिन यूं थे दही या छा या दही शुभनी उड़ी कोई और चीजें हैं तो बे भी ई टाइम अपने निशे दिए
1: ना
0: बे
1: दूध
0: नहीं लेना
1: दही छा दूध उमड़ेड़ा जीता भी है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बे सारी चीज
0: हाँ तो
1: नहीं।
0: चौमास गए मान लियो दूसरे तीसरे महीने में पावा बी टाइम तीन तो आपने क्या है कि जहाँ आइसक्रीम उइसक्रीम मेरे गुल्फिया गुल्फिया जी की हुए ना ये भी बिल्कुल आपने निषेध है, ये भी आपन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये भी
1: और
0: आपने
1: आजकल
0: हाँ
1: तो कोई ब्याह शादी हुए तो पहल पोते रखे।
0: रखा ये नहीं लेनी चाहिए। हाँ इन टाइम क्या है कि जहाँ कोई मान लियो छीणा बनी चीज है जहाँ पनीर ले लियो या रसगुल्लो खा लियो तो वो तो कौन खराब करे, लेकिन आपने जी की है नहीं आइसक्रीम द आइसक्रीम आंगो तो बचाओ पूरा ही रखना चाहिए।
1: समोसा कचौरी पत्तेदार
0: तलेड़ी चीज को
1: सब्जी
0: तो देखो बुर्जी का नाम ही ना लियो, तलेड़ी चीज तो इन टाइम लेनी नहीं चाहिए। और जे किंगी भाई मान लियो कई कई करे मारे सुंडे पचोड़ी है या चीज तो बांगी तो देखो आप कवा को नहीं भाई किंगी सुंडे ही पचगी, और कोई थारे मेरे वर्गो और खास तो मेरे वर्गो जी अवस्था हूँ कि डाल पर है तो बिन तो निगे रखनी
1: ना ना
0: चाहिए।
1: इतना के बुढ़ा हो गया
0: नहीं
1: भाई।
0: नहीं बुढ़ा की बात को नहीं हुआ बुर्जी, जे निगे रखे नहीं आदमी तो आदमी के है कि मरे भी तो बुढ़ो हुई को नहीं, और जे निगे ना रखे तो फिर छोटे छोटे कई टाबरिया देखा नहीं आप यूं पब्बू और या फूलर तो बे फूलेड़ा क्यों है।
1: माँ सत्य को नहीं यार वो
0: हाँ
1: मैं धोखा का हो
0: बस
1: गया।
0: शारीरिक श्रम कौन करे, और इन टाइम क्या है जो चौमासा टाइम है नहीं इनमें क्या है शरीर को पानी निकल जाए पसीनों की तो आवे इन टाइम तो इन पसीने की पूर्ति किए हुए का आप पानी पिया
1: पिया
0: तो भी हो अपनी
1: यार पानी
0: पूर्ति हो
1: वाला भी
0: जाए
1: भोजन करा
0: बिल्कुल
1: ताकि पानी की पूर्ति
0: हाँ
1: हुए, बी शू तनावग्रस्त भी कौन
0: कौन
1: रहे।
0: रवे।
1: बट एक बात है आसागी चीज डांगरा पर ही लागू हो जाए,
0: हाँ तो मीना खर
1: डांगर भी इन टाइम है
0: हाँ
1: नहीं तनाव में आ जाए।
0: हाँ आ जाए क्यों और टाइम ही सो ही है क्यों इन टाइम है बिरखा हुआ है एर धरती की जी की गरमाई से ना बारे निकले तो यूं के एक जी जंत जी का माल है बे भी बारे निकले
1: बेबी बार आज
0: है ना।
1: यार जी जंत पर आज आप बात जरूर कर छ भाई जी।
0: बात
1: अब
0: तो
1: थारी बात तो वेगो नहीं खत्म है, थे मान सुना दियो गीत है।
0: हाँ गीत तो सुनाई छा गीत थाने सावण को महीनो चाले को सावण को फूट रसलावा
1: बिल्कुल
0: ठीक है।

0: वाह साबुर जी, देखो कितो फूटरो कितो मीठो गीत कह सावणिया री रुत आई हो
1: बिल्कुल
0: भंवर जी। आपने चंद्र सिंह जी बिरकाली एक दुओ थन सुनाऊ मैं,
1: सुनाओ सर।
0: कह सावण सांझ सुहावणी एर बाजे झीणी वाड़,
1: वाह जी वाह।
0: झीणी पून चाले मतलब, कह सावण सांझ सुहावणी एर बाजे झीणी वाड़ एर गावे मूमड़ गोरेड़िया एर खावे हियो उछाड़। है नहीं, वो
1: वाह
0: सावण को मीनो के बुर्जी ईसो ही हुआ है। इंग अंदर क्या है, आदमी को मन जी को है ना वो काबू में कोरे नहीं, है नहीं, ए बादरिया वेडार जिनो जिनो है ने के
1: फुहार
0: लोरे
1: पड़े
0: लोरे
1: सर, फुहार
0: आ जिको में
1: पड़े।
0: आवे ई मेघ अंदर तो फिर ठंड ठाई है। अर थे खेती खड़े मीन को इया हूं भी करूं खेती तो, पर थार जीती अब मेरू हुए को नहीं खेती, तो कोई बताओ बात।
1: बात आपा बात करा बिरखा गिर बिरखा गमा जिको खेती खड़ी की बात करो थे, तो अब जिनावरों को बड़ो भय है
0: हाँ मैं बताया
1: बेटा,
0: था ना
1: रात
0: बार
1: भी
0: अपन
1: रात
0: बात
1: जानो
0: करा।
1: पड़े ना, तो इन बारिश के मौसम में सांप है, बिच्छू है, दूसरा भी जी का जहरीला जीव है, एक ये पानी जद बिलांग मा जे दिंगे कारण के बार आ जे
0: अरकी माँ जमींग माँ तपिस भी तो जे।
1: तपिस भी हो जेर बिया के है कि पानी जद भरे ना जना सुरक्षित स्थान की तलाश में
0: सही बात।
1: खेतांगे रास्ते पर भी आ जे।
0: हाँ
1: अरे खेत में काम करता अपा हमेशा जे रबड़ का जूता रखा
0: हाँ
1: एर पूरी बांगा कपड़ा पहरा,
0: सही बात।
1: हाथ में चोखो मजबूत डंडो जिको है वो
0: हाँ
1: सब शुन जरूरी है,
0: जरूरी है।
1: लाठी जगह ना पके दिया बारा खा सागे टॉर्च रखा,
0: हाँ बैटरी
1: रात भी रात
0: जरूरी है
1: जवाना
0: बिल्कुल।
1: बैटरी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी झाड़ी घास ईंट लकड़ी का ढेर जी का लगेड़ा हुआ अपने खेतों में वहाँ
0: सही बात।
1: पटे भी किसान भैया ने आप बताना चाहवा कि भाई पहला जी को है हाथ पैर ना गले बड़े, पहला भी डंडियों चौखी त्रियाँ फिरोड़ लिए कभी
0: कोई है तो
1: दस मिनट लाग जाए लीती
0: हाँ
1: बात है, पर कोई जिया अनोनी सुना
0: हाँ
1: पाई टाइम में के पान लाग गयो और
0: हाँ
1: बिंगे
0: बिल्कुल।
1: जिनावर खा गयो और कई बिरिया ठाई कौन पड़े के खा गयो
0: हाँ तो
1: घर।
0: अनजाना में क्या आप पग के रखी जे जन पे आप जीव फिर के करे तो।
1: बिल्कुल, अरे सबसे जरूरी है खेत की सफाई साफ सफाई रखा, खेत में चारों तरफ जो उगेड़ी घास हुए झाड़ियाँ हुए पन काट के साफ कर लिया जिको जीवन जी का छिपन की जगह ना मिले, अरे खेत में या बिंगे करने पानी को जो जल भराव न हुए न होने दे, जल भराव भी होगा को नहीं तो बटे जिनावर जी को है वो सर्प
0: आसे
1: तो पानी नहीं ढूंढे वा,
0: हाँ बिल्कुल
1: खाद है
0: बिल्कुल।
1: लकड़ी है बिंगा भूसे का ढेर है, आंग मा खेत में काम करते टाइम थोड़ सुखी है सावधानी रखे,
0: हाँ बिल्कुल
1: रात या सुबह अंधेरे जानजर के अपन जावा
0: बिल्कुल
1: भी दिन छिपे जावा जानजर के
0: हाँ
1: जावा, तो टर्ज तो बहुत ही जरूरी है कि
0: हाँ
1: बैटरी
0: बिल्कुल
1: आपके कन्ने रखे जोड़ेगा माँ रखे
0: हाँ
1: है, कई बार यहाँ भी हुआ एक लो आदमी बड़ो भयभीत हो जाए
0: हाँ
1: सागे आपका दो आदमी सागे रहे ना
0: बिल्कुल।
1: जन ज्यादा बढ़िया हुआ आवाज करता रहे,
0: हाँ एक एक रेक 11 उजे बुर्जी।
1: बिया तो देखो पैर की जी की आट है ना
0: हाँ
1: जी, आप चला
0: हाँ
1: या बातचीत करा ईशु भी जिनावर जी को है वो दूर भाज दे।
0: दूर बात जे बचार वो तो के है के होवे ही है बुर्जी के वो आपन उडरे और
1: हाँ
0: आप भी
1: आप
0: उडरा।
1: भी उठ रहा वो तो बिचरेडो ही खावे,
0: हाँ बिचरडो खावे
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: जन बोडिया कहम तक नहीं होगा बिचरा है तो तय ही होना,
0: हाँ बिचरे तो
1: जद्दी वो
0: तय
1: खाए नहीं तो वो
0: बिल्कुल
1: क्या खाओ,
0: क्या खाओ सही बात।
1: एर पानी है कीचड़ है इसे रास्ता ऊपर तो थोड़ा सुखी है के पैर ना ही रखा,
0: हाँ वो बिरखा उठे
1: बिंगा
0: मैं।
1: बाद भी जे कोई इसी हो जे नहीं घटना
0: हाँ हाँ
1: तो भी
0: बिल्कुल।
1: अपन सावचेत रहना है, क्योंकि आपातकालीन जी का बचाव है बहुत ही जरूरी है,
0: मेडी पर ले जा फिर है नी।
1: मेडी तो है ही है
0: हाँ
1: मेडी तो।

0: देखो विवाह तो अपनी आस्त
1: पर
0: है।
1: डॉक्टरी इलाज जरूरी है।
0: हाँ
1: हाँ आ
0: बिना
1: बात तो
0: क्या
1: सही
0: है
1: है।
0: कि जे सांप या जहरीलो कीड़ो काट ले तो
1: हाँ
0: घबराने को नहीं। एक तो
1: बिल्कुल।
0: यार जिको भी पीड़ित व्यक्ति है बिन
1: हाँ
0: थोड़ो शांत रखा,
1: सही बात है।
0: कट्टेड़ अंग न ज्यादा हिलन न देवा,
1: हाँ
0: चौकी त्रिया बिन बांध दिया
1: हाँ
0: यार बिना देर करे मेडी पर, तो अपन डॉक्टर के बाद में भी ली जा सका।
1: ये तो देखो लोक आस्था की बात है, मन डॉक्टरी
0: हाँ
1: इलाज जी को
0: बिना देर
1: ना।
0: करे नजदीक में
1: हाँ
0: कोई भी अस्पताल है डॉक्टर है बीगन अपन लेके जावा, तो इशू के उसी के जे कोई अनहोनी हो ही जाए
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल।
0: बिंगो बचाव हो जाए समय रहता
1: समय रहे होता
0: काको
1: बिल्कुल
0: नहीं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ई
1: घबराना
0: बिरखा
1: नहीं
0: के
1: चाहिए।
0: मौसम में खाने पीने को भी ध्यान रखनो यार, जिनावरों को भी ध्यान
1: कई
0: रखना है।
1: बार के बुर जी एक वो मारे फरसो है मार सागे रहे, तो फरसो के है कि वो जी चक लिया बिगो कोई
0: क्यों?
1: चीज बस यही कोई मान लियो जी मक्खी खा गई है नहीं कोई सेताड़ी कोई ओरे ओरे ओरे ओरे ओरे अल्लाह अल्लाह मेरे के ठके पड़ी कुर्ती अल्लाह अल्लाह। तो भी जी चकनू कई बार के वह के बिंग है कि वह
0: बोली
1: को
0: दिखे
1: नहीं।
0: तो जे
1: हाँ बिल्कुल
0: वह
1: ये
0: बीपी
1: वास्ते
0: पर की बीमारी कर
1: हाँ
0: लिए।
1: उजे कई हो जाए या कमदीला हुए नहीं
0: हाँ तो
1: बे
0: बिन
1: इतरा
0: शांत
1: के।
0: रहना चाहिए।
1: हाँ
0: एरबिंगो जी को घाव है बिन जो कितनी कपड़े बांध दे, ज्यादा बिन बिचरावे ना
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: बिन भी बांध के रखे डॉक्टर तई पुग गए ना, दन जिस स्थिति में हुए बिन स्थिति में ही लेके उड़ जाए। बाद में डॉक्टर जी कहे वे घने शाण है, आजकल तो
1: हाँ बिल्कुल।
0: भाई जी इसी इसी टेक्नोलॉजी आ गई।
1: डॉक्टर भी आपने नेड़े ही है घणी दूरी भी कोनी वाली थोड़ थोड़ के
0: हाँ
1: अस्पताल है
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: घणो आपन
0: बिल्कुल।
1: चालनो भी कोनी पड़े।
0: प्राथमिक उपचार ले लिया फिर
1: हाँ
0: आपको बारह
1: फिर
0: घड़ी दिखाना है तो
1: हाँ
0: आपको
1: बिल्कुल
0: दिखा लियो
1: बिल्कुल
0: यार।
1: बिल्कुल।
0: पहली बात तो डॉक्टर जी का है, आजकल टेक्नोलॉजी हर कठी पुगेड़ी है,
1: हाँ सही
0: तो
1: बात
0: इसी घटना घटित होन कौन दे।
1: है। पर भाई देखो का आपने कहने को मतलब वही है कि कोई जे इन तरह की बात हो जाए ना तो आदमी ने डॉक्टर ने दिखाना चाहिए शुरू में पहला बचाव आपको रखे कि भाई इन तरह की घटना हुए ही ना और जो उजे जन जी ना चके।
0: जी ना चके यार भाई जी, बात करानी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी की बात अपन जरूर कर छा। पहला सुना देते एक गीत, आगे बात करेंगे अपन टेक्नोलॉजी
1: भाई
0: की।
1: मेरे जी तो आज देखो।
0: यानी किसानी इतनी सोरी हो रही है भाई
1: हाँ
0: जी, अने
1: बिल्कुल।
0: इन टेक्नोलॉजी की बात कर छा
1: तो
0: बाप
1: मैं
0: जच
1: सावण को
0: की
1: सुनाऊंगा गीत तो
0: जान दो।
1: ठीक है सर।

0: वासा भुर्जी के फूट रो अपन गीत सुनियो अपने गौरी देवी रो गायडो के सुई धारा ओसरियो और दूधा बरण आकाश।
1: वाह जी।
0: सुई धारा ओसरियो और दूधा बरण आकाश रात दिवस लागे झड़ी सुरंगे सावण मास।
1: बिल्कुल है ना, सावण का तो यही आनंद
0: है। अपने लोक के माँ जी की बातें लिखी है नी गुरुजी। तो पहला तो क्या है कि जहाँ बादलिया तितर पंखा हो जाए, तितर हुए ना गुदड़ो गुदड़ो भीतर हो जाए, फिर जब वो बरसन लगे नी तो दूधा बरण हो जाए आकाश। तो दूधा बरण आकाश जब हो जाए ना तो कितोक बरस सी इंगो आइडियो को नहीं है। दोरा तो चोस ले क्योंकि बिरखा तो दोरांगी है, दोरा ही तो अडिक है बापड़ा। हाँ ठीक है, बात करा इतार
1: मैं बात करो टेक्नोलॉजी की।
0: हाँ
1: आप बात करा नहीं कि कोई टेम हो रोहतास भाई जी कि आपना जी का बुजुर्ग का वह कोई बड़द बामता कोई सांड खेती करता
0: वहां बगत बगत की बात है।
1: फिर ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर आया दिन बड़ो सोराई होगी।
0: हाँ सही बात है,
1: कभी तेल का लोर चलोर।
0: हाँ
1: बिल्कुल। अब बिना चलन वाली टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी आदमी तो नीचे बैठ कर मोबाइल चलाएंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ अभी मैं लारेसी देख के भी आयो, और अब सही में ही किसान वास्ते इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आई है
0: भाई। बताओ देखा मन तो आपने ठाको नहीं
1: भाई जी, एक ड्रोन चलो है, एर भी ड्रोन करे दवाई को छिड़काव। आज अच्छा। की अब रे स्प्रे रेड है ना।
0: हाँ हाँ
1: एर रे भी जे अपन गला
0: बिल्कुल
1: तो वह भी यूं गाल सका पा
0: जी
1: को तरल का जी का उर्वरक है ना।
0: हाँ हाँ
1: बन है आप ईसू गाल सका। वो एक ईसो यानी आधुनिक कृषि यंत्र आयो है जको आपने बिना ही

0: जहाज के हुए भी जहाज त्रिया वो उड़े छोटो जहाज
1: में भाई ओ थारो ड्रोन तो मेरे देखे है मैं एक ब्याम कटी गई
0: हां वो सगी
1: हां किन मैं क्यों
0: भी सफर कर लाग रे
1: अच्छा वो मेल दई बरस जेवा
0: मेल दई बरस शहर इंगा फायदा बहुत है भाई जी यूं कीटनाशक फफूंद नाशक खरपतवार नाशक जीता भी अपना तरल उर्वरक है बांगो छिड़काव आप 100 पूरे क्षेत्र में कर सका आपने खेत के मां करा ना तो 100 वे आदमी हाथों करे थोड़ो पड़ जेर फिर कितो मोटी सावधानी रखनी पड़े
1: हाँ सही बात
0: यार इन तरीको के है कि गोल तैयार कर लियो
1: ठीक है
0: आपके जी का विमान ने कह पांगी मात्रा पानी की दवाई को मिश्रण करके ड्रोन के टैंक में गाल दो
1: ठीक है
0: अभी बतावा है कि मैं तो खड़े रह गए कई देर बातचीत करी 10-20 लीटर क्षमता का खेत की चौखुंटी है ना जी की भी सारी को यानी रूट सेट करनो है
1: छोड़े को नहीं हो फिर
0: यार मोबाइल नीचे बैठे बैठे यार आंगली की मणि है लाभ देखो
1: अच्छा
0: एक तो टाइम की तो बचत होगी इंगे मदद दू आप 15-20 मिनट में क्या एक एकड़ यानी कोई 2-3 बीघा जी की जमीन है ना बा एक हेक्टर के करीब बा काट दे छिड़काव कर दे
1: ठीक है
0: यूं संसाधन की बचत हो जाए पारंपरिक जी का अपना तरीका है
1: हाँ भी बात
0: पानी की जी की खपत है
1: सही बात
0: 90% जी का कीटनाशक की खपत है बा 40% तक कम हो जाए यानी पानी की खपत तो 90% तक और कीटनाशक की खपत 40% तक कम हुआ है क्यों आप रेडा नहीं आतू या अपने अंदाजा गाला तो आप 40% फालतू गाल दिया यार ओ के जितो थे बताडो है नहीं कई थी जरूरत है माने वो बितू छिड़काव करे यार बी दूरी पर जाके छिड़काव कर सिर पूरे खेत में 100 छिड़काव कर
1: भाई एक तो बात आए बुर्जी के एली कौन जे बा दवाई
0: बस बस एड़ा पीसा कौन जे भाई यार वो मुनाफे में गिन से हम
1: और किए थे
0: भाई आपनो जी को खर्चो आपा करा भी खर्चा में जे बचत होसी तो मुनाफा में
1: ही है जी बिल्कुल
0: और स्वास्थ्य की बड़ी बढ़िया सुरक्षा
1: अच्छा एक चीज बताओ थे के ओ उड़े किया एक में बैटरी बुंटरी होए के
0: एक में तो बैटरी हो वही है
1: हां जने तो उड़े बैठो
0: वेयर मोबाइल नु जुड़ेड़ो और वे नीचे बैठे बैठे आंगली की मणिया या
1: अच्छा
0: यहाँ स्क्रीन पर है ना
1: ऊं तो इतालियां दानी हो भाई इन बगा दियो यूं छो
0: है बग
1: है नहीं ये को दियो है इन वाकी सेल सुन
0: ले सेल सुन कर ले इन्वेंटरी हो तो
1: हां इन्वेंटरी हो है
0: स्वास्थ्य की सुरक्षा किया जाए के जहरीला जी का रसायन है पग में अपन हाथ लगणी को
1: पास ही रहनो
0: अपन पास ही रहनो
1: अपन बैठा
0: हो बैठा वो टग में बैठे नहीं जे डाणी बनेड़ी है तो जे कोटो
1: पहला लोग कहता है ना कि मैं तन आंगली पर नचा दियो
0: फिर देखो आज जी की लंबी फसल है जी गन्ने की है मक्की की है जी की घनी फसल है जेके जेके मां पा या टप्पा
1: जब भी जिनावरी है हां बिल्कुल बिल्कुल
0: बिबा जिनावरांग मां के ठापड़े किसे के मालूम
1: हां ना ठाके पड़े
0: तो बिंग मां नहीं यूं घुसनो ही कौन पड़े
1: हाँ बिल्कुल
0: पास बैठे आपको पेड़ के नीचे छियांग
1: सारे कर दे
0: यार आंगली तलावो करे सर सर
1: कमाल होगी बट्टी
0: मैं को पूछो ना थे यानी इतनी बढ़िया तकनीक आई है ड्रोन की अभी इंगी कई जी की है ना कीमता कामता और इंगी सब्सिडी की योजना
1: थे देखे हो के घटे की नहीं करता
0: बिल्कुल करता देखे भाई मन ले चले का मैं बिल्कुल दिखा के ले चलता ना जी का अपना जी का कृषि मेला लगे ना अंग में तो मौजूद बतावे मैं तो बारे जाई जो को नहीं अपने कृषि विकास केंद्र पर जी का मेला अच्छा। लगे ना बट तो इंगा जी का
1: ट्रेनिंग भी दे
0: हाँ ट्रेनिंग भी देवे और अभी के सरकार भी आंगी जी की कीमता कुमता में कमी ले आगे सब्सिडियां दे गए
1: हाँ सरकार यार छोटो जमींदार ले ले
0: छोटो बड़ो किसान जी को भी है भी तो इन्हें उपलब्ध करा सी बाद में इंगो लाभ जी को अपने पूरे क्षेत्र और मैं बात करो भी किसानी सोरी कितनी होगी
1: मन तो मेरे तो जी सोर हो गया आज पर मन थे दिखा लिया एक दिन
0: बिल्कुल पक्की रहेगी पर ते भी गीत सुनाओ फिर
1: गीत तो एक थाने बढ़िया सो गीत सुनाओ आप
0: सुना दे
1: सुनो थे मेरे जी सोरो करती होते

नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और

0: उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: वाह भुर्जी, चोखी कॉमेडी बुलाई आज तो थे।
2: वाह जोर को सुने गीत भाई जी।
1: अच्छा एक मेरे दो दिमाग में आवे क्या, बिजली खर्चो मत बिरत, बेकार में बिजली नहीं खर्चनी, क्या बिजली खर्चो मत बिरत राखो पानी शुद्ध।
2: बिल्कुल,
1: बिजली खर्चो मत बिरत राखो पानी शुद्ध, नीतर लड़नो पड़ सके इनरे खातिर युद्ध।
2: ओ हो सी भाई जी।
1: हाँ।
2: तो बड़ी बात है भाई, आपा जली जीवन है। अब बात कितनी पुरानी है।
1: हाँ, बिल्कुल
2: भाई। अब बिरखा है, इन बिरखा में आपा जल को संरक्षण कर
1: बोर जी, कितो पानी बेकार गो बहजे,
2: बिल्कुल
1: नाड़िया का माओ बरसे नहीं जी को, कितो बहजे जे सारा खने साजन हुए, अर साजन कितो करना है, कुंडी बनाना है आपा ने,
2: पाइप लगानी
1: है। हाँ, अरजे मान लियो जिका पुराना घर है, जिका में मान लियो इतना का नहीं बनाए डा कुंड, तो बन आज के अब नाड़ा जी के अबंग नीचे है, नी छात की सफाई रखो। मैं हूँ आणु पहला, क्यों मैं को टेम है छात ने बुहार लिया आपा एक अरबिंग, बाद में जिका नूड़ा है अंग नीचे कोई थारा मोटा ड्रम है रे, कोई टंकी है रे, वो पानी भेड़ो कर लियो, और वो पार्लर पानी भुर्जी की तो कीमती हुए
2: बड़ो है, बड़ो इमा के नाइट्रोजन की मात्रा हुए।
1: अरे
2: शरीर
1: के
2: मा है ना, शरीर वास्ते, बागवानी वास्ते।
1: हाँ।
2: गाड़ी धोन वास्ते।
1: हाँ।
2: बर्तन धोन वास्ते।
1: हाँ। भाई पीण खातर है भुर्जी, वो पीण खातर बहुत कामल हुए पानी
2: है। चलो कोई बैमला हुए के कोनी हो जच्चो कोनी का पानी, तो इनको और उपयोग जी को है वो सदुपयोग तो आप कर ही सका।
1: बिल्कुल कर सका
2: जी, सरकार इतनी सावचेत है। थान मैं बताऊं, कोई टाइम हो तो बेजोड़ा होता, तालाब होता, बावड़िया होती, अपना परंपरागत जल संग्रहण का संरचना ही
1: बिल्कुल
2: जिकी वर्षा के जल ने संचित करके भूमि के जल स्तर ने बढ़ाने में सहायक होती।
1: सही बात है,
2: कुंडो टंको ई प्रणाली से आपने जी को राजस्थान है प्रचलित ही अपने राजस्थान में।
1: हाँ,
2: तकनीकी वर्षा,
1: बिल्कुल
2: जल संचयन।
1: हाँ,
2: अंग उपयोग आप आंतरिका से करता।
1: हाँ,
2: भूमि को जी को जल स्तर है वो बढ़ाने में अंग बड़ो सहयोग हो तो।
1: हाँ,
2: कृषि के अंदर भी अपना किसानी में आप अपनी बात करें तो परंपरागत जी का जल प्रबंधन है वह फसल चक्र अपना के नमी संरक्षण विधियां अपना के जल की बचत आप कर सका।
1: सही बात है,
2: ठीक है। अब आप कहा के भाई किया ठापड़े के नमी संरक्षण किया ठापड़े भी भूमि में नमी की ठीक है।
1: हाँ,
2: तो थाने में बताऊं भाई जी, एक सोइल टेंशियोमीटर तकनीक आईडी है। अब हम बात करा नहीं तो टेक्नोलॉजी
1: भाई, अंग्रेजी वाली मेरे तो तब भावे कम है,
2: तब तो कम नाम ही सही देड़ा है।
1: अब
2: सरकार ने दिया नाम, आपन दिया
1: आंगो को सोखो नाम,
2: सोखो नाम कर से तो भूमि में वो के नमी ना प्रणाली।
1: हाँ, बस वो सीधो ही
2: है। हाँ, नमी ना प्रणाली आज तकनीक है तो यूं माटी में आपन ठा पड़ जाएगो वो उपकरण है जगह अपनी माटी में कितनी आपन नमी की जरूरत है इनको सटीक आंकलन अपन वो दे देसी।
1: ठीक है,
2: ठीक है। तो अपन पानी जी को वो एड़ो कौन जाएगो, अपन पानी बीतो ही देना है, जट्ठे पर नमी पूरी होगी बटे पानी बंद कर देना।
1: सही बात,
2: यानी इतना सुगमता ही है कृषि के अंदर। पानी बचाना भाई जी और बहुत जरूरी है,
1: जरूरी
2: अपनी सरकार है नी वे सब्सिडियां दे वे ड्रिप पर स्प्रिंकलर पर आ कम पानी में ज्यादा सिंचाई करने की विधि है।
1: बिल्कुल,
2: इशू थान मैं बताऊं उदाहरण पर देख लिया, घंटे में जब भी गोभी है ना तो जे ई प्रणाली ना प्रणाली नी यूं आपने डेढ़ बीघो बीज जन आधे बीघो अतिरिक्त भूमि होगी। बा
1: एक और है बुर्जी, देखो के ओ जमी आलो गयो थार काम, अर पहला आप बात करी ने शुरू में आप चौमासा में, तो बा चौमास वाली बात में भी ओ पानी जी को है ना, ओ पानी आपने शरीर खातर थे मेरी मानो बात है बहुत सही रहे। ई पानी ने जे पीण पीसी नी तो आज जिको पानी आपने घरे टूंटिया आवे नी आपा ने सारो ठा है, ये आप रेडियो में भी बताऊँ यार, ये थारा अखबार में भी आवे भाई कि तू अशुद्ध है पानी, और ओ पानी एकदम शुद्ध है,
2: एकदम शुद्ध है। ओ पार्लर पानी आप सदा ही रख भी पहला
1: भाई कद की
2: बात होती व्यवस्था।
1: हाँ।
2: जब बा गांव के अंदर जिका अपने
1: ई टाइम पास तो
2: जी का गांव बसेड़ा है बे घणकरो स्वाद दो साल काट दे तो
1: काट पानी। बिल्कुल बिल्कुल सही,
2: पर बी टाइम बिरखा ज्यादा ही बिरखा कम है तो बिंगो फर्क तो पड़ा ही है,
1: फर्क पड़े
2: देखो कठिन कटे भूमि को जी को जल स्तर है ना बिंगो कारण ओ कोनी बिंगो कारण आप मानस कहा कि आपनो जी को आबादी है बावी बद्दी
1: है
2: शहरीकरण ज्यादा हुई है जके शू अपना जिका तालाब है जिका आप जोड़ा होया करता या खाली भूमि पड़ी होती बा भूमि भी अब

0: कम हो गई।
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: कठे ना कठे इन जल को संरक्षण आपने करना चाहिए। यार
1: चाहिए,
0: बीस हुई आपनों जी को अगलो भविष्य है वो
1: बिल्कुल
0: सुधर सी,
1: सुदर्शी।
0: यार बातड़ी और कर लेंगा।
1: मैं गीत सुनाशु
0: वासा
1: बस तो।

देख हबूली कबूली डर पे। हाबूड़ा की जीव देख हबूली कबूली डर पे। हाबूड़ा का बाल

0: देखो सा गोविंद सिंह जी यार, आबुली कबूली गुड़ खावे गिर दूध पिएगी, एक
1: गुड़
0: गीत है
1: दूध वो
0: ना।
1: कितो वो बतायो
0: हाँ
1: कितने बढ़िया बे
0: ए
1: दूध और गुड़।
0: ए जी का गीत है ना बुर्जी, ए मनोरंजन के सागे सागे सीख भी देवे है ना। ए
1: बिल्कुल
0: टाबरिया बड़ा राजी हुआ गीता पर नाचे बड़ टाबर है क्या
1: बिल्कुल
0: बात है।
1: सीख दी है नी बे गुड़ और
0: हाँ
1: दूध वो बड़ो मम्मी सुरन जी को है ना शरीर ने बलिष्ठ बनावे ना
0: सही बात है।
1: भाई जी। आपने बाजार भाव पूछता है
0: हाँ बाजार भाव
1: मैं
0: बता
1: पांच
0: दियो,
1: दिन पहला
0: बताओ।
1: जैत सर मंडी में आज सरसों का भाव रे है 7,477 रुपया, कणक बिकी है नीचे में तो बिकी है 2,600 रुपया यार, ऊपर में बिकी है 2,640 रुपया।
0: ठीक है।
1: यहीं गंगानगर मंडी में आज सरसों का नीचे का भाव तो रे है 7,000 यार, ऊपर ऊपर में बिकली 8,072 रुपया, कणक
0: अच्छा।
1: बिकी नीचे में 2,600 और ऊपर में 2,692 रुपया। ग्वार का भाव आज गंगानगर मंडी का मां 5,595 नीचे में रहा और ऊपर में रहा 5,940 रुपया।
0: ठीक है।
1: मूंग बिके है 3,800 ले गए और 6,100 रुपया तय।
0: वाह
1: चीनो
0: जी
1: बिक्यो 5,611 ले गए 5,887 रुपया तय। सुरतगढ़ मंडी में आज कणक का नीचे का भाव रहा 2,575 और ऊपर में बिकी 2,775 रुपया।
0: ठीक है।
1: सरसों कम कम में बिकी है 7,407 रुपया और ऊपर में बिकली 7,700 रुपया। ग्वार का नीचे का भाव रहा 5,560 रुपया और ऊपर में 5,850 रुपया। मूंग बिकिया 4,300 ले गए 5,900 रुपया तय।
0: ठीक है भाई।
1: ए बाजार भाव अब तक आपने गन पुगता हुआ है
0: हाँ
1: भाई जी। अपन
0: हाँ
1: बात करा सावण की,
0: हाँ
1: सावण का मां एक बात और है।
0: कै बरसे भूरी बादली अर्दी से थोड़ी दूर
1: वाह जी
0: है, बरसे भूरी बादली अर्दी से थोड़ी दूर, जे थे भुर्जी हो नी दिन मेरे चेता आ गयो तो बैठे
1: वाह
0: बैठे
1: थारे
0: गए
1: बोले ही हवा चेता
0: थे भाव बतावा नी। तो
1: है।
0: देखो भाई मेरे भाव में तो ध्यान कम हो क्योंकि मेरे कन तो जी को हूँ बेच बट्यो है, अरे अबार के घरे सो दो सपारो बीसू लिया अरकिन चुकाना जी का पा
1: चुकता
0: चुका
1: करते
0: दिया जन। ओ मेरे दू याद आ गयो, कै बरसे भूरी बादली अरदी से थोड़ी दूर अर आवे हड़का लहर का अर लद लद सोरमपुर है
1: वाह
0: ना। ए
1: जी
0: लहर
1: वाह
0: का आवे अंसा जी सुरम आवे नी, मैं तो भी सुरम का दीवाना। हाँ
1: बिल्कुल
0: आ
1: बिल्कुल
0: बात है बुर्जी
1: बिल्कुल सुर
0: हाथे के
1: वावे
0: का।
1: सुनी है। मैं आई को कह जी कि आ बिरखा चाली है ना अब सावण के महीने की जी की बिरखा है आ बुंटा ना रियो करे और इन
0: बिल्कुल।
1: समय का मां जीता पेड़ लगाएड़ा हो सी नी
0: आहा
1: भी
0: के
1: तो ही
0: बात
1: पुण्य
0: है
1: भाई जी।
0: बिल्कुल। दरखत एक और है बुर्जी, थारो लगाएड़ो दरखत अरबो जद बद तो थे देखो नी, तो सची जे इया
1: जिसोरो
0: लगे
1: वे
0: हाँ बिल्कुल
1: जिसोरो
0: आपके जायो पूत जिसो लगे बो, अरे इया बदे नी बो अरे
1: अरबिंग
0: फिर बो
1: कितना
0: मोटो
1: लोग
0: वे।
1: छिया ले
0: हाँ
1: वे भाई जी
0: बिल्कुल।
1: आज।
0: अठू अठू जिको लगानियो मिनक चलियो जाए, ऊँ एक के एक इन्ना जाए करू नी कई बार पिपेरन खानी, जन बिचाले के एक एक पिंपल गो है पेड़ आहा आछो ठाडो पेड़, अरबिंग नीचे के एक गाया बैठी है ग्वालिया बैठे है, कोई मेर बरगा जी का कमताली आला जी का लोग है बे बैठे है, तो बे कितो बांगो जिसोर हुए अरे कितने बे आशीष देवे।
1: आशीष देवे भी लगानी है ने।
0: हाँ वो जीव जी को लगानी है नहीं वो चाहे कटही है क्योंकि आपा तो 84 लाख योने मना नहीं, तो बा मैं वो किसी जुड़ी माए नहीं वो पुन भी नहीं लग गए।
1: बिल्कुल लग है यार वो है ही पुन
0: हाँ
1: यार। आजकल तो देखो कठिन घटे जागरूक भी हुए है
0: हाँ बिल्कुल
1: यार।
0: हुए।
1: मैं कहूँ युवा इंग में इतो काम करने लग रहे हैं जे सुरतगढ़ की बात करानी अपा तो भाई जी 28 संस्था 3-4 काम इसी करण लग रही है
0: बिल्कुल।
1: यार। बे दिन रात मेहनत करे भाई जी वे झांझर के जागे बा जे। अब तो जिया बिरखा को मौसम है पानी लग गए और वह गर्मी का माँ जेठ को महीनो तपती लाए चले तो भी वह सुबह शाम बा बूंटा ने इया सेवता के कहनो।
0: बुर्जी देखो आप बात थारी सही
1: क्यों
0: है।
1: आजकल पहले तो क्या आपने तई संदेश पूगता को नहीं
0: हाँ
1: आजकल चल रही है रीला।
0: बाकी हूं तो देखो बुर्जी आप बात कहूं थाने कि थे या नहीं ठीक है संस्थाओं को जुड़िया डो चोखी बात है, लेकिन थे तो आपको मतो कर लियो और आप ही लगायो दरखत और आप ही भी सेवा करो है ना। एक दूसरे के बिसर कई बार के हुए कि गणे भायांगी जी की बहन हुए नहीं बात तीसरी रह जाए, तो के है कि आपको लगायो और आपको पन पायो बन बगत गए ऊपर थारी निजर हूं देखू गरेड़ी चाहिए जे
1: बिल्कुल
0: है
1: है
0: नहीं।
1: वक्त तो आज हो लियो
0: हाँ
1: तो
0: बस
1: अब चला।
0: चालनो पड़सी
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा
1: सा
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबिदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबिदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, UPPL के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं

उनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ. अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ. धर्मशीला गुप्ता, डॉ. दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ. कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ. के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा, ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज

विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी के भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा

0: सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से।

गीत आपने सुना अभी लता मंगेशकर की आवाज में, गाना नक्शाप जरचवी का और संगीत खेमचंद प्रकाश का। दोस्तों आज का दिन खेमचंद प्रकाश का दिन, संगीतकार खेमचंद प्रकाश जिनका जन्म 12 दिसंबर 1907 को बीकानेर स्टेट के राजपुताना में, जो ब्रिटिश इंडिया में था, सुजानगढ़ कस्बे में हुआ, जो वर्तमान में चूरू जिले में है। आपका देहांत आज के दिन हुआ 10 अगस्त 1950 को। बहुत छोटी उम्र लेके आए खेमचंद प्रकाश ने

जन्म 12 दिसंबर 1907 को बीकानेर स्टेट के राजपुताना में, जो ब्रिटिश इंडिया में था, सुजानगढ़ कस्बे में हुआ, जो वर्तमान में चूरू जिले में है। आपका देहांत आज के दिन हुआ 10 अगस्त 1950 को। बहुत छोटी उम्र लेके आए खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को मौका दिया, और जो गाना अभी आपने सुना, इस गाने के बाद लता मंगेशकर चर्चा में आई। महल आपकी एक नायाब, एक खूबसूरत फिल्म जिसमें अशोक कुमार ने मधुबाला के साथ काम किया। यूं आपने अपना संगीतकार का जीवन 1939 में फिल्म गाजी सलाउद्दीन के साथ शुरू किया। यहां आपके सहायक थे नौशाद। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि खेमचंद प्रकाश कितने प्रतिभाशाली संगीतकार हैं। आइए ये गाना सुने महल फिल्म का, जिसे राजकुमारी और जोराबाई अंबालेवाली ने गाया।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सुन रहे हैं महल फिल्म के गाने। ये वो फिल्म जिसका संगीत खेमचंद प्रकाश ने बनाया। खेमचंद प्रकाश राजस्थान के, और छोटी सी उम्र में आपने ऐसा काम किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आपने 1939 में गाजी सलाउद्दीन के बाद 1939 में मेरी आंखें फिल्म में संगीत दिया, जहां से डेब्यू किया सिंगर खुर्शीद बानो ने। उसके बाद 1940 में आज का हिंदुस्तान, फिर दिवाली, होली, पागल, बॉम्बी की सैर, परदेसी, प्यास और ऐसी अनेक फिल्मों में आपने काम किया। ये वही खेमचंद प्रकाश जिन्होंने किशोर कुमार को भी जिद्दी फिल्म में पहली बार ब्रेक दिया। बहरहाल लता मंगेशकर की आवाज में सुने ये गाना।

दोस्तों खेमचंद प्रकाश, जिन्होंने तानसेन, जिद्दी और महल जैसी फिल्मों के संगीत से हिंदी सिनेमा के महान संगीतकारों में खुद को प्रतिष्ठित किया, याद करें ऐसे फनकार को जिन्होंने राजस्थान की मिट्टी को अपना हक अदा किया। आकाशवाणी सूरतगढ़ से अभी आपने एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुना। रात के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। भारत ने 3 पदकों के साथ किया वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का समापन। मोहन बागान सीआईएसएफ को हराकर डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। बोधना शिवानंदन और श्रेयस रॉयल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। और एफआईएसयू विश्वविद्यालय स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। Always cheer for Bharat. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki.
0: Jai. मोदी ने कहा कि सम्मान केवल रिबन काटने से नहीं मिलता, बल्कि एक महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के मन में जोश भरने से मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जीत आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
2: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
2: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने लवलीना बोरगोहेन की एकाग्रता की भी सराहना की।
2: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
4: सर उस दिन हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, तो उन्होंने बोला कि हम चेंज भी करेंगे, अभी चेंज भी हो गया सर।
2: नहीं, लेकिन ये इस विजय की परिस्थिति, एक खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
0: जादूमणि सिंह ने करगिल दिवस से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए।
2: करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
5: उस दिन करगिल डे था, वैसे जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। मैंने वो पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, हमारा इंडियन आर्मी का करगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
2: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूँ कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित कर, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, जिसको पराजित करना था उसी को किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लगातार जीत हासिल करने में भारतीय खिलाड़ियों के समर्पित प्रयास और निरंतर सफलताएं विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं।
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में, अगर मैंने

0: रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
1: प्रधानमंत्री ने देश को गौरवान्वित करने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और अब बात एथलेटिक्स पर। अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का अभियान 3 पदक के साथ समाप्त हुआ। नेशनल सीनियर रिकॉर्ड होल्डर पूजा सिंह महिलाओं की हाई जंप फाइनल में 7वें स्थान पर रही। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: वर्षीय पूजा इस साल की शुरुआत में 1.93 मीटर का नेशनल सीनियर रिकॉर्ड बनाने के बाद इस प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतरी थी। हालांकि फाइनल में वो केवल 1.84 मीटर ही पार कर सकी। इसके बाद वो 1.87 मीटर की ऊंचाई पार करने की तीनों कोशिशों में नाकाम रही और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की इजोबेल लुइसन रो ने 1.92 मीटर की ऊंचाई पार करके स्वर्ण पदक जीता। हंगरी की लिलियाना बाटोरी ने रजत और स्पेन की इताना अलोंसो ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस वर्ष पूजा ने मई में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वो सीनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन भी हैं। भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो फाइनल में आखिरी स्थान पर रही। भारतीय टीम में भूमिका नेहते, तहुरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम शामिल थी। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण, ऑस्ट्रेलिया ने रजत और ग्रेट ब्रिटेन ने कांस्य पदक जीता। भारत ने चैंपियनशिप का समापन 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किया, जो वर्ष 2021 और 2022 के संस्करणों में जीते गए कुल पदकों की संख्या के बराबर है। आशीष यादव ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टूर्नामेंट का पहला पदक दिलाया था। वहीं बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप में 1 और सिल्वर मेडल जोड़ा, जबकि शहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित की जाएगी। विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हॉकी विश्व कप के पारंपरिक क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। दोनों क्रॉसओवर पूलों से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। नए प्रारूप के कारण टीमों के पास शुरुआत से ही गलतियों की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि पहले पूल चरण के परिणाम अगले चरण में भी लागू हो सकते हैं। भारत की पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत में प्रत्येक प्रतियोगिता की 16 टीमों को 4-4 टीमों के 4 पूलों में बांटा जाएगा। 15 से 20 अगस्त तक प्रत्येक टीम अपने पूल की अन्य टीमों के खिलाफ 3 मैच खेलेंगी और अंतिम रैंकिंग के आधार पर अगले चरण की टीमों का निर्धारण होगा। पूल ए और डी की शीर्ष दो टीमें पूल ई में प्रवेश करेंगी, जबकि पूल बी और सी की शीर्ष दो टीमें पूल एफ में खेलेंगी। पूल ई और पूल एफ से शीर्ष दो टीम सीधे अंतिम 4 में पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के महिला वर्ग का समापन 29 अगस्त को, वहीं पुरुष वर्ग का अंतिम मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात स्क्वॉश पर। मुंबई में खेले गए FISU विश्व विश्वविद्यालय स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में पहली बार भारत ने स्वर्ण, मिक्स टीम चैंपियनशिप में रजत और व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीते। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: India secured 3 medals at the 2026 FISU World University Championship squash, with Surat Kumar Chand winning the men's singles gold, India earning silver in the mixed team event, and Om Samwal sharing the men's singles bronze. India's Suraj Kumar Chand, the student of Somaiya

0: Kolkata Vidya Vihar University won the men's singles gold medal after defeating Hungary's Benedek in a thrilling five-game final. Suraj thus became the first Indian ever to win the men's singles title at the FISU World University Championship Squash in 16 years. Suraj is also part of the Indian squash squad for the upcoming Asian Games. India's Om Sehmwal and Francis Joshua shared the men's singles bronze medals after reaching the semi-finals, adding another podium finish to the men's singles event. India followed its strong showing in the singles events with a place in the team event final after overcoming Spain 3-1 in the semi-final. The final against Hong Kong China was closely contested, with both teams winning two rounds each. With the score tied at 2-2, the team event title was decided by game difference. Hong Kong China finished with 8 games won to India's 6, securing the gold medal while pipping India to the silver medal position. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
1: स्वर्ण पदक विजेता सूरज कुमार चांद ने जीत के बाद अपने अनुभव साझा किए।
2: Really happy after winning this tournament and becoming the first Indian to win this. काफी अच्छा लगा मुझे ये टूर्नामेंट खेल के. लास्ट टाइम हमें ब्रॉन्ज मिला था टीम इवेंट में और मुझे पर्सनली ब्रॉन्ज मिला था इंडिविजुअल्स में, तो इस बार गोल्ड जीत के और सिल्वर जीत के काफी अच्छा लग रहा है एंड मैं काफी हैप्पी हूँ अपने रिजल्ट से.
1: चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर. डूरंड कप फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. सुनते हैं नेहा की ये रिपोर्ट.
3: ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के नायक साहल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमाई. उन्होंने 17वें, 19वें और 37वें मिनट में गोल किए. उनके अलावा मनवीर सिंह ने 24वें, जेमी मैकलारेन ने 68वें और टेकचाम अभिषेक सिंह ने 73वें मिनट में गोल दागे. इससे पहले कल हुए ग्रुप डी के अपने आखिरी मैच में TRAUFC ने इंडियन नेवी को 2-1 से हराया. इस मैच में अफरीदी बुयामायूम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए. बुयामायूम ने 16वें मिनट में एक शानदार कर्लिंग शॉट के साथ खाता खोला, लेकिन खेल फिर से शुरू होने के ठीक 16 सेकंड बाद खुल्ला कपम जहीर खान ने गोल कर मुकाबले को बराबर कर दिया. इसके बाद बुयामायूम ने 60वें मिनट में TRAU को फिर से बढ़त दिलाई और अपनी बढ़त बनाई रखी. इंडियन नेवी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और 26 बार गोल करने की कोशिश की, जिसमें से 15 शॉट टारगेट पर थे, लेकिन TRAU के डिफेंस और गोलकीपर ताजुद्दीन ने उन्हें बार बार रोका. वहीं TRAU ने सिर्फ 8 शॉट लिए और 2 गोल भी दागे. इस नतीजे के साथ TRAU 3 मुकाबले में 4 अंकों के साथ ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही, जबकि इंडियन नेवी ने 3 अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया. कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी. पहली बार खेल रही FC रेंगदाई ग्रुप में शीर्ष पर रही और अंतिम 8 में जगह बनाई. इंडियन नेवी के लगातार अटैक के बावजूद वे बराबरी का दूसरा गोल नहीं कर सके और TRAU ने कड़े मुकाबले के बाद जीत हासिल की. इस जीत के साथ TRAU का डूरंड कप अभियान समाप्त हुआ. लंबे समय तक सेलर्स के दबदबे वाले इस मैच में बुयामायूम की फिनिशिंग और ताजुद्दीन की गोलकीपिंग ने आखिरकार निर्णायक भूमिका निभाई. नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्सकैन.
1: बात शतरंज पर. भारतीय मूल के 2 खिलाड़ियों ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रच दिया है. 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन और 17 वर्षीय श्रेयस रॉयल ने कल ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता. बोधना ब्रिटेन की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियनशिप ने का खिताब जीतकर महिला सिंगल्स में उन्होंने जगह बनाई थी. उन्हें उधर फाइनल में उन्होंने आयरलैंड की 14 वर्षीय त्रिशा कनेमाराला को रोमांचक रैपिड प्लेऑफ में हराया. वहीं दक्षिण पूर्व लंदन के श्रेयस रॉयल ने 9 दौर के बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल कर ओपन ब्रिटिश खिताब अपने नाम किया. उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी ग्रैंड मास्टर्स को आधे अंक से पीछे छोड़ा. ये उनका पहला ब्रिटिश खिताब भी है. और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ. आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आप

0: आपके पास है, टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद

0: इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
4: फिर से मैं चैलेंज देता हूँ राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
6: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष

0: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित।

कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। मीडियम वेव 326.72 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पहले गुलाम अली की आवाज में मसरूर अनवर की यह गजल, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, वो किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही।

लीजिए अब सुनिए बशीर बद्र का कलाम जगजीत सिंह की आवाज में, कि जिस दिन से चला हूं कभी मुड़कर नहीं देखा मैंने कोई गुजरा हुआ मंजर नहीं देखा।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंगदान।

0: एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा, एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
2: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेंस जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज़ भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की ज़िंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
3: नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
3: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी, तो आपने 2 तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ डॉक्टर अनिल, कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
2: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ

0: भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का, जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
1: जी, जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है, जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीज़ों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
2: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
3: जी, नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
2: जी।
3: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
2: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
0: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं, तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है, तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
2: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने, वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही ख़ास एक ये स्थिति होती है कि अंगदान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में, कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
0: इसमें अंगदान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंगदान 1 मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र 1 मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1800-1147।

0: 770 1800 1147770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा कर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हों। तो
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार
3: नमस्कार।
2: जी मेरा सवाल यह है कि देखिए मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंग दान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है।
1: जी, तो अविनाश उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार साहनी। जी विजय जी कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
1: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंग दान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंग दान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना चाहते हैं।
0: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंग दान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, notto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जा कर के अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए, वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी

0: है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये उसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकड़े जी। श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: हेलो
1: जी। जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार श्रीकांत।
2: मैं श्रीकांत चाकड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है।
1: जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
3: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका, आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा, पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फ़ोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331081 और 2371711 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना, 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब बताइए, क्या है आपका सवाल?
4: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्र दान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
3: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
0: कैसे खबर करें,
3: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर

0: में हैं, उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था, वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो ये प्रोसीजर के बारे में पूछना था। जैसे कोई एक आदमी आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
3: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं ज़रूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज़ समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज़ है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका, जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770, 24 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
1: जी हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका?
4: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
4: मेरा सवाल दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी,
0: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफ्थैल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थैल्मस में पुतली भी ख़राब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी
3: जो
1: शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
5: नमस्ते सर।
1: नमस्कार। नमस्कार।
5: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी।
1: आपको भी।
5: जी मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं पर, प्लीज बता दीजिए।
1: जी हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं, और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
3: जी, वैसे

0: देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30 से 40% और राइट होता है 50 से 70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज़ को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के ज़रिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए। और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है, तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
0: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल, और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान के इस नेक मुहिम के लिए आगे आने के।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फ़ोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद
1: शर्मा को। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी सूरतगढ़ है, रात के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
4: दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट।
5: बिल पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.72 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमें खेद है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम किन कारणों से आप नहीं सुन पाए। आइए अब सुने फिल्म संगीत।

गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर का गाना। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम साहिर लुधियानवी के कुछ प्यारे गाने सुने। अब जो गीत हम सुनेंगे उसे लता मंगेशकर ने गाया, रोशन ने इस गाने के लिए धुन बनाई। गाना साहिर का है, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें।

लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में साहिर का लिखा ये प्यारा सा गाना, जिसे सुरों में ढाला संगीतकार सचिन देव बर्मन ने।

लीजिए साहिर का लिखा ये गाना सुनिए, जिसे मौसीकी दी खय्याम ने आवाज़ जगजीत कौर की।

अभी आपने जगजीत कौर की आवाज़ में ये गाना सुना। आइए कार्यक्रम में अब सुने गजल फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, गाने इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज आपको साहिर के लिखे कुछ खूबसूरत गाने हम सुनवा रहे हैं। आइए रोशन की मौसीकी में साहिर का लिखा ये गाना सुने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बरसात की रात फिल्म से।

ये गाने आपके लिए इस वक्त आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित किए जा रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। इस गाने के लिए संगीत बनाया जयदेव ने, आवाज दी मोहम्मद रफ़ी ने, गीत साहिर का है और फिल्म है हम दोनों।

जयदेव के संगीत में भी अपने साहिर का ये गाना सुना। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने साहिर के विविध रंगों के गीत आपको सुनवाए और सुनवा रहे हैं। लीजिए एक ही प्यार भरा रंग सुनिए, रवि की मौसीकी में, लता की आवाज़ में। फिल्म है एक महल हो सपनों का।

लीजिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में साहिर का लिखा ये दो गाना सुनिए। इस गाने के लिए संगीत बनाया सी रामचंद्र ने और फिल्म है बहुरानी।

लीजिए साहिर का लिखा ये गाना सुनिए। रोशन ने इस गाने के लिए तर्ज बनाई, मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी। फिल्म है ताजमहल।

अभी आपने गाना सुना, फिल्म का नाम था चंबल की कसम। आइए इसी फिल्म का एक और गाना सुने, चूंकि सावन का महीना है।

इसी गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम से अब हमें इजाज़त दें कि अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, और घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत, और रात तारों से उलझ सकती है जुगनों से नहीं, रात को मालूम है जुगनों में हिम्मत है बहुत। नमस्कार।

0: रात के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है।

0: जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
5: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments